आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।

नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
1: आयुष्मान भारत पीएम जय
2: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
2: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
4: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है।
5: 6 जून 2026 को चिनाब और अंजीखड़ रेलवे पुलों का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन पुलों को भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक और जम्मू कश्मीर में रेल यातायात को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा पड़ाव बताया। ये दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का अहम हिस्सा है और इन्हें मुश्किल पहाड़ी इलाकों में बनाया गया है। चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब रेलवे पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और अंजी पुल भारत का पहला तारों पर टिका रेलवे पुल है। इन पुलों के जरिए न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
6: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सन्नत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
5: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 2400 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्य ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय ठीक 8:40 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम मस्त मुंबई का। और आज के हमारे सितारे हैं वो हम बताएंगे इस गाने के बाद। अगर कोई भी ये गाना सुनकर जल्दी से हमें बता दे कि आज का सितारा कौन है इस कार्यक्रम में, तो हम उनका नाम जल्द से जल्द दे लेंगे, यानी एकदम फास्ट। तो मैं हूँ आरजे किरण माला, एकदम फास्ट। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये गाना, यानी इस गाने से हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी से आप हमें उत्तर दीजिए, हमारा नंबर है मोबाइल 8657661071 पर। आप हमें बताएंगे कि ये कौन सी मूवी है और हमारे सितारे कौन हैं आज के।

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना।
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।
2: 8:46 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ RJ किरण माला, से मैं आपके साथ। सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने आपसे पूछा कि आज के सितारे कौन है हमारे इस कार्यक्रम में, तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विक आंसर आया है फिरोज सिंगनपुरिया का, ठीक 8:42 पे, वहीदा रहमान जी। जी हाँ, तो आज हम आपको वहीदा जी के बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ खट्टी मीठी बातें बताएंगे। तब तक एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

8:50 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई। जी हाँ, वहीदा रहमान अपने ज़माने की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार अभिनेत्री रही हैं। एक दौर ऐसा था जब इनके साथ बॉलीवुड के सभी नायक काम करना चाहते थे और भारतीय सिनेमा के बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स इन्हें लेकर फिल्में बनाना चाहते थे। लगभग 60 साल से ज़्यादा लंबे अपने फिल्मी करियर में वहीदा रहमान ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है।

8:53 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई। वहीदा रहमान कभी भी फिल्म अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी, फिल्मों से कुछ भी लेना देना नहीं था। उनका सपना था कि वो अपनी ज़िंदगी में एक डॉक्टर बनेंगी, लेकिन अचानक उनके पिताजी की मौत हो गई और उनका परिवार मुश्किलों में आ गया। वहीदा जी भरतनाट्यम डांस की एक ट्रेन डांसर थी। उन्होंने इसकी पूरी शिक्षा ली थी। अपने घर के खर्च को चलाने के लिए वहीदा जी ने भरतनाट्यम डांस के प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। इन्हीं डांस प्रोग्राम की वजह से वो धीरे धीरे फिल्मी दुनिया के लोगों के संपर्क में आ गई।

सवतिया जो लौट ले भी करो ले भी करो ले भी करो वो हम खाना।

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय ठीक 9 बजे हैं और हम बात कर रहे हैं वहीदा रहमान जी पर। वहीदा रहमान हिंदी फिल्मों की एक ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिन्होंने लगभग सभी उम्र के किरदार निभाए हैं, यानी उन्हें एक टीनेज गर्ल का रोल भी किया तो साथ ही साथ दादी माँ का रोल भी किया। वहीदा

ने अमित जी के साथ कई सारी फिल्में की, ये बात कितनी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की माँ का रोल भी निभाया और उनके साथ उनकी प्रेमिका और पत्नी का रोल भी निभाया। 1976 में आई फिल्म अदालत और फिल्म कभी कभी में अमित जी की पत्नी का रोल किया। 1978 में त्रिशूल आई थी, त्रिशूल में उन्होंने अमित जी की माँ का रोल किया था। वैसे 1971 में आई फिल्म रेशमा और शेरा में भी वहीदा रहमान ने अमित जी के साथ काम किया था। इसमें वहीदा रहमान फिल्म की नायिका थी और अमित जी का फिल्म में सपोर्टिंग रोल था। वहीदा रहमान एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने तीनों बच्चन के साथ काम किया है, यानी अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और अभिषेक बच्चन। 1973 में आई थी फागुन, इसमें वहीदा रहमान ने जया बच्चन की मां की भूमिका की थी। वहीदा रहमान के नायक थे धर्मेंद्र और जया बच्चन के नायक विजय अरोड़ा थे। 2002 में एक फिल्म आई थी ओम जय जगदीश, इस फिल्म में वहीदा जी ने अभिषेक बच्चन की मां का रोल किया था। कितने कमाल की बात है ना। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गाने की ओर।

9:06 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई। 1971 में आई फिल्म रेशमा और शेरा में उनकी शानदार एक्टिंग के लिए भारत सरकार ने उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया था। 1965 में आई फिल्म गाइड और 1968 में आई फिल्म नीलकमल, इन दोनों फिल्मों के लिए वहीदा रहमान को एक बेहतरीन अभिनेत्री के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से और 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। तो चलिए सुनते हैं ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।
2: 9:16 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आज के सितारे। वहीदा रहमान अपने समय के एक बहुत बड़े स्टार रही हैं, लेकिन मैं आपको उनकी हॉबीज़ के बारे में बताना चाहूँगी। उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद है। एक वक्त था जब ईद के मौके पर वहीदा जी अपने हाथों से सेवैयाँ बनाया करती थी और जिन लोगों को वो इनवाइट किया करती थी वो खुद को भाग्यशाली समझते थे। इसके अलावा उन्हें वाइल्ड लाइफ से भी बहुत प्यार रहा है। उन्हें अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद रही है। फिल्मों से रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने शौक को पूरा किया। उन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है और उन्होंने अपनी खींची गई तस्वीरों की एक प्रदर्शनी भी लगाई थी। ऐसा कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया में अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वहीदा रहमान की फिल्म अभिनेत्री नंदा से बहुत गहरी दोस्ती थी। वैसे आशा पारेख और शर्मिला टैगोर से भी उनकी अच्छी दोस्ती रही है, लेकिन अभिनेत्री नंदा वहीदा रहमान के बहुत ज़्यादा करीब थी। ये दोनों अभिनेत्री एक दूसरे को बहुत पसंद करती थी, साथ में घूमती फिरती थी। नंदा की मौत पर वहीदा जी को बहुत दुख हुआ था। उन्होंने कहा था कि उनकी एक बहन दुनिया छोड़कर चली गई, मैं उन्हें कभी भूल नहीं पाऊंगी, उनकी खूबसूरत यादें हमेशा मेरे दिल में रहेगी। वैसे वहीदा रहमान ने नंदा जी के साथ फिल्म काला बाजार में भी काम किया था।

9:25 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई। फिल्मी दुनिया में कुछ जोड़ियां बहुत ज़्यादा पसंद की गई है, जैसे राज कपूर नरगिस की जोड़ी, धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी, इसी तरह वहीदा रहमान की जोड़ी भी दो नायकों के साथ बहुत ज़्यादा पसंद की गई, वहीदा रहमान और देव साहब की जोड़ी। पर्दे पर दोनों कलाकार

चारों की कमाल की केमिस्ट्री थी। दोनों के साथ दोनों ने एक साथ 7 फिल्मों में काम किया। इनकी सुपरहिट फिल्में थी CID, काला बाजार, गाइड। दूसरे नायक थे गुरुदत्त साहब, जिनके साथ वहीदा रहमान की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की गई। वहीदा रहमान को हिंदी फिल्मों में पहला ब्रेक गुरुदत्त साहब ने ही दिया था। फिल्म थी CID, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी 5 फिल्मों में एक साथ आई। प्यासा, कागज़ के फूल, 12 o'clock, 14वीं का चांद और साहब बीबी और गुलाम। वैसे सुनील दत्त के साथ भी वहीदा रहमान की जोड़ी बहुत पसंद की गई। वहीदा रहमान के करियर की एक बहुत ही शानदार फिल्म थी खामोशी। इस फिल्म में वहीदा रहमान के साथ राजेश खन्ना थे। खास बात यह है कि ये फिल्म बनाने के लिए वहीदा जी ने हेमंत कुमार से खास रिक्वेस्ट की थी। ये एक बंगाली फिल्म का रीमेक था। बंगाली फिल्म में मुख्य भूमिका सुचित्रा सेन ने की थी। सुचित्रा सेन बंगाली सिनेमा की एक बहुत महान फिल्म अभिनेत्री मानी गई है। हेमंत कुमार इस फिल्म को हिंदी में नहीं बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि ये फिल्म नहीं चलेगी। तब वहीदा रहमान ने उनसे कहा था कि कुछ काम अपने दिल की संतुष्टि के लिए भी करने चाहिए। इस तरह खामोशी फिल्म बनी और ये फिल्म ठीक ठाक चली थी, लेकिन बाद में इस फिल्म को एक मास्टरपीस माना गया और इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए थे।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है यहाँ मौजूद धर्मेंद्र जी। और दोस्तों, हम लेकर आ गए आपके लिए द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स। घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम पहला अपडेट आज आपको जो देने वाले हैं वो है सेपक तकरो की दुनिया से। इंडिया हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल ऑफ द मेन्स क्वाड्रेंट इवेंट ऑफ सेपक तकरो आफ्टर दैट टू स्ट्रेट विक्ट्रीज इन द ग्रुप स्टेज। दिस मीन्स दैट इंडिया हैज अश्योर्ड और बीन अश्योर्ड ऑफ अनदर मेडल for our country at the Asian Games 2026. India defeated Vietnam in the men's quadrant group A match of the Sepak Takraw event. They won in straight sets by a margin of 15-12, 15-17, thereby defeating Vietnam 2-0. The rules, by the way, dosto, aapko ye bhi bata de that the rules state that both the same

0: सेमीफाइनलिस्ट विल गेट अ ब्रॉन्ज मेडल एटलीस्ट. दैट मींस धर्मेंद्र, भारत को एक और मेडल आज अश्योर हो चुका है.
1: जी, और उधर कुश्ती से तो काफी अच्छी खबर आ रही है साक्षी. भारत के नितेश शिवाज ने पुरुषों के ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बना ली है और भारत का मेडल वहां पर पक्का हो गया है. उन्होंने हांगझोउ एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मंगोलिया के गंगकुयाग गानाबातार को 9-0 से हराया. इस जीत के साथ नितेश ने फाइनल में जगह बना ली और इसी के साथ भारत का 2026 एशियन गेम्स में कुश्ती का पहला मेडल पक्का हो गया है. नितेश ने इसी साल एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था. फाइनल में उनका सामना ईरान के मेहदी बालिहाम जेहदे या जापान के यूरी नागाचातो से होगा. फाइनल आज के बाद खेला जाएगा और हम आपको यह भी बताएं कि पहली बार 64 साल के बाद ग्रीको रोमन किसी रेसलर ने एशियाड के फाइनल में जगह बनाई है. और कुश्ती से ही एक और अच्छी खबर तो थी, लेकिन अब थोड़ी सी उसमें गड़बड़ ये हो गई है कि मानसी अहलावत सेमीफाइनल में तो पहुंची थी लेकिन सेमीफाइनल में पराजित हो गई हैं. भारत की मानसी अहलावत महिला 62 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जापान की दो बार की वर्ल्ड चैंपियन नोनोका ओजाकी से 0-6 से हार गई. ओजाकी ने शुरुआत में टेकडाउन से 2 अंक लिए और फिर एक और टेकडाउन की बढ़त से 4-0 स्कोर कर दिया. उन्होंने दूसरे पीरियड में भी मानसी को अंक नहीं दिया. बाद में एक और टेकडाउन से स्कोर 6-0 कर दिया. मानसी अब रेपेचेज में खेलेंगी. यहां जीतने पर वो ब्रॉन्ज मेडल जीत सकती हैं.
0: जी, और अब वॉलीबॉल का आपको अपडेट देते हैं, जहां से मैं आपको कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं देने वाली हूं, जहां पर हम आपको बता सकते हैं दैट पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया 3-0 इन द मेंस वॉलीबॉल क्वार्टर फाइनल टू एंड इंडियाज कैंपेन एट द एशियन गेम्स. पाकिस्तान टुक द ओपनिंग सेट 25-19 बिफोर एजिंग अ क्लोजली फॉट सेकेंड सेट 25-23. देन दे क्लोज्ड आउट द कॉन्टेस्ट विद एन 18-25 ड्रॉ, रादर शुड बी से दैट रिजल्टेड इन पाकिस्तान कंप्लीटली डोमिनेटिंग इंडिया इन अ स्ट्रेट सेट विक्ट्री. इंडियाज वेट for the first Asian Games medal in the men's volleyball since 1986 continues after the quarterfinal defeat.
1: और एक खबर, जैसे आपने कहा कि अच्छी खबर नहीं है, स्क्वाश में भी हमारी महिला टीम पराजित हो गई है और सेमीफाइनल का ये मुकाबला था हांगकांग के खिलाफ और भारतीय टीम इस मुकाबले में संघर्ष करती तो दिखी लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी. तन्वी खन्ना ने स्क्वाश महिला टीम इवेंट के सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ भारत की वापसी कराई. उन्होंने वर्ल्ड नंबर 33 ली का यी को 3-1 से हराया. उनकी जीत से भारत ने 1-1 की बराबरी हासिल की. तन्वी ने पहला गेम 4-11 से गंवाने के बाद वापसी की. उन्होंने अगले 3 गेम 13-11, 11-9, 13-11 से जीते. इससे पहले चान सिन युक ने अनहत सिंह को 3-2 से हराया. स्कोर 11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12 रहा और जोशना चिरप्पा को निर्णायक मुकाबला खेलना था लेकिन वहां वो पराजित हो गई.
0: जी, एंड अ क्विक अपडेट फ्रॉम आर्चरी वेयर वी हैव चिकिता तानीपार्थी ओपन्ड द इंडियाज एक्शन ऑन डे 13 ऑफ द एशियन गेम्स 2026. हाउएवर शी कंपीटेड अगेंस्ट नूरी सादिया अशरीफा इन द क्वार्टर फाइनल ऑफ द वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी. शी हैज ऑलरेडी क्लिंच्ड 2 गोल्ड मेडल्स एट द इवेंट एज पार्ट ऑफ द मिक्स्ड टीम एंड वुमेन्स टीम रिस्पेक्टिवली, बट शी डिड नॉट लुक एट हर बेस्ट टुडे एज अ सीरीज ऑफ 9s एंड 1-8 इन द फाइनल राउंड कुड ओनली टेक अ फाइनल स्कोर टू 1-43. As a result, we saw her crashing out of the Asian Games 2026 today. However, on a much more brighter and nicer note, she should be proud of her performance, having already secured 2 gold medals.
1: और एक अच्छी खबर आ रही है, बहुत ही अच्छी खबर है. भारत ने रजत पदक जीत लिया है सेलिंग में और ये जो रजत पदक है वो स्किफ इवेंट में मनु और नोबेल ने दिलाया है. ये बहुत बढ़िया खबर आ रही है साक्षी.
0: ऑफ कोर्स, गुड न्यूज देयर एंड कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम. बट क्रिकेट की दुनिया से भी धर्मेंद्र एक क्विक अपडेट अपने दोस्तों को बता देते हैं कि आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा कर अपनी जगह गोल्ड मेडल के लिए फाइनल के अंदर तय कर लिया है. यस, इन व्हाट वाज रेन affected match and a shortened semi-final, we saw Bangladesh setting Pakistan a target of 112 from 13 overs, which Pakistan was able to chase down confidently and easily by a margin of 6 wickets with 9 balls to remain. And और एक बड़ी न्यूज जो है धर्मेंद्र, ये है कि आज भारत और श्रीलंका भी आमने सामने होने वाले हैं दोस्तों इन द सेमीफाइनल मैच. एंड हूएवर विंस दिस गेम विल बुक अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स इन द फाइनल एंड विल बी मीटिंग पाकिस्तान इन द फाइनल ऑफ द एशियन गेम्स 2026.
1: जी, और अगली अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे.
0: जी जरूर, 10:30 बजे आपको मिलेंगे हम एक बार फिर से विद द नेक्स्ट अपडेट. फॉर नाउ इट्स गुड बाय.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले। कॉस्मोस कार लोन है ना?
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय ठीक 9:39 हुए हैं। जब हेमंत कुमार ने खामोशी फिल्म को हिंदी फिल्म बनाने की प्लानिंग की तो कोई भी हिंदी फिल्म का बड़ा हीरो इस फिल्म में काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये एक नायिका प्रधान फिल्म थी। फिल्म की मुख्य भूमिका में वहीदा रहमान थी। वहीदा जी का रोल बहुत पावरफुल था, इसलिए कोई भी बड़ा स्टार इसमें काम करने के लिए तैयार नहीं था। तब वहीदा रहमान ने ही फिल्म के प्रोड्यूसर हेमंत कुमार को सुझाव दिया था कि इस रोल के लिए राजेश खन्ना को लिया जाए। तब राजेश जी फिल्मी दुनिया में नए थे। खन्ना को ये रोल बहुत पसंद आया और वो इसे करने के लिए तैयार हो गए।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल। FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। प्रस्तुत है हिंदी में समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति के विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सूखा प्रभावित 265 तहसीलों की 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा फीस माफ कर दी है। ये छूट फरवरी मार्च 2027 में होने वाली संभावित SSC और HSC परीक्षाओं के लिए अगले आदेश तक लागू रहेगी। मुंबई में इस वर्ष गणेश उत्सव के दौरान 97% से अधिक गणेश प्रतिमाओं की

कृत्रिम तालाबों में विसर्जन किया गया। बीएमसी के अनुसार शहर में कुल 1,97,382 प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ, जिनमें 6 फीट तक की 1,92,237 प्रतिमाएं 383 कृत्रिम तालाबों में विसर्जित की गई। समाचार के अंत में, पुरुष क्रिकेट में भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 अजेय बढ़त बना ली है। अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार।

10:02 हुए हैं और ये समय होता है कार्यक्रम नमस्ते भारत का। मैं हूँ आरजे किरण माला। इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ।

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

10:09 हुए हैं और कार्यक्रम नमस्ते भारत की शुरुआत हो गई है। हमेशा कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ऐसे ही एक हस्ती के बारे में आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। ये खेल की दुनिया के बहुत बड़े सितारे हैं, बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इनके पास खेल का अभ्यास करने के लिए जरूरी सुविधाएं भी नहीं थी, ज़रूरी सामान भी नहीं था। इनके पास सिर्फ एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज थे और एक ही टी शर्ट हुआ करती थी। वो रोज़ रात को उन्हें धोया करते थे और अगले दिन फिर से उन्हें पहनकर प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन आज वो क्रिकेट की दुनिया के बहुत बड़े खिलाड़ी है और भारतीय टीम की शान है। अगर आपको इनका नाम याद आ गया है तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए बता सकते हैं। तब तक हम इंजॉय करते हैं कार्यक्रम के इस गाने को।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

10:21 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत। हमेशा कहा जाता है नो पेन नो गेन्स, यानी तकलीफ नहीं उठाएंगे तो फायदा भी नहीं मिलेगा। कुछ पाने के लिए तकलीफ उठानी ही पड़ती है। क्रिकेट के जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं, उनकी जिंदगी का एक और किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार ये अपनी माँ के साथ शूज के एक बड़ी दुकान में गए। ये प्रैक्टिस करने के लिए एक अच्छे ब्रांड के जूते खरीदना चाहते थे, लेकिन इनकी माँ ने कहा ये जूते बहुत महंगे हैं, हम नहीं खरीद सकते, इन्हें खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। अब बिना जूते खरीदे ही उस दुकान से ये वापस आ गए। प्रैक्टिस करने के लिए इन्हें इनके मनपसंद जूते नहीं मिले, लेकिन उनके पैरों ने, उनके कदमों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी रफ्तार को कम नहीं होने दिया, बल्कि और ज़्यादा तेज कर दिया और एक दिन भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाई। दोस्तों, इनका नाम है, इस गाने के बाद हम बताएंगे, क्योंकि और थोड़ा सा समय दे देते हैं श्रोताओं को, जल्दी से बताएं। कुछ श्रोताओं ने सही उत्तर दिया है, जिन्होंने सबसे जल्दी दिया है, हम उनका नाम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इंजॉय करते हैं इस गाने को।

10:26 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत। जैसा कि हमने बताया कि उनका नाम क्या है, जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। आज ये भारतीय क्रिकेट के स्टार गेंदबाज है और सही उत्तर दिया है पंकज मोहड़ अमरावती से। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।

0: It's time for the Asian Games 2026 update.
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। दोस्तों मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त यहां मौजूद है धर्मेंद्र और हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सुबह के 10:30 की लाइव अपडेट्स फ्रॉम द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की, जहां भारत और श्रीलंका आज है इस वक्त आमने सामने इन द सेमीफाइनल क्लैश। एंड इंडिया वॉज ऑब्वियसली पुट इन टू बैट फर्स्ट टूडे, जी हाँ। एंड बल्लेबाजी करते हुए भारत ने आज शुरुआती दौर में ही बहुत जल्दी अपने दो विकेट्स, इंपॉर्टेंट विकेट्स, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का गवा दिया वेरी अर्ली ऑन। एंड एज अ रिजल्ट दे स्टार्टेड ड्रिलिंग इन एट 24/2। लेकिन देन वैभव सूर्यवंशी के ऊपर पूरा का पूरा एक तरह से कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई टू हेल्प इंडिया सम हाउ सस्टेन themselves एंड पुट themselves इन अ कमांडिंग पोजिशन। एंड वैभव सूर्यवंशी देन वॉज एबल टू लीड इंडिया टूवर्ड्स एन इंपॉर्टेंट इनिंग्स वेरी हिट 20 गेंदों में 38 रन्स, विच इंक्लूड्स 6 फोर्स इन 2 सिक्सेस एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 190, thereby helping India somehow stabilize themselves at 59 runs for the loss of 2 wickets. But as I say this, Vaibhav Suryavanshi also has now gotten out. Ji haan, Vaibhav Suryavanshi got out and he was caught by Sinith Jayawardena. As a result, India now are 59/3 in just 6.2

0: overs, Dharminder, a lot needs to be seen as to how the Indian innings will develop in this stipulated 20 overs.
1: Yeah, लेकिन तीरंदाजी से तो मिलीजुली खबर आ रही है. पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड इवेंट में गणेश मणिरत्नम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जहां उनका सामना कुछ ही देर में दक्षिण कोरिया के किम जोंगो से होगा. गणेश मणिरत्नम ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे के ची लुनचेन को 148-138 के अंतर से हराया. गणेश ने इस मुकाबले में सिर्फ दो अंक गवाए. स्कोर 29-28, 29-28, 30-29, 30-26 और 30-27 रहा. हालांकि चिकिता तनिवार थी, क्वार्टर फाइनल में हार गई और एक जो मेडल की उम्मीद उनसे थी वो पूरी नहीं हो सकी. काफी नजदीकी मुकाबला रहा और इंडोनेशिया की नुरिसा दियान अशरीफा ने उन्हें हराया. और तिरंदाजी में ये जो खबर रही, ये मिली जुली खबर है
0: जी. और जूडो की दुनिया से आपको कुछ खबर दे देते हैं, जहां यामिनी मौर्य क्वालिफाइड फॉर द वुमेन्स 57 किलोग्राम्स कैटेगरी क्वार्टर फाइनल इन जूडो. लेकिन क्वार्टर फाइनल से आगे जीत पाने के बाद जब वो आगे गई, तो वहां पर हमने देखा कि यामिनी मौर्य लॉस्ट वुमेन्स 57 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल टू मंगोलियाज अरियुनजाया तरबिश बाय यूको. एंड दूसरी तरफ अब बात करते हैं कि शी देन मूव्ड इनटू द रेपेचेज वेयर शी वुड बी फेसिंग जापान्स मियो श्रीकाने फॉर अ प्लेस इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच. दूसरी तरफ भारत की तरफ से हमने देखा कि इनुनगन भी तकलबार एडवांस टू द वुमेन 70 किलोग्राम्स क्वार्टर फाइनल्स आफ्टर बीटिंग नेपाल्स पूनम श्रेष्ठ बाय इपो. शी विल टेक ऑन नॉर्थ कोरियाज मून सोंग हुई नेक्स्ट.
1: और शूटिंग से अच्छी खबर आने का सिलसिला जारी है. अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल के फाइनल में जगह बना ली है. हालांकि अनीश क्वालिफिकेशन में 9वें स्थान पर रहे, लेकिन इस प्रदर्शन के बावजूद उनसे पदक की उम्मीद साक्षी तो बनी हुई है
0: जी. और कयाक की दुनिया से भी आपको कुछ खबरें दे देते हैं, जहां पर इंडिया शिखा चौहान हैज बुक्ड अ प्लेस इन द वुमेन्स कयाक सिंगल फाइनल आफ्टर फिनिशिंग 10th इन द सेमीफाइनल्स. शिखा क्लॉक 246.16 सेकंड्स टू सिक्योर अ स्पॉट इन द फाइनल व्हिच विल बी बिगिनिंग शॉर्टली एट अराउंड 10:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, व्हिच शुड बी से दैट द मैच इज ऑल सेट टू हैपन नाउ.
1: और टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में भारत के सुमित नागल चीन के यिबिंग वू से पराजित हो गए हैं. स्कोर 4-6, 4-6 रहा. हालांकि सुमित ने वापसी की भरपूर कोशिश की, बहुत जोर लगाया, लेकिन भारी साबित हुए यिबिंग वू और उन्होंने इस जीत के साथ टेनिस में भारत की जो दमदार चुनौती हुआ करती थी उस पर पानी फेर दिया और टेनिस में भारत की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं
0: जी. और सेलिंग की दुनिया से आज सुबह आई सबसे बड़ी खबर भारत के लिए, जहां इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुर्सिनिकल नोबल विनिंग सिल्वर इन द मेन्स स्किफ इवेंट. इंडियाज प्रिंस कुर्सिनिकल नोबल एंड मनु फ्रांसिस क्लेम द सिल्वर. द इंडियन पेयर फिनिश सेकेंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड द गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 नेट पॉइंट्स. इंडिया रिकॉर्डेड 2 रेस wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China went on to claim the gold while Hong Kong took the bronze medal.
1: और ताइक्वांडो में भारत की रूपा बायूर महिला व्यक्तिगत पुंसे के सेमीफाइनल में 7.6100 अंक के साथ 5वें स्थान पर रही. वे फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई हैं. पुंसे में हम आपको बता दें कि खिलाड़ी अकेले कई मूवमेंट का प्रदर्शन करते हैं, इसमें किसी प्रतिद्वंदी से मुकाबला नहीं होता. प्रदर्शन का आकलन सटीकता और प्रस्तुति के आधार पर किया जाता है
0: जी. एंड जस्ट बिफोर वी रैप अप दिस अपडेट, लेट्स गिव यू आल्सो वेयर इंडिया stands in the medal table as of now. भारत के पास इस समय कुल मिलाकर 62 medals हो चुके हैं. भारत इस समय medal table में 8वें स्थान पर है with a total of 62 medals which includes 10 gold, 22 silver, 30 bronze. That is all that we had in this update of 10:30 AM for all you lovely people. हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे सुबह 11:30 बजे. फिलहाल मुझे साक्षी मांडवाल और धर्मेंद्र को दीजिए इजाजत. Thank you. Goodbye.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

जी हाँ, इस समय ठीक 10:42 हुए हैं और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत। अभी हम भारतीय क्रिकेट के स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बारे में बात कर रहे थे। आज जब वो बॉलिंग करने के लिए पिच पर आते हैं तो दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को घबराहट होने लगती है कि इस खतरनाक गेंदबाज का सामना किस तरह करें। अभी हाल फिलहाल में भारत के महान खिलाड़ी कपिल देव ने जसप्रीत के बारे में कहा, जसप्रीत मुझसे कहीं ज़्यादा अच्छे गेंदबाज है। वाकई में कपिल देव जैसे सीनियर खिलाड़ी अगर किसी नए खिलाड़ी की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। वैसे जसप्रीत की जर्नी आसान नहीं रही है। उन्होंने मैदान पर बहुत पसीना बहाया, बहुत मेहनत की और अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया। वाकई में दोस्तों, महान खिलाड़ी बनने के लिए महान काम भी करने पड़ते हैं।

तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गाना और मैं आपसे विदा लेती हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए एफएम रेनबो, क्योंकि हमारी आरजे आ गई है जो ठीक 11 बजे आपके साथ रहेंगी।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 11:13 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, UPSC अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग DED के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। मुख्य समाचारों में आगे, लालबाग का राजा गणेशोत्सव के दौरान जमा हुए करीब 39 टन खाद्य कचरे से बायोगैस और बिजली तैयार की गई है। BMC ने लालबाग का राजा के सहयोग से प्रसाद टू पावर पहल के तहत इस कचरे से बिजली तैयार की गई, जिसका इस्तेमाल सिवरी TB अस्पताल में किया गया। मुख्य समाचारों के अंत में, जापान में जारी एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। ब्रेक फ्री के लिए बने रहे 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो पर, और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी। और आकाशवाणी मुंबई का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, ब्रेक।

फ्री शुरू हो चुका है और बहुत सारी बातें आपसे साझा करते हैं हम रोजाना इस घंटे, जो आपको बस प्रेरणा देता है उन चीजों से ब्रेक फ्री करने का जो बहुत ही आवश्यक होती है। कुछ चीजें होती है जो दिखाई देती है, समझ में आती है, और कुछ होती है ना वो इतनी शांत सी होती है, मैं कहूँगी इतने चुपके से आती है, चुपके से चीजें हो जाती है और हमें पता तक नहीं चलता। हाँ, ऐसा भी होता है कि ब्रेक फ्री करने वाले चुपचाप आकर ब्रेक फ्री कर जाते हैं चीजों से और अपने साथ न जाने कितनों के लिए ये जो है ब्रेक फ्री कर देते हैं चीजों से उनको। सोचिए दोस्तों, एक किसान हर साल और साल भर जो है जी तोड़ मेहनत करता है, कर्ज लेता है और जब फसल तैयार होती है तो उसे गोदामों में सड़ते हुए देखने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता। सालों साल हमारे किसान इसी लाचारी के आगे घुटने टेकते आए थे, ये मानकर कि प्याज का सड़ना तो किस्मत का खेल है जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन लसल गांव की एक बेटी ने सब पुरानी और दर्दनाक हकीकत को चुपचाप स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। जब उसके पिता की आंखों में प्यास सड़ने की वजह से आंसू आते, तब उसने हार नहीं मानी और उसने ना ही ये सोचा कि जो सिस्टम है या किस्मत है इनके भरोसे बैठना है, वो खुद समाधान बनने का अटूट संकल्प ले लिया था। उसने साबित कर दिया कि अगर कुछ ठान लो तो सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़कर आत्मनिर्भर बनकर एक नया इतिहास रचा जा सकता है, ब्रेक फ्री किया जा सकता है। तो आज लसलगांव नासिक की इस बेटी के नाम हमारा ब्रेक फ्री, और क्या किन चीजों से कैसे ब्रेक फ्री किया उसने, जानने के लिए बस बने रहें, सुनते रहें। मैं हूं वैशाली और आप सभी के साथ बनी रहूंगी दोपहर के 2 बजे तक। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो और ब्रेक फ्री में बातें हम कर रहे हैं एक ऐसी बेटी की जिसने भाई सारे बंधनों को, उलझनों को, सारे प्रॉब्लम्स को तोड़कर ब्रेक फ्री कर दिया. सिर्फ अपने आप को नहीं, वो कर रही थी ये अपने पिता के लिए. तो खुद को तो हाँ, क्योंकि जो पिता का है वो उसका आगे चलकर होने ही वाला था, लेकिन अपने पिता और अन्य बहुत सारे किसानों के लिए उसने बिल्कुल एक ब्रेक फ्री रास्ता निकाला. वो क्या था, बस बताऊंगी आपको. दोस्तों, हर साल जब एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लसलगांव के गोदामों से सड़ते हुए प्याज की बदबू आती थी, तो वो सिर्फ फसल की बर्बादी नहीं बल्कि हमारे अन्नदाताओं के अरमानों का कत्ल होता था. जब तक हमें उस सड़न का अंदाजा होता, तब तक आधी से ज्यादा मेहनत मिट्टी में मिल चुकी होती थी और हम सिर्फ हाथ मलते रह जाते थे. वो बेबसी और लाचारी के दिन अब हवा हो चुके हैं, जब किसानों की खून पसीने की कमाई यानी प्याज की भारी फसल गोदामों में रखे रखे सड़ जाती थी. आज की कहानी एक ऐसी जाबाज बेटी की है जिसने अपने पिता की आंखों में प्याज की सड़न की वजह से पैदा हुए लाचारी के आंसू देखे थे. नासिक के लसलगांव की मिट्टी में पली बढ़ी एक किसान की बेटी कल्याणी शिंदे ने बचपन से ही इस भयानक कृषि संकट के दर्द को बहुत करीब से झेला था. कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्याणी ने बड़े शहरों के बड़े पैकेजेस और आरामदेह कॉरपोरेट नौकरियों को हंसते हंसते ठुकरा दिया. उसने ये ठान लिया था कि वो अपनी उच्च तकनीकी शिक्षा का उपयोग अपने पिता और देश के लाखों किसानों की किस्मत बदलने के लिए करेगी. उसका एकमात्र अटूट लक्ष्य था कि मेहनत से उपजाए गए लाल सोने को चुपचाप गोदामों में खाक होने से हर हाल में बचाना है. तो ऐसा क्या किया कल्याणी ने, बताऊंगी आपको. बस थोड़ा सा इंतजार कुछ जाने और उस पार आपको बताऊंगी क्या किया उसने, बहुत कमाल की चीज की. पर बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स.

0: अपनी पसंद की कोई भी कार ले, कॉस्मोस कार लोन है ना।
1: कार लोन पर 3 करोड़ रुपए तक उपलब्ध, ब्याज दर 8% और अवधि 7 साल तक, शर्तें लागू।
0: सुहाना होगा सफर कॉस्मोस कार लोन के साथ।
1: आज ही नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन करे समृद्ध।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। ठीक 11:30 बजे आप सुनेंगे 2026 एशियाई खेलों के 20वें संस्करण के FM अपडेट्स।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: नमस्कार, आईजी नगोया एशियन गेम्स की अपडेट के साथ मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ हैं साक्षी मंडवाल। अभी अभी ये खबर आ रही है कि एक और ब्रॉन्ज मेडल भारत का पक्का हो गया। तीरंदाजों ने कल गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई थी और अभी अभी एक ब्रॉन्ज मेडल गणेश मणिरत्नम ने दिलाया है। तीरंदाजी में व्यक्तिगत जो इवेंट है कंपाउंड मुकाबला, उसमें उन्होंने अभी अभी गोल्ड मेडल जीता है। गणेश ने जबरदस्त फॉर्म दिखाई है इस मुकाबले में। 15 में से 14 निशाने परफेक्ट रहे और परफेक्ट 10 का उन्होंने स्कोर बनाया। गणेश मणिरत्नम ने यह मुकाबला 149-144 के बेहद आसान अंतर से जीता। हम आपको बताएं कि गणेश सिर्फ 20 साल के हैं। उन्होंने ट्रायल में ओजस देवतले को पीछे छोड़ा था। यह गणेश का पहला एशियन गेम्स है।
2: Right, on the other side, we now bring to you the news from the world of cricket, where India is up against Sri Lanka in the semi-final match today. And India, having been put into bat first today, was able to put on a total of 169 for the loss of 7 wickets in 20 overs, thanks to a very important and very resourceful contribution by Ishan Kishan, who put in 80 runs in 46 balls at a strike rate of 173.91, which included 4 fours and 5 sixes, when at one stage India was reeling at 87 for 4. It was a very confident and a very important contribution, the runs that came in from the bat of Ishan Kishan. And agar Sri Lanka ki baat kare to Sri Lanka ke bowlers ki taraf se ek all-rounded performance aaj hume dekhne ko mila, jahan par Tarendu Ratnayake ne 2 wickets liye, Sahan Archandigge ne 2 wickets liye, wahi वनुजा साहन ने एक विकेट लिया, लसित क्रूसपुल ने एक विकेट लिया और फर्नांडो ने भी एक विकेट लिया। सो वेल राउंडेड ऑल राउंडेड एफर्ट फ्रॉम द श्रीलंकन बोलर्स, बट नाउ श्रीलंका नीड्स 170 इफ दे वांट टू गो अहेड एंड विन दिस मैच अगेंस्ट इंडिया। द चेज कमिंग अप नेक्स्ट आल्सो।
1: और साक्षी, स्क्वाश से अच्छी खबर है, जहां भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। हालांकि सेमीफाइनल में भारतीय टीम को उम्मीदों के विपरीत 1-2 से हार मिली। पहला मैच अनाहत सिंह ने चान सिन युक

0: के खिलाफ 2-3 से गवाया, स्कोर 11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12 रहा। तन्वी खन्ना ने वर्ल्ड नंबर 33 ली का यी को 3-1 से हरा कर टीम को वापसी कराई। तन्वी ने मैच को 13-11, 11-9, 13-11 से वो जीता, लेकिन निर्णायक मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा होजे लोक से लगातार गेम में 4-11, 7-11, 9-11 से हार गई और भारतीय टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
1: जी, एंड इन द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग, इंडियाज अनीश भानावाला हैज मेड इट थ्रू द मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल आफ्टर फिनिशिंग 9th इन द क्वालिफिकेशन विद द टोटल ऑफ 576 पॉइंट्स। भानावालास फाइनल सीरीज शील्डेड जस्ट 94, बट ही अर्नड अ प्लेस इन द फाइनल आफ्टर साउथ कोरिया हैड 3 शूटर्स फिनिश इनसाइड द टॉप 8। With only 2 shooters from each country allowed to qualify, Bhanawala moved into the final. It will be India's final shooting event at these Asian Games, with Bhanawala now carrying the country's last medal chance in this discipline. And that match is scheduled for noon today, Indian Standard Time.
0: Yes, and yesterday, 3 gold ki hat-trick ke baad, जो तीरंदाजों की हम बात कर रहे थे, आज एक ब्रॉन्ज भी आया है। और अब हम आपको ये बताएं कि टेनिस में एक निराशा फिर से हाथ लगी है। पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में भारत के सुमित नागल चीन के यिबिंग वू से 4-6, 4-6 से हारकर बाहर हो गए। नागल के इस हार के बाद 40 साल बाद यह पहला मौका है जब भारत को टेनिस में कोई पदक नहीं मिला और खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।
1: Right, in the world of taekwondo also, we can give you a quick update that India's campaign in the women's individual Pumse event in taekwondo ended as Rupa Beor bowed out of the semi-final. She finished with 7.6100 points. This was not enough to finish amongst the 8 stars who qualified for the final.
0: और कुश्ती की बात करें तो भारत के लिए मिलीजुली खबर है। नितेश सिवाच ने पुरुषों के ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज कर एक पदक पक्का कर लिया है। नितेश ने हांगझोउ एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मंगोलिया के गंगखुयांग गनबातार को सेमीफाइनल में 9-0 से हराया। इस जीत के साथ नितेश ने भारत का 2026 एशियन गेम्स में कुश्ती का पहला मेडल पक्का कर दिया। नितेश ने इस साल एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था।
1: Right, and as we wrap up this update, a quick look on the medal table also, with India standing still on the 8th spot in the medal table with a total of 63 medals, which includes 10 gold, 22 silver and 31 bronze. Here's hoping that the Indian medal tally carries on increasing and that India finishes on a good spot. For now, it's me, Sakshi Mandwal, and Dharmendra saying goodbye to all our listeners. We'll be joining you once again at 12:30 p.m. in the afternoon with the updates of the ongoing Asian Games 2026. Thank you for tuning in. Goodbye.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम रेनबो। ब्रेक फ्री चल रहा है और अभी आप सुन रहे थे 2026 एशियाई खेलों के 20वें संस्करण के एफएम अपडेट्स। और ब्रेक फ्री में आप सभी को सुनवा रही थी मैं वैशाली एक कहानी प्यारी सी। तो लौटते हैं उस कहानी की तरफ। दोस्तों आज की कहानी आप सभी को सुनवा रही हूँ जिसकी वो बेटी लसल गांव की, उसने एक ऐसा तरीका खोज निकाला जिससे प्याज की सड़न को रोका जा सकता था और पता किया जा सकता था कि क्या मामला है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें होती है जीवन में जो ठीक नहीं चल रही होती, लेकिन हम सभी सोचते कि नहीं भाई इंतज़ार करते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं कहाँ हम इतना समय निकाल पाएंगे, इतना वक्त नहीं है, अरे कहीं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे अवसर है, चलो उनको ले लेते हैं, कहाँ यहाँ पर अटके फंसे रहेंगे अपने गाँव ज़िले में। लेकिन कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्याणी ने बड़े शहरों के बड़े पैकेजेस और आरामदेह कॉरपोरेट नौकरियों को हंसते हंसते ठुकरा दिया था। उसने ये ठान लिया था कि वो अपनी उच्च तकनीकी शिक्षा का उपयोग अपने पिता और देश के लाखों किसानों की किस्मत बदलने के लिए करेगी। उसका एकमात्र अटूट लक्ष्य था कि मेहनत से उपजाए गए सलाल सोने को चुपचाप गोदामों में खाक होने से हर हाल में बदलना है, बचाना है। दोस्तों कल्याणी ने

पारंपरिक तौर तरीकों की सीमाओं को लांघकर कृषि क्षेत्र में इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT जैसी आधुनिक तकनीक की मजबूत नींव रखी। उसने कॉरपोरेट फाउंडेशन के डिजिटल इंपैक्ट स्क्वायर के साथ मिलकर जमीनी हकीकत को समझा और भारत के पहले अनूठे गोदाम सेंस उपकरण का सफल आविष्कार किया। ये जादुई और छोटा सा डिवाइस सिर्फ एक मशीन नहीं है, पता आपको, बल्कि गोदामों की 2400 घंटे पहरेदारी करने वाला एक डिजिटल रक्षक बन गया। ये आधुनिक और अत्याधुनिक उपकरण गोदाम के भीतर उमड़ने वाले तापमान, गैस और नमी के स्तर को हर सेकंड पूरी सटीकता के साथ मापता है। ये बेजोड़ तकनीकी चीज जो है हमारे इंसानी नाक से बहुत पहले ही प्यास के सड़ने की गंध और हानिकारक गैसों को तुरंत भांप लेती है। पहले ये लाचारी थी कि जब पूरी फसल सड़ जाएगी तब जाकर कहीं नुकसान का पता चलेगा, पर अब हमारे किसान भाई इस लाचारी से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। बात है लसल गांव के इस बेटी की दोस्तों, जिसने ब्रेक फ्री किया, जिसने उस चीज से ब्रेक फ्री किया, उस सोच से ब्रेक फ्री किया कि भाई मैं बड़ी पैकेज वाली बड़ी जॉब के लिए बड़े शहरों में या देश के बाहर चली जाऊंगी और बहुत अपना नाम बनाऊंगी। ये तमाम चीजें वो बाहर जाकर भी कर सकती थी, लेकिन सबसे पहले उसने अपने मिट्टी के बारे में सोचा, अपने किसान भाई बहनों बुजुर्गों के बारे में सोचा, अपने पिता के बारे में सोचा। जीवन भर उसने जिस चीज से इन सभी को जूझते हुए देखा था, उस सभी से उसने उन सभी को ब्रेक फ्री करवाने का सोचा। ये जो सोच है दोस्तों, ये महान है, और इसी तरह की सोच चाहिए हमें जीवन में खुद को और दूसरों को भी ब्रेक फ्री करवाने के लिए, है ना। उसके लिए थोड़ा सा सरफिरापन, थोड़ा सा जुनून और बहुत सारी कोशिश की जरूरत होती है ना। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो पर, है आप म्यूजिकली योर्स।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक के लिए 7.10%, सीनियर सिटीजन के लिए 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिच योर लाइफ।
2: एक छोटी सी रिश्वत क्या सच में इतनी छोटी होती है? नहीं, रिश्वत सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि ईमानदारी और व्यवस्था पर चोट है। याद रखिए, न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो चुप मत रहिए। संबंधित सतर्कता या भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी को इसकी सूचना दीजिए। सतर्क रहें, ईमानदार रहें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

ब्रेक फ्री चल रहा है 107.1 एफएम रेनबो पर। दोस्तों बात हो रही है कल्याणी शिंदे की, जो लसल गांव की रहने वाली, वहां पर बड़ी होने वाली एक लड़की, किसान की बेटी। और उसने जो किया ना, वाकई वो सबकी लाचारी से सभी की लोगों को ब्रेक फ्री करवा दिया। दोस्तों बचपन से प्याज के खेतों के बीच और इन सारे टेंशन्स के बीच पली बड़ी

कल्याणी ने धीरे धीरे जो है एक ऐतिहासिक और शानदार सफलता को हासिल किया। और दोस्तों, इसकी सफलता जो है वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो लाचारी को इतिहास बना दिया जा सकता है। कल्याणी ने न केवल प्याज को सड़ने के अभिशाप से बचाया, बल्कि खेती को एक मुनाफेदार जो व्यवसाय है उसको बनाकर देश की युवा पीढ़ी और एक नई दिशा भी दिखाई उन्हें। मैं तो कहूंगी उसने सभी को नई दिशा दिखाई, पुराने, नए और जो युवा है जो सोचते हैं कि भाई खेती बाड़ी में क्या रखा है, उन सभी के लिए भी ये मिसाल के तौर पर उभरी। दोस्तों, अगर हम अपनी बेबसी को पीछे छोड़ दें, अपने ज्ञान और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करें तो हम भी बदलाव और सफलता का एक नया अध्याय लिख सकते हैं। कल्याणी ने हमें यही सिखाया है और यही रास्ता दिखाया है, क्योंकि दोस्तों जो उपकरण उसने लगाया, वो जो उपकरण था वो तकनीकी रूप से तो बहुत ही साधारण क्यों ना हो, उसने इतना कमाल का काम किया था कि सभी के प्रॉब्लम्स टेंशन्स दूर कर दिए थे। ये उपकरण जो है दोस्तों, स्थानीय मराठी और हिंदी भाषा में सीधे किसान के मोबाइल फोन पर एक चेतावनी संदेश यानी तुरंत अलर्ट भेज देता है। समय रहते मिले इस डिजिटल संदेश की बदौलत किसान फौरन अलर्ट हो जाते हैं और खराब हो रहे हिस्से को अलग करके पूरी फसल को तबाह होने से बचा लेते हैं। इस ऐतिहासिक खोज ने प्याज के भंडारण में होने वाले नुकसान को 20-25% तक घटा दिया है। ये कोई आम बात नहीं, ये कोई छोटी बात नहीं, ये वाकई एक ऐतिहासिक जीत है, और सिर्फ कल्याणी के लिए नहीं, सारे ही प्याज के किसानों के लिए और बाकी अन्य किसानों के लिए भी जिनके कोई भी उपज जो है सड़ रहे होते हैं और पता ही नहीं चलता, जब तक पता चल जाता है तब तक बहुत देर हो जाती है, उन सभी के लिए ये ब्रेक फ्री होने का कैसा गजब साधारण सहज सरल रास्ता है। इसी बात पर आप सभी को कुछ देर के लिए छोड़े जा रही हूं कुछ गानों के साथ। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 12:23 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB वराले की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय की सीमा तय की जाएगी। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 2026 आज से लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति ने 13 अगस्त को इस अधिनियम को मंजूरी दी थी। ये नया कानून बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 का संशोधित स्थान लेगा। ये अधिनियम बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने के लिए आधुनिक कानूनी ढांचा उपलब्ध कराएगा, जो मौजूदा बैंकिंग प्रक्रियाओं के अनुरूप होगा। मुख्य समाचारों में आगे, महाराष्ट्र सरकार ने आज कहा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव का तत्काल तबादला किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार, अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत MPSC के पूर्व और वर्तमान अध्यक्षों तथा सदस्यों के कामकाज की 3 महीने के भीतर न्यायिक जांच की जाएगी। बयान में कहा गया है कि आगे की कार्रवाई जांच निष्कर्ष के आधार पर की जाएगी। मुख्य समाचारों के अंत में, भारतीय कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु ने एशियाई खेलों की पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत ने आज नौकायान में अपना पहला पदक जीता, जब मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने पुरुषों की स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। म्यूजिक कैफे के लिए बने रहे 107.1 FM रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का 107.1 FM रेनबो। आप हमें FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुन रहे हैं और साथ ही साथ आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी आप हमें सुन सकते हैं।

आज म्यूजिक कैफे में बातें होंगी 80s के दशक के उन शानदार फिल्मी गानों की जो एक्सपेरिमेंट से भरे थे और जिनमें संगीतकारों ने सिंथेसाइजर और डिस्को बीट्स का एक नया सैलाब लाया था। ये वो दौर था जब बप्पी दा के फुट टैपिंग गानों से लेकर पंचम दा के अनोखे वेस्टर्न फ्यूजन ने हिंदी सिनेमा को एक मॉडर्न और बेहद वाइब्रेंट आवाज दी थी। लेकिन दोस्तों, आज एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बेहतरीन मेलोडियस और ऊर्जावान होने के बावजूद ये गाने 70 के दशक के क्लासिक ईरा और 90 के दशक के रोमांटिक मेलोडीज जितने पॉपुलर क्यों नहीं हो पाए। पर चलिए, यादों के इस दिलचस्प सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं 80 के दशक के कुछ अनमोल नगीने। और एक बार आप सभी को बता दूं कि शुरुआत हम करेंगे उन नगमों से, उन नगीनों से जो कहीं पर मुझे लगता है आप 70 के दशक में अटके हुए थे और बस 80 के आते आते यूं तैयार होकर कर ऐसे बाहर निकल आए। पक कर का मेरा मतलब बोर वाला पक नहीं है, क्योंकि मेरे मुंबई कर दोस्तों आप शायद सोचेंगे बोर होकर बाहर निकले, नहीं भाई, परिपक्व होकर, कंप्लीट होकर और पूरी तरह से तैयार होकर ऐसे पॉप आउट हो गए 80 के शुरुआत में। लेकिन कहीं ना कहीं इन गानों का जो दिल है, इनकी जो रूह है, ये 70 के दशक में अटकी हुई है, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या सोचते हैं बताइए हमें। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि 12:30 बजे से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम, तो भाई थोड़ा सा दिल थाम कर बैठिए। जितना टाइम आपको मिल रहा है इन गानों को इंजॉय करने का, तो बिल्कुल पूरी तरह से इंजॉय कीजिए। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: सब चाहते हैं अपना एक मनपसंद घर और सब चाहते हैं एक किफायती ब्याज दर।
1: कॉस्मोस होम लोन ब्याज दर 7.80% से शुरू।
0: 3 करोड़ रुपए तक का लोन उपलब्ध। कम से कम प्रोसेसिंग फीस 20 साल तक का अवधि।
1: शर्तें लागू। टोल फ्री नंबर 1800-233-0234।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। जीवन बनाए समृद्ध।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो म्यूजिक कैफे चल रहा है और मैं हूँ वैशाली। दोस्तों म्यूजिक कैफे में आपको मैं 80s के वो गाने सुनवा रही हूँ, ओहो, जो हमें बस मदहोश कर देते हैं या तो बस हमारे पैर नहीं रुकते, इतने जो है दमदार गाने रहे 80s के। लेकिन क्यों जब रिपीट पर सुनने की बात आती है तो 80s के गाने बहुत कम याद आते हैं, है ना। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें रही 80s के गानों में, वेस्टर्न फ्यूजन रहा, थोड़ा 70s का हिस्सा भी रहा, बहुत ज़बरदस्त गाने थे। तो दोस्तों बात मुझे लगता है कि ऐसी है कि 70s और 90s के गानों जितने 80s के गाने पॉपुलर नहीं हो पाए, यानी कि हुए लेकिन हमारे जहन में एज पॉपुलर गाने रह नहीं पाए, इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि 80 का दशक जो है हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था, जहां स्क्रीन पर एंग्री यंग मैन और एक्शन फिल्मों का दबाव बढ़ गया था और फिल्मों में मार धाड़ और थोड़ा वायलेंस, ये सारी चीजें थोड़ी हैवी हो गई थी, यानी एक्शन ओवरऑल हैवी हो गया था। तो गानों की सिचुएशन और उनके बोलों की गहराई कहीं ना कहीं पीछे छूट गई, जो 70s के दशक की सादगी में हुआ करती थी। साथ ही कैसेट कल्चर की शुरुआत के कारण बहुत सारा संगीत सिर्फ तत्कालिक मनोरंजन के लिए जल्दबाजी में बनाया भी जाने लगा था, ये भी कहा जा सकता है। हालांकि हिट गाने तो बहुत सारे रहे 80s के और हमने बहुत सुना, और उस जमाने में आई एम श्योर लोगों ने बार बार रिपीट पर ये गाने सुने ही होंगे। और ये जो बात रही कि गानों में जो ठहराव था ना वो नहीं था, और फिर जो है 90 के दशक में नदीम श्रवण या आनंद मिलिंद की जो बहुत ही प्योर रोमांटिक धुनें जो थी वो एक रोमांटिक सीन को लौटा लाई, और यही कारण है कि 80s के गाने बहुत अच्छे होने के बावजूद दो जबरदस्त दशक 70s और 90s के बीच कहीं दब कर रह गए, इसीलिए याद हमें नहीं आते। ऐसा नहीं है कि 80s में इतने ज़बरदस्त हिट गाने नहीं हुए, अब लैला ओ लैला या फिर ओम शांति ओम, ये सारे गाने किसे नहीं पता, पर याद नहीं आते। जब याद जो आते हैं वो आते हैं 70s के गाने और फिर 90s के गाने, तो ऐसा भी लगता है ना कि अरे भाई 80s कहाँ चला गया। बहुत याद करके फिर सोच कर वो गाने निकालने पड़ते। देखिए सारा डिस्को डांस का ईरा भी इसी समय पर था, और हीरो फिल्म जैसे ज़बरदस्त गाने जो बहुत ही मधुर भी थे ये भी आए हैं 80s में। तो चलिए डिस्को वाला गाना तो आपको पता है, एक आप सभी के लिए प्ले जरूर करूंगी मैं, लेकिन कुछ और गाने हैं जिन्हें सुनना बनता है, क्योंकि 80s को कहीं खोना नहीं है, 80s को भी संजो कर पकड़ कर थाम कर रखना है। बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे। बस ये आखिरी गाना था इस घंटे का और बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। उससे पहले जाते जाते दोस्तों यही कहूंगी कि भाई इसका कतई मतलब नहीं कि 80s के दशक में जादू नहीं था। इस दौर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम साहब और कुछ नायाब ऐसे रत्न हमें मिले हैं जिनकी कोई मिसाल ही नहीं है। और कर्ज फिल्म का गाना ही क्यों ना हो, ये डिस्को डांसर या कयामत से कयामत तक एक से बढ़कर एक गाने हमने सुने, हमें बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स मिले।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी ने। लिखते हैं,
2: रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: वाह क्या बात है, रिश्ते तब नहीं टूटते जब कोई दूर चला जाता है, लेकिन
2: रिश्ते तब टूटते हैं जब पास रहकर भी अपनापन नहीं रहता।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर विचार के लिए। तो आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: आर्य नगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी लिखते हैं,
0: छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार भोजली हमें माटी की खुशबू, प्रकृति से प्रेम करना और अपनी लोक परंपराओं को सहेजना सिखाती है। भोजली की हरियाली और संस्कृति का मान, यही हमारी छत्तीसगढ़ी पहचान है।
2: गाँव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बेबी कीरत अवाना जी लिखते हैं,
0: 25 अगस्त 2026 के कार्यक्रम में नागालैंड के लांगवा गाँव और कोन्याक जनजाति के बारे में दी गई जानकारी अत्यंत ज्ञानवर्धक, रोचक और दिलचस्प लगी। विशेष रूप से भारत म्यांमार सीमा पर बसे इस अनोखे गांव की स्थिति को, कोन्याक जनजाति की संस्कृति के बारे में जानना बेहद रोचक लगा।
2: ये भारत की विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। आपका कार्यक्रम हर सप्ताह हमें भारत की विविधता, संस्कृति और अनोखे तथ्यों से परिचित करा रहा है। हमारा पूरा परिवार इस कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करता है और हर बार कुछ नया जानने की उत्सुकता बनी रहती है। इस शानदार और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए आप दोनों का हृदय से धन्यवाद और साधुवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। लिखा है,
2: आदरणीय अजीत जी और विमलेश जी, सादर नमस्कार। हमारी संस्कृति, संस्कार, त्योहार, जाति, बोली, रहन सहन, भाषा और इन्हीं में हमारी मातृभाषा हिंदी प्रेरक प्रसंग में हमने जंगल, शैम्पू, पजामा शब्दों की उत्पत्ति के बारे में सुना। इतनी रोचक जानकारी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही पीटी उषा जी पर भी विशेष कार्यक्रम सुना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश

0: हमें मिला है श्रोताओ ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा और संजय अंशु वर्मा। साथ ही हमें संदेश मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से विकास कुमार मौर्य जी का।
1: बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा।
0: आप सबके संदेशों के लिए श्रोताओ एक बार फिर से हमारा बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओ भारत के बहादुर बच्चों की श्रृंखला में आज एक बार फिर से चलते हैं, आइए भारत के खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की ओर।
1: मेघालय जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल, झरने और नदियां प्रकृति की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं।
0: श्रोताओ मेघालय यानी मेघों का घर।
1: जी,
0: यह राज्य भारी वर्षा के लिए जाना जाता है और जब भारी वर्षा होती है तो प्रकृति भी कभी कभी चुनौती बन जाती है, खासकर तब जब बारिश हो और नदियों का बहाव बहुत तेज हो जाए।
1: जी हाँ श्रोताओ, ऐसी ही एक चुनौती आ खड़ी हुई मेघालय के एक 15 वर्षीय बालक के सामने। उसका नाम है किसेन वानियांग।
0: किसेन वानियांग एक ऐसा नाम जिसने अपनी बहादुरी से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। दिन था 25 मई 2024। मेघालय के साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के माओ लांगवीर गांव में भारी बारिश हो रही थी।
1: बारिश के कारण गांव की पहाड़ी नदी में धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था।
0: पहाड़ी नदियों में श्रोताओ अचानक ही पानी इतना बढ़ जाता है कि संकट की स्थिति अक्सर उत्पन्न हो जाती है।
1: जी।
0: उस समय बालक किसेन नदी के किनारे कपड़े धो रहा था। पानी बढ़ता देखकर उसने वहां से हटने का विचार किया, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ बच्चों की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ।
1: श्रोताओ कल्पना कीजिए, बारिश का मौसम, तेज बहती नदी और अचानक मदद के लिए बच्चों की चीख पुकार। किसेन ने देखा कि 4 बच्चे जिनकी उम्र लगभग 9 से 12 वर्ष थी नदी के तेज बहाव में फंस गए थे। ये वो क्षण था जब किसेन के सामने 2 रास्ते थे, एक अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना और दूसरा संकट में फंसे बच्चों की सहायता करना।
0: और किसेन ने श्रोताओ दूसरा रास्ता चुना। नदी में उतरना स्वयं एक बहुत बड़ा जोखिम था।
1: जी।
0: फिर भी किसेन ने बिना देर किए नदी में छलांग लगा दी और बच्चों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया।
1: एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर तीसरा
0: और अंततः चौथा बच्चा भी किसेन ने चारों बच्चों को पानी के तेज बहाव से खींचकर किनारे पर लगा दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना उसने 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
1: इतने में गाँव के लोग भी वहाँ आ गए और सबने किसेन की भूरी भूरी प्रशंसा की। दूसरे दिन इस घटना की चर्चा संचार माध्यमों द्वारा पूरे देश भर में फैल गई।
0: किसेन की इस बहादुरी को राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहा गया।
1: जी।
0: और फिर दिन आया 26 दिसंबर 2024 का, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के वीरता वर्ग में सम्मानित किया।
1: सोचिए श्रोताओं, केवल 15 वर्ष की उम्र और ऐसा साहस कि 4 बच्चों का जीवन बच गया।
0: श्रोताओं किसेन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन साहस और समर्पण हो तो बहुत असंभव लगने वाला कार्य भी किया जा सकता है।
1: जी।
0: यहाँ हम उमंग कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों और सभी श्रोताओं को कहना चाहेंगे कि
1: यदि कभी आपके सामने कोई व्यक्ति नदी, तालाब या किसी अन्य खतरनाक स्थान पर संकट में हो तो बिना सोचे समझे स्वयं खतरे में न कूदें।
0: बिल्कुल, तुरंत आसपास अपने बड़ों को बुलाएं, स्थानीय बचाव दल या आपातकालीन सेवाओं से सहायता लें, असुरक्षित तरीके से मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि बहादुरी का अर्थ केवल जोखिम उठाना नहीं है
1: बल्कि समझदारी के साथ साथ सही समय पर सही कदम उठाना ही बहादुरी है।
0: बहादुर बालक किसेन वानियांग ने 4 बच्चों की जान बचाकर ये संदेश दिया कि मानवता की भावना किसी उम्र की मोहताज नहीं होती
1: और सारी दुनिया के बच्चों के लिए उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई। दूसरों की मदद कीजिए, संकट में धैर्य रखिए और हमेशा अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखिए।
0: तो श्रोताओ आज की कहानी से हम 3 बातों को जरूर याद रखें।
1: जी।
0: तो पहली बात,
1: संकट में घबराएं नहीं।
0: दूसरी बात,
1: जरूरतमंद की सहायता करने का प्रयास करें।
0: और तीसरी बात,
1: साहस के साथ साथ समझदारी और सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
0: तो बहादुर बालक किसेन बानियांग को उमंग कार्यक्रम की ओर से सलाम।
1: जी, और भारत के उन सभी बच्चों को भी सलाम जो कठिन परिस्थितियों में मानवता और साहस का परिचय देते हैं।
0: तो श्रोताओ अभी आपने सुनी किसेन बानियांग की कहानी।
1: जी।
0: और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से है। हमारा प्रश्न है, मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मेघालय शब्द का क्या अर्थ है? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT Books PDF और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं

0: या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
0: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता को इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि चींटी कितनी परिश्रमी और उद्यमी है। हमें अपने जीवन में चींटी से सीखने की आवश्यकता है।
1: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम चींटी, और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेजर सोमनाथ शर्मा।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के पराक्रमी योद्धा मेजर सोमनाथ शर्मा के जीवन और युद्ध के मैदान में उनके असाधारण शौर्य के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने युद्ध का रुख भारत के पक्ष में मोड़ दिया।
2: विद्यालय में प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा की जा रही है।
3: मेरा देश महान भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है पांचवी कक्षा की छात्रा मेघा ने।
4: बहुत ही बढ़िया बोला, बिल्कुल बिल्कुल
5: अरे वाह मेघा, मजा आ गया। आओ देखिए क्या मिला है पुरस्कार में।
6: ना नहीं,
5: अरे
6: इसे तो मैं नंदिनी मैडम के सामने ही खोलूंगी। पता है इस भाषण प्रतियोगिता की तैयारी उन्होंने ही करवाई थी।
7: अरे मोहित तुम ही बोलो ना, मेघा तो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बोलो ना।
6: हाँ।

0: दिखा देना नंदनी मैडम को भी, पर हम भी तो देखें इसमें है क्या।
1: प्लीज दिखा दो।
2: अरे चुप चुप, देखो मैडम आ रही हैं।
0: चलो चलो सब क्लास में चलो, अगर देर हो गई तो मैडम फिर गुस्सा हो जाएंगी।
2: चलो चलो चलो चलो।
3: गुड मॉर्निंग मैडम।
4: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की भाषण प्रतियोगिता कैसी लगी?
3: बहुत अच्छी।
1: मैडम, मेघा ने बहुत अच्छा बोला।
4: हाँ केतकी, मेघा इधर आओ।
5: जी मैडम।
4: शाबाश शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुम्हें मंच पर इतना अच्छा बोलते देखकर।
5: धन्यवाद मैडम।
4: क्या मिला पुरस्कार में?
5: जी
0: मैडम, आप ही कहते इंतजार कर रही थी।
4: अच्छा,
0: कह रही थी मैडम के सामने ही खोलूंगी।
4: मेघा दिखाओ तो अपना पुरस्कार।
5: लीजिए मैडम।
4: हाँ, इसको खोलते हैं। अरे वाह, ये तो एक किताब है।
0: अरे किताब भी नहीं है।
4: हाँ, शीर्षक है हमारे परमवीर चक्र विजेता। वाह
5: मैडम, किस विषय पर है ये किताब?
4: मेघा, ये किताब हमारे देश के उन वीर सैनिकों के बारे में है जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। समझे?
0: सैनिकों के बारे में?
5: सैनिकों के बारे में है।
0: अच्छा अच्छा, अब्दुल हमीद के बारे में है। इनके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, वही है ना मैडम?
4: हाँ मोहित, पर अब्दुल हमीद के साथ साथ इसमें और भी वीर सैनिकों के बारे में लिखा है जिन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया जा चुका है।
5: हाँ मैडम, मेरी कॉलोनी में एक लड़का रहता है। वो कहता है कि उसके दादाजी के एक दोस्त हैं, उन्हें भी परमवीर चक्र मिला था।
4: अच्छा।
5: उन्होंने भारत पाक युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे।
4: वाह,
1: क्या परमवीर चक्र उसी को मिलता है जिसने युद्ध में लड़ाई लड़ी हो?
4: हाँ केतकी, परमवीर चक्र उनको मिलता है जो युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के समय अपनी आन बान जान को देश पर न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं।
0: सैनिकों को तो बात करनी होती
5: है। बहादुर है हमारे सैनिक।
0: अरे वाह, इस किताब में तो बहुत सी वीरता की कहानियां पढ़ने को मिल सकती हैं। मेघा, मुझे भी ये किताब पढ़ने के लिए दे देना प्लीज।
1: मुझे भी।
0: इसके बाद में नहीं, पहले मैंने कहा था, पहले मैं।
5: हाँ हाँ, हम सब पढ़ेंगे एक एक करके।
0: पर मेघा, इस तरह तो काफी समय लग जाएगा।
4: मोहित एक मिनट, एक रास्ता है।
0: रास्ता है?
4: मेघा, क्यों ना तुम इस किताब को पढ़कर हम सबको उन शूरवीर योद्धाओं के बारे में बताओ। कैसा रहेगा? अच्छा ना। अच्छा देखो, कल रविवार है, कोशिश करना कि पूरा दिन बैठकर ये किताब पढ़ सको।
5: जी मैडम, मैं पूरी कोशिश करूंगी।
4: ठीक है, तो बच्चों सोमवार को नंदनी मैडम की जगह मेघा मैडम से पढ़ेंगे।
5: जी मैडम।
3: गुड मॉर्निंग मैडम।
4: गुड मॉर्निंग। हाँ तो मेघा, आज तैयार हो सबको पढ़ाने के लिए?
5: जी मैडम।
4: अच्छा पहले ये बताओ, कैसी लगी किताब?
5: मैडम, बहुत ही अच्छी किताब है। उन बहादुर सैनिकों की वीरता का वर्णन पढ़कर ऐसा लगा कि मैं भी सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूं।
4: क्या बात है।
0: अच्छा मेघा, ये परमवीर चक्र कब और किसको मिलता है?
5: बताती हूँ। सुनो, परमवीर चक्र हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पदक है। ये चक्र युद्ध में प्रदर्शित असाधारण वीरता और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये पदक सेना, नौसेना और वायुसेना के अफसरों तथा जवानों को प्रदान किया जाता है।
0: वाह।
4: अच्छा मेघा, क्या तुम बता सकती हो पहला परमवीर चक्र किसे और क्यों मिला था?
5: जी मैडम, पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था।
4: शाबाश।
5: उन्होंने 1947-48 में हुए भारत पाक युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया था।
0: मेघा, ऐसा क्या किया था उन्होंने?
5: हाँ, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। कहाँ से शुरू करूँ?
6: ओ मैडम जी।
4: जी मोहन भैया, क्या बात है, आ जाइए आ जाइए।
6: मैडम जी आपसे कोई मिलने आया है, कहते हैं आप ही ने बुलाया उनको।
4: ओ हाँ हाँ हाँ, मोहन भैया आप उन्हें बिठाइए, मैं भी आती हूँ।
6: ठीक है जी।
4: बच्चों मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, शोर मत मचाना।
5: जी मैडम।
4: मेघा देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
2: मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया होगा कि उन्हें परमवीर चक्र जैसा सम्मान मिला।
0: काश मुझे भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिले, फौजी अफसरों का साथ हो और सामने दुश्मन।
5: देखो नंदिनी मैडम के साथ कोई फौजी अफसर आ रहे हैं।
2: मोहित लगता है आज तुम्हें अफसर मिल ही जाएगा। काश मिल जाए।
4: चुप, एकदम शांत। बच्चों ये है मेजर अशोक।
3: नमस्ते सर।
7: नमस्ते बच्चों।
4: ये भारतीय सेना में अफसर हैं, आजकल छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। क्यों मेजर? आज इन्हें मैंने खास तौर से तुम लोगों से मिलने के लिए बुलाया है। क्यों, ठीक किया ना मेघा?
5: जी मैडम।
7: भाई आप लोगों की क्लास तो बहुत अच्छी लग रही है, आपको देखकर लग रहा है कि आप सभी बहुत अनुशासन प्रिय हैं।
5: धन्यवाद सर।
7: सबसे पहले तो मेघा मैं तुम्हें और तुम्हारी कक्षा को बधाई देना चाहूंगा। मैंने सुना है कि तुमने मंच पर बहुत अच्छा बोला।
5: धन्यवाद सर।
7: हाँ तो बताओ कि कहाँ से शुरू करें?
5: सर मेजर सोमनाथ शर्मा ने ऐसा क्या किया था जो उन्हें परमवीर चक्र मिला?
7: बिल्कुल ठीक। बच्चों मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को डाढ़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था। मेजर सोमनाथ शर्मा एक बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ये बात सन 1947 की है जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था। बहुत ही भावुक और नाजुक समय था वो। बच्चों परिवार बिछड़ रहे थे, दोस्त बिछड़ रहे थे और सबसे बड़ा दुख था अपनी जमीन, अपनी मिट्टी से बिछड़ने का।
4: जी आपने बिल्कुल ठीक कहा मेजर।
7: कुछ रियासतें पाकिस्तान से जा मिली तो कुछ भारत से, और कुछ असमंजस में थे, यहां जाएं कि वहां जाएं। अभी तो सब एक ही था, एक हिंदुस्तान। क्या था बच्चों?
3: एक हिंदुस्तान।
7: उनमें से एक थे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह। उन्होंने कुछ समय मांगा जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा और मत जानने के लिए। भारत को यह मंजूर था, पर पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर की जमीन को अपनी जमीन में मिलाने को आतुर था, उसे ये बात मंजूर नहीं थी। पाकिस्तान ने आक्रमण कर जम्मू कश्मीर को अपने वश में करने की ठान ली। पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर पर हमला 22 अक्टूबर 1947 को शुरू हुआ। हमले के लिए 20,000 कबायलियों के लगभग 20 लश्करों का संगठन बनाया था पाकिस्तानी सैनिकों ने, और उन्हें काम सौंपा गया था जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जा करने का। महाराजा हरि सिंह को यह नागवार गुजरा और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान के साथ अपनी रियासत के विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था और उसकी रक्षा करना भारतीय सेना का कर्तव्य। हमारी फौज ने जरा भी देर नहीं लगाई, हिंदुस्तानी फौज की टुकड़ियां एक एक कर जम्मू कश्मीर पहुंचनी शुरू हुई। ऐसी ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा।
8: मेजर सोमनाथ शर्मा, एक डॉक्टर की तो यही सलाह है कि आप आराम करें। आपके हाथ पर प्लास्टर बंधा है, इस हालत में श्रीनगर जाना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है।
7: सर मेरी कंपनी श्रीनगर जा रही है और मेरा उनके साथ जाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे मौके पर अपनी कंपनी का साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं आपकी राय का सम्मान करता हूँ किंतु मुझे जाना ही होगा। जय हिंद। दुश्मन की संख्या लगभग 700 थी और हम 100, यानी हमारा एक सैनिक 7 हमलावरों से लड़ रहा था। मेजर सोमनाथ शर्मा के लिए वो कठिन परीक्षा का समय था, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक ओर तो अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे।
9: शाबाश जांबाजू, एक एक को नहीं छोड़ेंगे, ये चाहे तादाद में ज्यादा है लेकिन हम इनसे कम नहीं। डटे रहो, ये काम करो। फायर फायर।
7: और दूसरी ओर आला अफसरों को स्थिति की जानकारी देते रहे।
9: सर सर, दुश्मन हमसे तादाद में 7 गुना ज्यादा है लेकिन हमने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी है। हम यहाँ पे अगली सांस तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे। आप फौरन हवाई कवर भेजिए। ओवर एंड आउट।
7: उन्हें बताया गया कि लड़ाकू विमानों को उनकी मदद के लिए भेजा जा रहा है।
9: सर, हम लड़ाकू विमानों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास एम्युनिशन खत्म होता जा रहा है लेकिन हम हौसले से दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। हम चार चार दुश्मनों को अकेले मार रहे हैं। ओवर एंड आउट।
7: मेजर शर्मा ने स्वयं हवाई हमले के लिए धरती पर पहचान फीतियां लगाकर टारगेट बनाया। शीघ्र ही 2 लड़ाकू विमान आए। हमला भी हुआ पर दुश्मन संख्या में ज्यादा थे और इस हमले का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ा। मेजर शर्मा जानते थे कि दुश्मन का असली मकसद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कब्जा करना है। उन्होंने निश्चय किया कि जैसे तैसे वो दुश्मन को वहां रोके रखेंगे। वायरलेस पर मेजर शर्मा अभी अफसरों से बात कर ही रहे थे।
9: सर, दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हम दुश्मन की भारी तादाद के कारण गिर गए हैं, पर मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। सर, हम आखिरी जवान और आखिरी गोली तक लड़ते रहेंगे।
7: तभी एक जोरदार धमाका हुआ।
9: जवानों, आगे बढ़ो। एक दुश्मन बचने न पाए। आगे बढ़ो। फायर।
7: और वायरलेस सेट ने भी उनका साथ छोड़ दिया, पर मेजर शर्मा बड़ी मुस्तैदी से एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर भागते रहे और जवानों को निर्देश देते रहे।
9: बाला सिंह, मैं भाई वैसे बताऊं, कीप ऑन फायरिंग, छोड़ना नहीं मोर्चा, कोई यहां से निकलेगा नहीं, हम एक-एक को मार के छोड़ेंगे, कीप ऑन फायरिंग।
7: उन्हें दुश्मन की गोलियों से बेखौफ एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक भागते देख भारतीय सैनिकों में भी खूब जोश भर आया। उन्होंने सैनिकों को गोलियां भर भर कर मैगजीन दी जिससे दुश्मन पर किए जा रहे जवाबी फायर की गति धीमी ना पड़े। मेजर शर्मा एक जगह मैगजीन में गोलियां भर ही रहे थे कि दुश्मन का एक बम उनके बगल में पड़े एम्यूनिशन के भंडार पर आ गिरा। और इस धमाके से इस योद्धा ने वीर गति पाई।

0: लगभग 6 घंटे तक हमारे 100 सैनिकों ने 700 की संख्या वाले दुश्मन को रोके रखा। और बच्चों, उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को दुश्मन के हाथों में पड़ने से बचा लिया। मेजर शर्मा अंतिम सांस तक अपने जवानों का नेतृत्व करते रहे और इस तरह उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्हें मरणोपरांत ये चक्र दिया गया था।
1: मेघा, मेघा, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में आंसू?
0: मेघा, इस कहानी को सुनकर आंसू नहीं, जोश आना चाहिए। अपने देश के लिए कुछ करने का जोश। क्यों बच्चों?
2: यस सर, शाबाश।
1: हाँ तो बच्चों, ये थी मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता और बलिदान की कहानी। ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे।
0: नंदिनी जी,
1: जी
0: मैं आपका और खासतौर से इन बच्चों का धन्यवाद करना चाहूंगा। इसलिए नहीं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ध्यान से सुना, बल्कि इसलिए

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो। आप हमें न्यूज ऑन AIR ऐप पर सुन रहे हैं, FM पर और साथ ही साथ आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी। मैं हूं वैशाली और भाई वो समय आ चुका है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मैं आप सभी के मैसेजेस, क्योंकि जैसे कि आप समझ रहे हैं कि शो की गति बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इस वजह से आपके मैसेजेस को मैं पहले जवाब नहीं दे पाई, लेकिन क्योंकि अब समय है आपकी बातों का, आपकी फरमाइशों का हिट एंड हॉट में 107.1 FM रेनबो पर, तो मैं जुड़ पा रही हूँ और आप सभी से बातें भी हो रही हैं। तो सबसे पहले जो है मेरी बात हुई जिनसे, पंकज मोहड़ जी से। उन्होंने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि लसल गांव कहाँ है, तो उन्होंने ढूंढा तो पता चला कि नासिक में है ये गांव, और उन्हें जो है कल्याणी शिंदे की कहानी बहुत अच्छी लगी। और आप सभी को बता दूं कि ये एक सच्ची कहानी है, ये मनगढ़ंत नहीं है, और वाकई इन्होंने जो है बहुत कुछ हासिल किया है अपने किसान भाइयों के लिए, किसानों के लिए, तो ये वाकई काबिले तारीफ। और यही बात पंकज मोहड़ जी को भी बहुत अच्छी लगी। अयाज चौधरी, इनका कॉल आया था मुझे, इन्हें भी बहुत अच्छी लगी ये कहानी। से इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 24 तारीख को जो गणेश उत्सव के बारे में मैंने चार भक्तों की कहानी शेयर की, तो वो भी उनके दिल को छू गई। और आज के बारे में ये कहते हैं कि कल्याणी की ये बात अच्छी लगी कि उसने दूसरों के बारे में सोचा, जबकि वो अपने बारे में सोच सकती थी और कुछ कर सकती थी और ज़्यादा कुछ अपने आप तक ही रख सकती थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, उसने सबके हित का सोचा, तो ये बात इनके दिल को छू गई। और मुझे मैसेज आया है दीपा पालकर, इनका भी। दीपा जी लिखती हैं कि लसल गांव में रहने वाली कल्याणी, इन्होंने खुद के ही घर में प्याज भारी पैमाने पर जो खराब होते हुए सड़ते हुए देखा और नुकसान को देखकर उनका दिल पसीज गया, और जो मैंने बताई थी चीज़ें यही इन्होंने गोदाम सेंस और ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा है। और ये कहानी उन्हें बहुत पसंद आई, ऐसा लिखा है कि सभी को दुख से ब्रेक फ्री होने का रास्ता कल्याणी ने दिखाया और इन्होंने अपनी फरमाइशें भेजी है। अब मुझे और भी कई सारे हमारे श्रोताओं के मैसेजेज आए हैं, अशोक पाटिल जी का वर्ली से, अंजू जी का अंधेरी से। यहां पर मुझे जो सबसे पहला मैसेज आया है वो है, मैं देख रही हूं कि बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेध साधना, अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, श्लोक दीपाली, इन सभी के मैसेजेस आए हैं और ये दूध का कर्ज फिल्म गाने की फरमाइश भेजते हैं। तो सबसे पहले ये गाना मैं आप सभी के लिए प्ले करूंगी। मुझे प्रणव शिंदे, इनका भी मैसेज आया है, इन्होंने लिखा कि शुभ प्रभात और ब्रेक फ्री पर स्वागत है, ये सारी बातें लिखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल से। राजेंद्र परमार जी भी हमें मैसेज भेजते हैं, इन्होंने लिखा है कि म्यूजिक कैफे में स्वागत है, उस समय इन्होंने मैसेज किया था, बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आप सभी का। कल्पना राजू जी उल्लासनगर से हमें करती है मैसेज और लिखती है कि गाना मेरे मनपसंद। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैसेज इनका।

तो थोड़ा ठीक से पढ़ना पड़ेगा मुझे, और थोड़ी देर के बाद मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि इन्होंने क्या लिखा है। लेकिन कल्पना राजू जी ने उल्लासनगर से हमें मैसेज किया है, और बाकी मैं वही देख रही हूँ कि हमें शुभदा जी ने भी मैसेज किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इन्होंने एक लवली अक्टूबर के लिए मुझे शुभकामनाएं दी है। वाकई आज अक्टूबर का पहला दिन है और सच में दिन और रात कहाँ गुजर जाते हैं, कितनी तेज़ी से समझ में नहीं आता। फिरोज जिगनपोरिया इन्होंने भी हमें मैसेज किया है, उन्होंने लिखा है कि उन्हें जो है स्टोरी बहुत पसंद आई कल्याणी की, और बहुत अच्छी तरह से उन्हें मज़ा भी आया, और पेश करने के लिए धन्यवाद ऐसा लिखा है। तो इन्होंने भी अपनी फरमाइशें भेजी हैं। तो सबसे पहले जो है मैं प्ले करूँगी दामोदर परिवार की फरमाइश, उसके बाद अयाज चौधरी, इन्होंने मुझे एक दो गाने का ऑप्शन दिया है तो कोशिश रहेगी कि वो प्ले करूँ, और फिर उसके बाद दीपा पालकर, इनकी फरमाइश। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है तो चुप मत रहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक जरिया है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या CVC के दायरे में आने वाली संस्था से जुड़ी शिकायत है तो आप CVC की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जानकारी और कंप्लेंट के लिए विजिट करें cvc.gov.in। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी आवाज से होती है।
1: अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 FM रेनबो, हिट एंड हॉट चल रहा है। और मुझे कॉल आया था दादर से छाया ओ किन का, और ये भी एक गाना सुनना चाहती हैं। इनके लिए मैं प्ले करने वाली हूँ धागों से बांधा, और उससे पहले दो लफ्जों की है दिल की कहानी। इस गाने की फरमाइश जिन्होंने की है, बस उनका नाम आपको बताऊंगी, ये है उल्हासनगर से कल्पना राजू वारे इन्होंने, और लिखती हैं कि मेरे पति का पसंदीदा गाना है ये, तो प्लीज़ प्ले कीजिएगा। तो बिल्कुल हम आपके लिए प्ले करेंगे। तो दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, धागों से बांधा, और दीपा पालकर इनका तेरे हवाले, ये गाने आपके लिए अब प्ले होंगे। तो बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: अभी आप सुनेंगे समाचार न्यूज स्टूडियो से और आप सुनेंगे एफएम अपडेट्स 20वें एडिशन एशियन गेम्स की।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: नमस्कार, एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया के अपडेट्स के साथ मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और मेरे साथ हैं साक्षी मंडवाल। शुरुआत करते हैं हॉकी से, क्योंकि ये मुकाबला पुरुष वर्ग में अभी सेमीफाइनल का चल रहा है। भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं और जो अभी के हालात हैं, जो स्थिति है, उसमें भारतीय टीम 2-0 से आगे चल रही है और दोनों गोल भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए हैं पेनल्टी कॉर्नर पर। 5वें और 13वें मिनट में उन्होंने ये गोल किए। हम आपको बताएं कि यहां जीतने वाली टीम न सिर्फ फाइनल में पहुंचेगी बल्कि स्वर्ण पदक जीतकर लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी करेगी। और हम आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि भारत ने पूल ए में अपने सभी 5 मैच जीते हैं। टीम ने इन मुकाबलों में 49 गोल किए और सिर्फ 4 गोल उसके खिलाफ हुए। भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह 9 गोल के साथ टॉप स्कोरर हैं। कप्तान हरमनप्रीत सिंह आज के 2 गोल के साथ उनसे आगे जरूर निकल जाएंगे। 8 गोल अभिषेक ने भी किए हैं। भारत की टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय है। महिला वर्ग में भारतीय टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है जहां उसका मैच चीन से होना है। इस मैच की विजेता टीम को भी ओलंपिक में जगह मिलेगी।
3: जी, एंड अ क्विक अपडेट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नाउ द बिग न्यूज दैट द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम डिलीवर्ड टुडे वाज टू डिफीट श्रीलंका इन द इंपॉर्टेंट सेमीफाइनल क्लैश व्हिच हैज नाउ पुट इंडिया इन अ वेरी कमांडिंग एंड अ गुड पोजीशन ऑफ कमिंग अप फेस टू फेस अगेंस्ट पाकिस्तान इन द फाइनल्स ऑफ द एशियन कप एशियन गेम्स 2026 that is all scheduled to happen this Saturday. Well, just to give you a quick update on that, again, India delivered a phenomenal performance in the Asian Games against Sri Lanka, setting a challenging target of 170 runs. Sri Lanka struggled dramatically, getting bowled out for a mere 45 runs thanks to exceptional bowling by Jasprit Bumrah and Akshar Patel. Ishan Kishan's impressive innings of 80 not out underpinned the team's success. India are now geared up to come face to face against Pakistan for the coveted gold medal match, all set to happen this Saturday.
2: सेपक टेकरा में मेंस क्वाड्रेंट इवेंट में मेडल पक्का हो गया है। भारत ने आखिरी ग्रुप मैच में म्यांमार को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम इंडिया ने ग्रुप के 3 मैच जीते और अजेय रहते हुए ग्रुप में टॉप किया।
3: जी, और स्क्वाश में आपको बता दें कि इंडियन मेंस स्क्वाश टीम आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर अ क्रूशियल सेमीफाइनल अगेंस्ट मलेशिया। अभय सिंह विल लीड इंडियाज चैलेंज इन द ओपनिंग मैच अगेंस्ट ईएनयू। द मलेशियन हैड बीटन अभय सिंह अर्लियर 3-0 इन द मेंस इंडिविजुअल फाइनल अ कपल ऑफ डेज अगो। अभय के पास अब पूरा मौका है कि इस बार वो शुरुआत जीत के साथ करें अगेंस्ट हिज मलेशियन अपोनेंट, बिकॉज विद दिस मैच एंड ऑल्सो इन द ओवरऑल सिनेरियो इंडिया स्टैंड अ चांस टू डिफीट मलेशिया इन द सेमीफाइनल्स इन स्क्वाश टुडे एंड देयर बाय आल्सो सिक्योर अ मेडल।
2: और उधर तीरंदाजी में आज भारत ने 4th मेडल जीता। कल के 3 गोल्ड के बाद आज गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के कंपाउंड इंडिविजुअल के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में उन्होंने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 के अंतर से हराया। यह एशियन गेम्स में 20 वर्षीय मणि का दूसरा मेडल है।
3: Right, and now let's also talk about how the day so far has been for India overall also in terms of the way. So taekwondo mein aapko bata de that India ka campaign in the women's individual Pumse event in taekwondo ended today as Rupa Bayer bowed out of the semi-final. She finished with 7.610 points. That was not enough to finish amongst the 8 stars who qualified for the final.
2: Shooting mein men's 25 meter rapid fire pistol final mein Bharat ke Anish Bhanwala 7th sthan par rahe. Iske sath hi Asian Games mein Bharat ka शूटिंग अभियान खत्म हो गया है। अनीश ने एक सीरीज में 5 में से 4 हिट किए। उनके कुल 15 शॉट में 11 हिट रहे। इस स्कोर के साथ वे उस समय तीसरे स्थान के लिए बराबरी पर थे। हालांकि टाई होने पर क्वालिफिकेशन का स्कोर देखा गया। क्वालिफिकेशन में अनीश का स्कोर कम होने के कारण वे टाई ब्रेकर में पीछे रह गए और 7वें स्थान पर रहे। इसके साथ 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 15 पदक जीतकर भारत का शूटिंग अभियान खत्म हो गया। भारत ने पिछले एशियन गेम्स के मुकाबले 4 स्वर्ण समेत 7 कम पदक जीते।
3: जी, कयाक में आपको बता दें कि इंडिया शिखा चौहान फिनिश 7th इन द वुमेन्स कयाक सिंगल फाइनल आफ्टर क्लॉकिंग 193.31 सेकंड्स। शिखा वाज 7th अमंग द 8 फाइनलिस्ट इन द कनू स्लालोम इवेंट।
2: और कुश्ती से खबर यह है कि पुरुषों की ग्रीको रोमन शैली के 97 किलो वर्ग के फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए नितेश सिवाच का सामना जापान के नागा जातो युकी से होगा। इससे पहले नितेश ने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज कर एशियन गेम्स में भारत के लिए कुश्ती में एक पदक पक्का कर लिया।
3: राइट, एंड विद दैट वी कैन आल्सो टेल यू दैट द वे द इंडियन स्टैंड राइट नाउ, वी आर स्टैंडिंग ऑन द 8th पोजीशन इन द मेडल टेबल एंड वी आर होपिंग दैट फ्रॉम हियर ऑन द इंडियाज पोजीशन ऑन द मेडल टेबल गोज on to increase, but that will only be decided in the coming days and for the time to come. He is hoping that India is able to better that medal tally. So far we are sitting with a total of 61 medals, which includes 10 gold, 21 silver, 30 bronze, and that leaves India on the 8th position in the medal table. For now, this is me Sakshi Mandwal and Dharmendra saying goodbye to all our listeners. Lekin aap kahin mat jaiyega, dopahar ke 3:30 baje mein ek baar fir se aapse karenge mulaqat with all the live updates of the ongoing Asian Games 2026. Thank you so much for tuning in. Goodbye.
1: Asian Games 2026, Aichi Nagoya. Abhi.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो। अभी आप सुन रहे थे 2026 एशियाई खेलों के 20वें संस्करण के एफएम अपडेट्स। हिट एंड हॉट जारी है 107.1 एफएम रेनबो पर, और आज हमें कुछ मिनटों का बोनस मिला है, यानी कि एक और गाना प्ले हो सकता है, और ये वाकई खुशी की बात है। तो मुझे पता है आपके दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई होगी कि भाई हमारे गाने का नंबर लग जाए शायद। तो भाई आप सभी के प्यार के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इतना धैर्य के साथ इंतज़ार करते हमारे जवाब का, हमारे कॉल उठाने का, वाकई ये काबिले तारीफ है, और मेरा आप सभी को नमन है, धन्यवाद एक बार फिर। और मुझे यहाँ पर जो है मैसेज और कॉल आया विजेंद्र घाटोल जी का, प्रमोद चिंचोलकर जी और प्रकाश शिंदे जी के भी मैसेजेस है, और दीपा पालकर जी भी अपने गाने के इंतज़ार में होंगी, तो बिल्कुल उनका गाना सबसे पहले मैं अब प्ले करने वाली हूँ। और प्रकाश शिंदे जी हमें लिखते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आपके लफ्जों ने सिखाया हमें जिंदगी का सलीका, मजरूह नाम से ही अदब का हर पन्ना निखरता गया। चुरा लिया है जिसने दिल को अपनी जादूगरी से, वो शख्स आज भी महफिलों की धड़कन बना हुआ है। ओ मेरे दिल के चैन कहकर जिसने बेचैनियों को सुकून दिया, उस शायर का हर लफ्ज फिजाओं में महक रहा है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल कहकर सच का आईना दिखाया, तो कभी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कहकर हौसला बढ़ाया। मोहब्बत, फलसफा और जिंदगी का वो हसीन संगम थे जिन्होंने गीतों को सादगी में भी अनमोल बनाया। गीतों के इस बेताज बादशाह को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। कितने प्यारे लव्स और इतने अनमोल विचार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, वाकई आपने समा बांध दिया अपने शब्दों से। और यहाँ पर इन्होंने ये भी भेजा है कि 80s के दशक में किसी बोकाड़िया साहब की फिल्म आई थी तेरी मेहरबानियाँ, तो ये जो है फिल्म 41 साल पहले रिलीज हुई, और ये सारी बातें और भी बहुत सारी प्यारी बातें इन्होंने लिखी हैं। लिखा कि लासल गांव की बेटी के नाम

कुछ चंद लाइनें। अब ये मैं फिलहाल अब नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन ये बहुत खूबसूरत आपने लिखा है प्रकाश जी, इतना अच्छा आप लिख भेजते हैं, धन्यवाद। इन्होंने लिखा है कि लासलगांव की बेटी कल्याणी शिंदे ने अपनी सूझबूझ और आधुनिक तकनीक से प्याज उत्पादक किसानों की एक बहुत बड़ी चिंता दूर की है, उनके लिए नमन। धन्यवाद प्रकाश जी, और आपका भेजा हुआ गाना भी मैं प्ले करूँगी जो है क्या जानू साजन, ये मैं प्ले करने वाली हूँ। और हमें मैसेज आया है प्रमोद चिंचोलकर, इनका भी और इनकी फरमाइश भी मजरू सुल्तानपुरी जी का एक गाना है, और साथ ही साथ लिखा है कि एसडी बर्मन जी की पुण्यतिथि पर ये जो है ओरे माझी गाना सुनना चाहते हैं, तो ये गाना उनके लिए प्ले होगा। और दीपा पालकर, इनके लिए तेरे हवाले, ये अभी प्ले कर रही हूँ। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

एक छोटी सी रिश्वत क्या सच में इतनी छोटी होती है? नहीं, रिश्वत सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि ईमानदारी और व्यवस्था पर चोट है। याद रखिए, न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो चुप मत रहिए। संबंधित सतर्कता या भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी को इसकी सूचना दीजिए। सतर्क रहें, ईमानदार रहें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और यहाँ पर हिट एंड हॉट चल रहा है। आपकी फरमाइशें प्ले हो रही हैं। तो भाई अभी मैंने जो गाने प्ले किए वो थे पहले जिनके मैसेजेस आए हैं उनकी फरमाइशें, और मैं अब प्ले करने वाली हूँ डी कैस्ट्रो जॉन इनकी फरमाइश, क्योंकि हमेशा इनका मैसेज आता है। लेकिन क्या होता है कि इतने गाने हम प्ले नहीं कर पाते क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा और समय है, तो इसलिए मैं प्ले कर पा रही हूँ। तो डी कैस्ट्रो जॉन जो है, इनका पूरा परिवार जो है, रोजी, पर्ल, विलिस, डी कैस्ट्रो, ये सभी हमें सुन रहे हैं और ये हैं बने हुए जनकपुरी सहारनपुर से। ये सुनना चाहते हैं धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, और इसके बाद मैं एक और गाना प्ले करने वाली हूँ जो है आकाश के हम होश में अब आने न पाए, और बस वही देखना बाकी है कि ये किनकी फरमाइश है क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। साथ ही साथ मैं बाकी हमारे जो श्रोता हैं इनके नाम भी लेना चाहती हूँ जिन्होंने मैसेज किया। विनोद मकवाना जी दहीसर से हमें लिखते हैं कि 80s से पहले गानों में मेलोडी थी, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन 80s में भी बहुत बेहतर गाने आए, जैसे कि मैंने जो कुछ प्ले किए थे वो वाले, और प्लस इन्होंने लिखा है राम तेरी गंगा मैली, मिस्टर इंडिया, कयामत से कयामत तक, मैंने प्यार किया। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है विनोद जी। मुझे सिर्फ ये लगता है कि 80s का है ना डिस्को के अलावा सिग्नेचर स्टाइल शायद कोई रहा नहीं, इसलिए वो तुरंत याद नहीं आता। अब तो भाई हम सभी इतने जानकार हैं इसलिए ठीक है, कुछ लोगों को याद आ जाता है, लेकिन अदरवाइज वो इसलिए याद नहीं आता क्योंकि मुझे लगता है डिस्को के अलावा सिग्नेचर कोई गाना उस समय का बन नहीं पाया, यानी एक स्टाइल कहिए या ऐसी चीजें। तो ये बात है। और बाकी हमें मैसेज आए हैं मिंटू थॉमस और इनके परिवार का, बाबा दादर से करते हैं हमें मैसेज, हितेंद्र दास असम से, गगनदीप जी जो हमें मैसेज करे, अजय साखरे जी इंदौर से, दिग्दर्शन और कविता

मेरठ से शुभलक्ष्मी मस्तकर जी भी हमें मैसेज करती हैं और मैं देख रही हूँ। और बाकी अमित भगत है दादर से, इन्होंने हमें, दादर नहीं, ये मालेगांव से हमें मैसेज करते हैं। और पंकज मोहड़ जी का भी मैसेज था, और बहुत प्यारे मैसेजेस इन्होंने हमें भेजे हैं। और मेरी सारी बातें जो है बहुत अच्छी तरह से याद करके इन्होंने यहाँ पर लिखी हैं। और संगीतकार सचिन देव बर्मन जी को और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी की जयंती पर जो है विनम्र आदरांजलि दे रहे हैं। हमें जो है और भी लोगों के मैसेजेस आए हैं, टीडी मल्होत्रा जी और उनके परिवार का, हीरामणि वर्मा जी इनका परिवार, हरजिंदर छिंदा जी जो है, गुरमीत सिंह, मीता जी, ये सभी हमें मैसेज करते हैं। और भी श्रोता है हमारे बहुत सारे, जसबीर कौर हैं, ये सभी मैसेज करते हैं। रविंद्र कोड़ापे हैं, इनका परिवार भी जुड़ा हुआ है, जगदीश सिंह जी भी बने हुए हैं। तो बहुत सारे श्रोता है, नाम लेते लेते समय खत्म हो जाएगा। अभिजीत गवाणकर जी भी बने हुए हैं, मीना जी भी बनी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यशवंत आड़मुटे जी, मुकेश कश्यप जी और अंजू जी अंधेरी इससे, गोप परिवार झारखंड से। तो आप सभी से यही कहूंगी कि बस यूं ही अपना प्यार देते रहे, बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: On the Southern Bank, the Bougainville Bridge has brought radical transformations to the socio-economic, industrial, public health and educational sphere of Upper Assam. Dibrugarh is a major city in Upper Assam and serves as the educational and medical hub for the region, including the neighboring state of Arunachal Pradesh. The 4.94-kilometer long double-decker rail-cum road bridge is recognized as the longest of its kind in India. Although its foundation was laid in 1997, constructions largely stagnated for years. Under the NDA government, work progressed rapidly, leading to the successful completion of the much-awaited project. While inaugurating the bridge in 2018, Mr. Modi termed it as a lifeline for the people of the region.
1: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
0: Today, people from the northern bank of the region can reach Dibrugarh for medical emergencies, education and other needs in the matter of hours. Previously, a to-and-fro journey would take up to 2 days. With Harendranath Sharma from Dhemaji, Rakesh Tole, Akashvani News, Guwahati.
2: An important meeting is being held in New Delhi today under the chairmanship of Union Home Minister Amit Shah to resolve the long-pending Mahanadi water dispute between Chhattisgarh and Odisha. More from our correspondent.
3: The dispute over sharing of Mahanadi waters between Chhattisgarh and Odisha has remained unresolved for several years. Odisha had requested the central government in November 2016 to set up a tribunal to resolve the dispute. After talks failed to resolve the issue, the Mahanadi Water Disputes Tribunal was constituted in March 2018. Odisha says that water projects being built in the upper reaches of the Mahanadi in Chhattisgarh affect the flow of water to Odisha during the non-monsoon season. Chhattisgarh, on the other hand, has maintained that it needs to use its share of water for irrigation, industrial and domestic needs. Both states have given a written assurance to the Central Water Commission that any decision taken by the commission in the larger interest of both states will be acceptable to them. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
2: At least 9 Afghan civilians, including women and children, were killed and 11 others injured in Pakistani airstrikes on civilian homes in Afghanistan's Kunar and Helmand provinces. According to Taliban spokesperson Zabiullah Mujahid, the strikes also destroyed 3 residences in Sultan district of Kunar and Garmsir district of Helmand. Condemning the latest strikes as an act of aggression, Mujahid accused Pakistan of using attacks on Afghanistan to divert attention from domestic political and economic problems. At the Asian Games 2026, today India opened its sailing medal account as Manu Francis and Prince Kurisinkal Noble secured silver in the men's skiff competition today, finishing behind China after 9 races. Indian compound archer Ganesh Maniratnam Tirumuru produced a commanding performance to win the men's individual bronze medal. Ganesh, who was a part of the gold-winning men's team yesterday, defeated Vietnam's Khong Duc Thanh in the bronze medal playoff after bowling out of individual gold contention with a semi-final loss. In squash, India settled for a bronze medal after losing 1-2 to Hong Kong in the women's team semi-final. India were assured of a medal in the Asian Games Sepak Takraw men's quadrant competition after the team entered the semi-finals with a 2-1 win over Myanmar. India's overall tally has reached 63, including 10 gold, 22 silver and 31 bronze. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's 21st century work culture rooted in pro-people, proactive and good governance addresses UPSC centenary celebrations in New Delhi. Government cuts sugar stock holding period of dealers to 15 days to check hoarding and other malpractices. Defence Minister Rajnath Singh emphasizes integrated financial systems for defence management and resource utilization. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal calls for food security and cooperation at G20 Trade Ministers meeting, reviews India-EU FTA progress, and in Asian Games 2026, India bags first sailing silver medal, taking overall tally to 63, including 10 gold. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
5: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां सरकारी तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
5: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवभव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
6: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरफ फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
4: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
3: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
4: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इजराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
5: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
4: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ 1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं।

0: जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
1: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में एनडीए सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
2: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाई और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
1: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसे जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्केफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों की चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ दोस्तों यहाँ पर मौजूद है धर्मेंद्र। हम लेकर आ गए हैं दोपहर के 3:30 बजे द अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 एंड द बेस्ट न्यूज ऑफ द डे सो फार कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ हॉकी, जहाँ भारत ने पाकिस्तान को 4

0: चीन से हरा कर हॉकी के सेमीफाइनल से आगे बढ़कर अब दे हैव बुक देयर प्लेस इन द गोल्ड मेडल मैच यानी फाइनल्स में भारत ने अपनी जगह बना ली। आपको बता दें डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया टुक ऑन आर्च राइवल्स पाकिस्तान इन द मेंस हॉकी सेमीफाइनल दैट हैपेंड इन द आफ्टरनून टुडे फॉर अ प्लेस इन द फाइनल्स एट स्टेक। इंडिया एंटर्ड द कॉन्टेस्ट अनबीटन आफ्टर विनिंग ऑल फाइव पूल ए मैचेस स्कोरिंग 49 गोल्स एंड कंसीडिंग जस्ट फोर। दिलप्रीत सिंह लेड इंडिया स्कोरिंग चार्ट्स विद 9 goals while Captain Harmanpreet Singh and Abhishek had also contributed 8 each so far till that game. India doubled their lead against Pakistan in the men's hockey semi-final. A penalty corner was awarded after Manpreet Singh's run down the left ended with a foul. Harmanpreet Singh made no mistake from the set-piece, firing a powerful low-drag flick through the post defender and rusher to make it 2-0, thereby taking a 2-goal lead over Pakistan. And then India were able to further solidify that lead by making it 3-1, with Pakistan also making an entry in between, scoring one goal for themselves. Later of which we found that Pakistan was able to tie the scoreline to 3-all, but with just 50 seconds left, Abhishek found the decisive goal after his effort took a deflection off a Pakistan stick. Pakistan had one last chance in the closing seconds, but a missed trap ended their hopes as the hooter sounded and India was able to solidify their position into the gold medal match. Dharmendra.
1: बिल्कुल, और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि कहीं आज उलट फेर ना हो जाए। स्कोर 3-3 की बराबरी पर था, लेकिन अंतिम समय में भारत की तरफ से जो गोल आया उसने उस सिलसिले को बरकरार रखा जो 2014 से लगातार चलता चला आ रहा है। एशियन गेम्स में हम कभी भी 2014 के बाद से नहीं हारे हैं पाकिस्तान से। और हम आपको यह भी बताएं कि 2016 में हमारी टीम अंतिम बार पाकिस्तान से हारी थी साउथ एशियन गेम्स में गुवाहाटी में। उसके बाद से जीत का सिलसिला जारी है और आज भी एक नजदीकी मुकाबले में हमने जीत हासिल की है। अब गोल्ड मेडल की उम्मीद है।
0: राइट, एंड आई थिंक धर्मेंद्र आपके पास कुछ अपडेट्स हमारे स्क्वाश की दुनिया से भी आज देने के लिए होंगे।
1: बिल्कुल, स्क्वाश में समय भारत और मलेशिया का पुरुष सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। अभी दोनों टीमें एक एक की बराबरी पर हैं। अभय सिंह एन ने जो है शुरुआत की थी एनजी इयान योव के खिलाफ और वो पहला मैच 3-0 से हार गए। स्कोर 8-11 रहा अभय सिंह ने जिस तरह से ये मुकाबला गंवाया। फिर वीर चोटरानी ने भारतीय टीम को वापसी कराई जब संजय जीवा के खिलाफ उन्होंने मैच जीता। चोटरानी ने मैच 3-0 से जीता। स्कोर 11-4 11-8 11-5 रहा और इस समय वी सेंथिल कुमार का मैच ए चंद्रन के साथ चल रहा है। मुकाबला कांटे का है, दोनों ने एक एक गेम जीता है और इस समय तीसरा गेम चल रहा है जिसमें स्कोर सेंथिल कुमार के पक्ष में 6-5 है।
0: राइट, आपको बता दें सेपक तकरो की दुनिया से भी कि इंडिया हैव सिक्योर्ड अ मेडल इन द मेंस क्वाड्रेंट सेपक तकरो आफ्टर बीटिंग म्यांमार 2-1 इन द फाइनल ग्रुप मैच। द विक्ट्री सेंड्स इंडिया इनटू द सेमीफाइनल्स एंड कीप्स देयर अनबीटन रन इंटैक्ट अक्रॉस 3 ग्रुप मैचेस। इंडिया फिनिश टॉप ऑफ द ग्रुप एंड आर डेफिनेटली अश्योर्ड ऑफ अ प्लेस ऑन द पोडियम।
1: और कुश्ती में इतिहास लिखा जाना है अब से कुछ देर बाद, क्योंकि पुरुषों की ग्रीको रोमन शैली के 97 किलो वर्ग के फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए नितेश सिवाच का सामना जापान के नकाजातो यूपी से होगा। इससे पहले नितेश ने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज कर इस एशियन गेम्स में भारत के लिए कुश्ती का एक पदक पक्का कर लिया। नितेश ने हांगझोउ एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मंगोलिया के गंगखुयाग को सेमीफाइनल में 9-0 से हराया। नितेश ने इसी साल एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। हम आपको बता दें कि 64 साल बाद भारत का कोई ग्रीको रोमन पहलवान फाइनल में पहुंचा है।
0: राइट, एंड आल्सो फॉर ऑल द लवर्स ऑफ क्रिकेट आउट देयर, इंडिया वाज एबल टू डिफीट टुडे श्रीलंका बाय अ ह्यूज मार्जिन, पोस्टिंग 169 ऑन बोर्ड विद श्रीलंका रिक्वायरिंग 170 टू विन, बट श्रीलंका कंप्लीटली बंडल्ड आउट फॉर जस्ट 45 रन्स एंड एज अ रिजल्ट इंडिया पाकिस्तान नाउ आर सेट टू मीट इन द फाइनल्स व्हिच विल हैपन on Saturday in the ongoing Asian Games 2026. That is all that we had in this live update at 3:30 PM. We shall be tuning you right back in at 4:30 PM. Filhal ke liye, mujhe Sakshi Mandwal aur Dharmendra ko dijiye ijazat. Goodbye and thank you.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.

नमस्कार, पेशा एफएम रेनबो पर तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ किया। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर

सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। रक्षा मंत्री ने सैन्य नर्सिंग सेवा के 101वें स्थापना दिवस पर उन सभी नर्सिंग कर्मियों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही वह राजपत्र अधिसूचना फर्जी है, जिसमें दावा किया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सभी शनिवार सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं। विभिन्न मंत्रालय आज नई दिल्ली में कर्तव्य भवन के पास स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के तहत एक दिन एक घंटा एक साथ श्रमदान गतिविधि का आयोजन कर रहा है। भारत जापान एशियाई खेलों में पुरुष क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराया। जापान एशियाई खेलों में भारत पाकिस्तान को हराकर हॉकी के फाइनल में पहुंचा और भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता। मनु फ्रांसिस और प्रिंस किरोसिंकल नोबेल के ने पुरुषों के स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में कांस्य पदक मिला। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ और आपके लिए जल्द हाजिर होगा हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नंदन वंदन अभिनंदन कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में आप सभी का स्वागत है।
0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस अंक में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज आप सभी के समक्ष ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आपके लिए आपके शहर में आयोजित किया जा रहा है सेकेंड एडिशन ऑफ शेखो एफ इंडियन एयरफोर्स मैराथन, जिसको सिम के नाम से जाना जाता है, सिम 2026। और इस मैराथन के बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो हैं सेक्रेटरी एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। आप हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सेखो इंडिया एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स मैराथन, और आप ऑनररी सेक्रेटरी जनरल सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी भी हैं। तो हम तहे दिल से सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी का। सतेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गीतिका जी।
0: और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, अपने जो श्रोता हैं उन तक पहुँचाने वाले हैं कि कैसे भले ही इस साल नहीं अगले साल से ही वो इस

0: कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाल ही में आपने सुब्रतो कप इसका आयोजन किया, 65th एडिशन था, 18 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक सुब्रतो कप चला। जिस तरह से सुब्रतो कप आयोजित किया जा रहा है और आकाशवाणी के माध्यम से भी हम नित्य प्रति अपने श्रोताओं को बताते हैं कि किस तरह से टीम्स खेल रही हैं, कौन सी टीम्स हैं जो जीत रही हैं और किस तरह से जोश का माहौल वहाँ बना होता है मैदानों में, यहाँ हम आकाशवाणी के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुँचाते हैं। आप ये हमें बताएं कि इस साल का जो सुब्रतो कप आपने आयोजित किया, यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो हमेशा कार्यरत रहता है, स्पोर्ट्स को जन जन तक पहुँचाता है, किस तरह से रहा ये 65th एडिशन सुब्रतो कप का?
1: 65th एडिशन बहुत ही रोमांचक था। जैसा आपने कहा 18 अगस्त को शुरू हुआ। हम ये फुटबॉल टूर्नामेंट तीन कैटेगरी में कराते हैं, अंडर 17 गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज एंड अंडर 15 बॉयज। तो अंडर 17 गर्ल्स 18 को अगस्त को शुरू हुआ था दिल्ली में और उसका 27 अगस्त को समापन हुआ। झारखंड की टीम जो एक रिमोट लोकेशन से आती है गुमला, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और वो जीती। जो अंडर 15 बॉयज था वो 1 से लेकर 9 सितंबर बेंगलुरु में हुआ, जब वेस्ट बंगाल की टीम जीती। और जो ग्रैंड फिनाले था अंडर 17 बॉयज, वो 15 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक हुआ। ग्रैंड फिनाले हमारा अंबेडकर स्टेडियम में होता 25 सितंबर को और CISC की टीम जीती। मैं सब श्रोतागणों को बताना चाहूँगा कि ये लगता एक महीने का हमारा टूर्नामेंट है, बट इसकी जो तैयारी है वो पिछले 6 से 7 महीने पहले शुरू हो जाती है। इसमें हर स्टेट की टीम पहले तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल के फाइनली स्टेट की एक टीम आती है, स्कूल की टीम, जो यहाँ परफॉर्म करती है। तो इस पूरे, अगर आप देखें, ये स्प्रेड जो है इस टूर्नामेंट का वो एक महीने का नहीं, कम से कम 6 से 7 महीने का है। तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और हम एज ऑर्गेनाइजर तो हमने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत रोमांचक था।
0: जी, कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ जब आप बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज होता है, ऊर्जाओं का एक्सचेंज होता है। और हमारे युवा भी, बच्चे भी चाहते हैं कल चलकर फोर्सेज ज्वाइन करेंगे, इंडियन एयरफोर्स में हम पायलट बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे। और इसी मुहिम के साथ इंडियन एयरफोर्स हमेशा कार्यरत रहता है, जिसकी हमने कहा कि स्पोर्ट्स की दुनिया में तो बच्चे नाम कमा रहे हैं और हमारे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहीं ना कहीं हम फोर्सेस से ही सीखते हैं। अब बात करते हैं कि सीखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप कृपया करके हमें फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सखों के बारे में जरूर बताएं। निश्चित रूप से उनका इस मैराथन से ताल्लुक जरूर है, आप कृपया करके हमें बताएं कि उनका जो योगदान रहा भारतीय वायुसेना, अगर उसकी बात की जाए, अतुलनीय रहा। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया और आपके मुख से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपकी बात जन जन तक पहुंचे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो एक मिसाल है इंडियन एयरफोर्स के लिए, नहीं पूरे इंडिया के यूथ के लिए। वो बहुत ही यंग थे, 25-26 साल के थे जब उन्हें 1971 की वॉर में हमारे दुश्मन के जहाज़ों को बड़ी बहादुरी से गिराया, उनसे लड़ाई करी, मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र मिला। वो अकेले ऐसे ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स के जिनको परमवीर चक्र से वो सम्मानित हैं। तो यही एक उनको यूनिक चीज़ बनाती है, जिसके इनके नाम से और इनके जो इनकी पदवी है उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी याद में हमने ये सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन शुरू करी।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगर हम इस सेकेंड एडिशन की बात करें, और सेकेंड एडिशन अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी उम्मीद, और कहते हैं कि जब हम अंतिम छोर में होते हैं ना तो हम अगले की तैयारी करना शुरू करते हैं। अगर हम रेट्रोस्पेक्शन करें पहले एडिशन का, तो पहला एडिशन उसकी क्या खास बात थी और इस एडिशन में क्या कुछ खास होने वाला है, आपके माध्यम से जानना चाहते हैं।
1: पहला एडिशन हमारा 2 नवंबर 2025 को हुआ था, दिल्ली मेन सेंटर था रेस के लिए, पर हमारे बाकी जो भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशंस हैं उनमें 45 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री, ये मैराथन ऑर्गेनाइज कराई गई थी सेम डेट पे, सेम टाइम पे। और तो रनर्स की जो टोटल अगर आप नंबर्स बोलें, दिल्ली में वो 12,000 थे और ऑल ओवर इंडिया को अगर हम पूरा पूरा समअप करें तो अराउंड 45,000 पीपल रैन ऑन दैट डे।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। और उसी उम्मीद को आप आगे यानी कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना उसे कहते हैं ना कि हम मिसाल कायम करते हैं, और फिर उस जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं फिर सोचते हैं इससे बेहतरीन आगे और किया जाएगा। लाइफ का यही दस्तूर है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। अगर अब सेकेंड एडिशन की बात की जाए, सेकेंड एडिशन ऑफ शेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन जिसे हम सिम के नाम से भी जानते हैं, इस एडिशन में क्या कुछ खास है? अपने आप में परिपूर्ण है, मैराथन की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन एक सवाल और मन में मेरे जहन में आता है सेकंड एडिशन के बारे में बात करने से पहले, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है जो ये मैराथन हर साल कराई जा रही है?
1: ये कंसेप्ट जो था हमारे प्रेजेंट चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, वो अपने आप में एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं, तो उनका विजन था कि शेखो साहब बहुत यंग थे जब उन्होंने शहादत दी, तो चाहते कि जो एयरफोर्स का यूथ है और इंडिया का यूथ है वो कोलैबोरेट करें, इसलिए एयरफोर्स मैराथन लेके आए जिसमें डिफेंस पर्सनल भी भागते हैं और सिविलियंस भी भागते हैं, तो एक उद्देश्य है कि फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ इसको मूव करना है। एयरफोर्स में तो यूनो के एक सिस्टम है जहाँ पे आपको फिटनेस पैरामाउंट है, पर हम चाहते हैं कि ये अमेलगमेट करें हम सिविलियंस के साथ भी, एंड इसको एक यूनिक प्लेटफॉर्म दे के इसको आगे बढ़ाएं।
0: जी, और कहीं ना कहीं एक सिविलियन लाइफ के साथ कहते हैं ना कम्युनिकेशन, संवाद, मुझे लगता है शायद इस मैराथन के माध्यम से आसानी से हो जाता होगा।
1: बहुत लोग जुड़ते हैं और जो जुड़ जाते हैं वो सिर्फ जुड़ के ही रहना चाहते हैं।
0: जी, बहुत बढ़िया। अब अगर जब सेकेंड एडिशन की हम बात कर रहे हैं सिम के, तो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किन किन राज्यों में हो रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी दें।
1: जैसे कि मैंने बताया सिम 4 अक्टूबर 2026 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली एडिशन होगा, और हमने कुछ मेजर सिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया जो हमने सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे डिफेंस पर्सनल भी और सिविलियंस भी भागे हैं। अगर आप नॉर्थ से स्टार्ट करें तो नॉर्थ में चंडीगढ़ मेजर सिटी है, ईस्ट में गुवाहाटी है, अगर आप वेस्ट साइड आएँ तो मुंबई और जोधपुर है, आप सेंट्रल साइड आएँ तो ग्वालियर है, और अगर डाउन साउथ इंडिया में जाएँ तो बेंगलुरु एंड तिरुवनंतपुरम है। ये हमारे मेजर लोकेशंस हैं जहाँ रन होगा, बट ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, और बड़े और छोटे एयरफोर्स स्टेशन में भी ये रन साइमल्टेनियसली कंडक्ट होगा, दिल्ली प्लस और अक्रॉस इंडिया जैसा हमने पिछली बार किया था।
0: बहुत खूब। 8 अक्टूबर हम सभी के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए, ना केवल वायु सेना के लिए, हमारे लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मैराथन उसका प्री सेलिब्रेशन है?
1: आप बिल्कुल कह सकते हैं, हमारा एयरफोर्स डे है जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इस बार हमारा 94th एयरफोर्स डे है, एंड एयरफोर्स डे वीक इज़ गोइंग ऑन, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन है।
0: बहुत खूब, आपने बोला 94th हम एयरफोर्स डे मनाने जा रहे हैं, तो इस मैराथन से हमारी क्या उम्मीदें हैं?
1: देखिए, पिछली बार जैसा मैंने पहले भी कहा कि पिछली बार हमारे 45,000 रनर थे, तो इस बार हमारे, हमें उम्मीद है कि नंबर डबल होगा, और हम जो 94th का फिगर है, 94th एयरफोर्स डे, हम उसके उस नंबर को पाना चाहेंगे।
0: जब हौसले बुलंद हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, और भारतीय वायुसेना इसी बात की मिसाल है, और इस मिसाल को कायम कर रही है सेकंड एडिशन ऑफ सेखो इंडिया एयरफोर्स मैराथन 2026, यानी कि सिम 2026 का आयोजन किया जा रहा है 4 अक्टूबर को। विंग्स ऑफ करेज, जी, जब हमारे ये जाबाज हवा में उड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय धरती से परचम लहराते हैं जीत का।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कामयाल, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो आपको जानकारी दे रहे हैं सेकंड एडिशन ऑफ सिखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026, जिसे आप सिम 2026 के नाम से भी पुकार सकते हैं। और जब जब आप पुकारेंगे तब तक भारतीय वायुसेना आपके साथ होगी और आपके लिए निरंतर अविरल बहती रहती है जैसे कि हवा, जैसे कि परिंदे, और भारतीय वायुसेना की ये मुहिम आपके लिए ही है बस। हम जानना चाहते हैं आपसे सतेंद्र जी कि बहुत से लोग सुनने के बाद आतुर हो रहे होंगे कि काश हम भी क्योंकि सिविलियंस के लिए ये भी मैराथन खुली हुई है, हम भी कैसे इसका हिस्सा बने। तो कैसे हिस्सा बन सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशंस अभी भी ओपन है, आप हमारा मार्गदर्शन करें।
1: ये जो मैराथन की रजिस्ट्रेशन थी वो हमारी वेबसाइट है sekhoifmarathon.in, आपको उस पे साइट पे जाके रजिस्टर करना होता है। वो हर साल ये साइट कांस्टेंट यही रहेगी, लास्ट ईयर भी यही थी, कंटिन्यू रहेगी। अगर इस बार एडिशन की बात की जाए सिम 2026 की, तो 1 जुलाई 2026 को रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी और 15 सितंबर को ये रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। तो हमें 10 दिन चाहिए होता है इस इवेंट को कराने के लिए, तो 15 सितंबर को हमने बंद करके अब वी आर फोकसिंग ऑन टू कंडक्ट द इवेंट, प्रिपरेशन ऑफ द इवेंट।
0: जी जी, तो कहते हैं कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह फर्स्ट एडिशन सफल रहा, हम कामना करते हैं कि सेकंड एडिशन जो हमारे उद्देश्य हैं वो पूर्ण हो। और कहते हैं कि जब हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है तो हमें इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिंदगी यानी कि भारतीय वायुसेना आपको फिर मौका देगी, थर्ड एडिशन में आप जरूर हिस्सा ले पाएंगे। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि आप साइट पर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अर्जित कर सकते हैं, तो अगले साल जब आप हिस्सा बनना चाहें तो आप साइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन कर अगले एडिशन का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जानकारी हमेशा काम आती है, आज नहीं तो कल ज़रूर। अब अगर बात की जाए वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंड एडिशन में, वो भी बहुत उत्सुक होंगे कि हम इस महाआयोजन का हिस्सा बन रहे हैं, क्या क्या हमारे लिए वहाँ फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, किस तरह से हम रुक करेंगे, तमाम बातें जहन में चलती हैं। उन लोगों के लिए क्या प्रावधान है?
1: हाँ, मैं आप जो करंट सिचुएशन है मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। आज हमारा एक्सपो स्टार्ट हो गया है मैराथन का, जो सुबह 11 बजे से लेकर 7 बजे तक होगा तेजस ग्राउंड रेस कोर्स में, और कल भी होगा 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो जिनकी बिप कलेक्शन और बाकी जो हमारे गुडी बैग्स हैं वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। रेस डे जो 4 अक्टूबर को है, उसमें एक तो इसमें यूनिक है, हमने दिल्ली मेट्रो से टाई अप किया हुआ है, तो सबको हर जो जितने भी रनर्स आ रहे हैं उनको हम एक फ्री टिकट दे रहे हैं दिल्ली मेट्रो की, वो येलो लाइन वॉय

0: लाइन और ब्लू लाइन, इन तीनों को उसकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंच सकते हैं जहां पे इवेंट है। 4:30 फर्स्ट फ्लैग ऑफ 5:30 है, तो 4:30 के आसपास आप वहां पहुंच जाएं। और एज़ फार एज फैसिलिटीज कंसर्न, हम जैसे आप एंटर करेंगे आपके लिए एसी वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, सेंटर आपके लिए सारे हाइड्रेशन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल है। एन रूट आपको हाइड्रेशन, एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी बार एंड अ प्रॉपर मेडिकल कवरेज थ्रू आउट द रूट एंड विद इन द एरिना ऑफ JLN विल बी अवेलेबल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स।
1: जी, एक्सपो में और कुछ क्या खास होने वाला है? क्योंकि जब हम एक्सपो जाते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि शायद हम भारतीय वायुसेना से और भी ज़्यादा रूबरू हो पाएंगे, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अर्जित करने के लिए हम उस गंतव्य तक ज़रूर पहुँचते हैं। तो वो लोग जो एक्सपो का हिस्सा बनेंगे वो निश्चित रूप से मैराथन के बारे में जानकारी तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या और कुछ खास है जिसको देखने के लिए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहाँ पहुँचें?
0: बिल्कुल, एक्सपो एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अगर लास्ट टाइम गए हमने एक ओपन अरेना में रखा था, पर इस बार हमने एक ह्यूज स्ट्रक्चर, जर्मन टेंट्स लगाए हैं, एयर कंडीशनड है वो। अगर मैं आपको फ्लो के थ्रू ले जाऊं, आप जैसे एंटर करते हैं तो एक वॉल लगी हुई है जहां पे सारे पार्टिसिपेंट जो इस बार पार्टिसिपेट करें, एक एक इंडिविजुअल का नाम वहां लिखा हुआ है, तो वहां चेक कर सकते हैं आई एम पार्ट ऑफ दैट इवेंट और नॉट। अंदर स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट स्टॉल्स हैं, हमारा एयरफोर्स का स्टॉल भी है, हमारी बैंड की परफॉर्मेंस लाइव है और क्राउड बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। मैं अभी 2 घंटे पहले की बात बताता हूँ, लोग इंडियन एयरफोर्स की ट्यून्स पे वहाँ डांस कर रहे थे, देवर एंजॉयिंग द फुल फ्लो। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस है, यू मस्ट गो। दूसरा, एक इंडियन एयरफोर्स फैसिलिटी दे रही है, तेजस ग्राउंड इज जस्ट नियर टू लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम बस की फैसिलिटी दे रहे हैं। जो लोग अपना मेट्रो से आ रहे हैं तो वो बस से हम कम्यूट कराएंगे, उनको ड्रॉप करेंगे मेट्रो स्टेशन से टू द वेन्यू एंड बैक, तो इस फैसले को जरूर अवेल करें।
1: जी, एक प्रश्न और यहाँ उठता है कि क्या ये एक्सपो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए ही खुला हुआ है या आम जनमानस जो सेकेंड एडिशन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं पर उनके मन में जिज्ञासा है कि चलो तेजस ग्राउंड चलते हैं और इस एक्सपो के माध्यम से ज़्यादा जानकारी अर्जित करते हैं, क्या वो लोग भी वहाँ पहुँच सकते हैं?
0: इन एयरफोर्स का दिल बहुत बड़ा है, हम ओपन अपने दोनों ओपन हैंड से सबको वेलकम करते हैं।
1: आसमान जितना बड़ा है,
0: आसमान स्पेस तक हम आउटरीच करते हैं, तो आए और इस एक्सपीरियंस का मजा लें।
1: वाह, क्या बात है। तो आपके लिए ये बहुत ही प्यारी सुखद जानकारी, भले ही आप सेको इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 इसका हिस्सा ना बन पाए हो, समय पर रजिस्ट्रेशन ना कर पाए हो, लेकिन जैसा कि विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना का दिल आसमान से भी कहीं ज्यादा बड़ा, कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट, जिसका कोई अंत नहीं, वो अंतहीन है, वो है भारतीय वायुसेना। तो दिल बहुत बड़ा है, आप जाएं और कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा जरूर बनेगी, जरूर उठेगी कि काश मैं भी भारतीय वायुसेना में होता, या काश मेरे बच्चे भी कल भारतीय वायुसेना में अपनी सर्विसेज दें। और ये आचार व्यवहार का एक सुखद माध्यम है, जिससे मोहब्बत की जाती है उससे मिलने ज़रूर जाना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। आप तेजस ग्राउंड इस एक्सपो को देखने के लिए ज़रूर पहुँचें। और आप सभी के लिए, सभी श्रोताओं के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए ये नगमा हमारी ओर से है।

कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के आज के संग में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी से साझा करना चाहेंगे दोबारा सेकंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 यानी कि सिम 2026 इसका आयोजन किया जा रहा है 4 अक्टूबर को।

0: और इसके संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो सेक्रेटरी हैं एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में। आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं सिखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन, और आप ऑनररी सेक्रेटरी जनरल हैं सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी के। तो आपका पुनः स्वागत करना चाहते हैं हम सतेंद्र साहब। अब बात ये उठती है कि हम ना कभी कभी बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कहीं जाने से पहले। वो सारे पार्टिसिपेंट्स जो इस मैराथन का हिस्सा बनने वाले हैं, एक दिन पहले ही ना मन में कहते हैं कि पेट में जो तितलियाँ हैं उड़ने लगती हैं,
1: बटरफ्लाइज
0: कि कल सुबह जल्दी उठना है, पहुँचना है, क्या होगा, कैसे होगा, उन तमाम लोगों के लिए क्या प्रावधान है?
1: अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी एक्सपो में अगर आप जाओ तो वहाँ पे हमने सारा लेआउट्स, टाइमिंग्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रहे हैं, पर नेवरदलेस उसके बाद भी हम एक ट्रिगर मैसेज थ्रू व्हाट्सएप एंड एन ईमेल सबको भेजेंगे बिफोर द इवेंट कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, क्या क्या एन रूट होने वाला है, पूरी जानकारी उसके अंदर होगी, तो वो अपनी बटरफ्लाइज सेटल कर सकते हैं एडवांस में।
0: क्या बात है, और अपनी बटरफ्लाइज को वहाँ वहीं उड़ाएं मैदान जंग कह रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम फोर्सेस का हिस्सा बनते हैं, फोर्सेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो वो सारी तितलियाँ उड़ने के लिए आतुर हो जाती हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब सवाल ये उठता है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो निश्चित रूप से 4 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे समय से पहले ही, लेकिन समय क्या है, किस वक्त रिपोर्ट करना है?
1: हाँ, पहला जो हमारा फ्लैग ऑफ है 21 किलोमीटर का, वो 5:30 बजे है, तो हमने जो रिपोर्टिंग टाइम नॉर्मली 1 घंटा पहले रहता, तो 4:30 उनको रिपोर्ट करना है, वो रिपोर्ट करेंगे और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर आएंगे, उसके बाद उनका जुम्बा सेशन होगा, वार्म अप होगा, और फिर 5:30 फ्लैग ऑफ होगा।
0: वाह क्या बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जिनके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर कुछ है या अपने वेरिफिकेशन के लिए, उनको क्या दस्तावेज दिखाने होंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे भी पहुंचे गंतव्य पर जो ये कहें कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन आप भारतीय वायुसेना के परिसर, उस वक्त भारतीय वायुसेना का परिसर है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, या वो अन्य गंतव्य जो अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है ये मैराथन, तो वहाँ पर सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए क्या फैसिलिटी है?
1: आज जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक्सपो चल रहा है, तो यहाँ बिब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें नाम और उनके डिटेल्स होते हैं, तो ये सब बिब सारे रनर्स को दी जाती है, और एक मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन है जो उनको उस दिन अपनी टी शर्ट के साथ पहन के दौड़ना है, तो जो उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो रीड करता है मूवमेंट्स के लिए, तो ये बिब जो पहन के आएंगे उनको ही जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होंगे अलाउ करेंगे, अदरवाइज बाकी लोग एंटर नहीं कर पाएंगे।
0: जी, तो आपके लिए प्रतिबंधित है अगर आपके पास, जैसा कि हमें सतेंद्र साहब ने कहा, विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर साहब ने, कि अगर आपके पास अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए बिब नहीं है तो आप अंदर एंट्री नहीं पा सकते हैं, लेकिन उम्मीद कायम रखिए अगले साल आपको फिर मौका मिलेगा। अगर आप इस मैराथन रेस की बात की जाए तो उसकी यूनिकनेस क्या है, क्या खास बात है?
1: ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक रेस, मैं इसलिए कहूँगा, मैराथन्स होती हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड होती हैं, पर ये मैराथन के साथ एक, इसको हम इवेंट काउंट करेंगे बिकॉज ये शोकेसिंग इंडियन एयरफोर्स की भी है। आज हम सिविलियन वर्ल्ड के साथ मिलके कदम से कदम बढ़ा रहे हैं, अगर हम उनको कुछ दे तो हम इंडियन एयरफोर्स की माइट भी उन्हें दिखाना चाहते हैं। तो नॉर्मली अगर आप कोई मैराथन देखो, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आउटर एरिया से हो जाती है, वहीं पर से शुरू होती है, वहीं पर ख़त्म हो जाती है, लोग अपना मेडल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, थोड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम होता है और अपने घर चले जाते हैं, बट ये एक टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जब लोग दौड़ के वापस आएंगे, अपना मेडल लेंगे, अपनी रिफ्रेशमेंट्स लेंगे, तो उन सबको हम अशर करेंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे आपको इंडियन एयरफोर्स का एक्चुअल रौद्र रूप देखने को मिलेगा।
0: क्या बात है?
1: इन टर्म्स ऑफ स्काई डाइविंग, हमारी एयर वॉरियर ड्रिल टीम है वो परफॉर्म करेगी, हमारी बैंड है वो परफॉर्म करेगी, एंड मैनी मदर मोर एक्टिविटीज। तो आप एक इवेंट है जो आपको मिस आउट नहीं करना है, आपको सिर्फ रेस नहीं, रेस के पोस्ट रेस के जितने इवेंट्स हैं वो भी जरूर देखने हैं।
0: मैं सोच रही हूँ कि मैंने कुछ मिस कर दिया है समय पर रजिस्ट्रेशन ना करवा कर।
1: जैसा आपने कहा कि हमेशा मौका मिलता है,
0: बिल्कुल, और भारतीय वायुसेना जैसा कि आपने कहा कि विशाल है और आसमां की तरह है, आसमां को छूने जैसी बात है, तो ये आपको मौके देती रहती है और निश्चित रूप से अगला एडिशन और भी सुखद होगा। लेकिन इस एडिशन की अगर बात की जाए और विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनखड़ जी ने

0: रखा है कि बहुत यूनिक है, इसका हिस्सा बनिए और फिर देखिए जो अनुभूति आप अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे, आप ताउम्र उसको दोहराएंगे और कहेंगे कि अगले एडिशन में भी हम हिस्सा ज़रूर बनेंगे इस मैराथन का। अब बात आती है, जैसे कि आपने स्वयं बताया कि अलग अलग स्टेशन पर एक साथ ही कार्यक्रम होने वाला है, ये इवेंट होने वाला है, तो क्या सच में बताइए एक साथ होने वाला है?
1: ये बिल्कुल, ये वो तो आप कहते हैं ना, एयरफोर्स प्रिसीजन पे बिलीव करती है, जो हमारा मिशन है वो प्रिसीजन है, तो हमारा मिशन यही है कि एक ही टाइम पे शुरू होना, एक ही टाइम पे ख़त्म होना, एक ही दिन करना, तो ये हमारा प्रिसीजन को हम सबको दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम इतना हमारा जबरदस्त प्रिसीजन है कि हम उसको आउटरीच कर सकते हैं, बेशक हम कोलोकेटेड ना हो, अक्रॉस इंडिया स्प्रेड हो, पर हम उसको अचीव कर सकते हैं।
0: ठीक उस तरह जिस तरह से हमारा एक कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स है जो ठीक 4 बजे अलग अलग केंद्रों पर सुनाई देता है, तो आपके और हमारे बीच में एक समानता तो यह हो गई कि हम प्रेसिशन यानी कि डिसिप्लिन समय को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और फोर्सेस की यही खास बात है और आकाशवाणी की भी यही खास बात है कि समय हमारे लिए सर्वोपरि है, सही समय पर बड़ी बड़ी जंग जीती जा सकती है।
1: जब भी हम आई थिंक एक मंच पर एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं,
0: वह क्या बात है, और हम चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से हम यूं ही एयरफोर्स भारतीय वायु सेना का परचम लहराते रहे, परचम आप लहरा रहे हैं लेकिन उस परचम को हम अपने हाथों में ले दुनिया तक पहुंचाएं। अब एक बार फिर से बात आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा और अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो है मैराथन के लिए लोग भागेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे मन से तन से और यही सोचेंगे कि हमें जीत हासिल करनी है। एक बार दोबारा से हमारे सभी सुनने वालों को ना कैटेगरीज के बारे में आप बताएं, और ये भी बताएं कि जब हम किसी प्रतिस्पर्धा में का हिस्सा बनते हैं तो जीत में हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, वो अवार्ड्स जो इस मैराथन के माध्यम से उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को मिलने वाले हैं उसके बारे में भी जिक्र करें।
1: हाफ मैराथन्स नॉर्मली 3 कैटेगरी में होती है, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। 21 किलोमीटर 10 किलोमीटर टाइम रन होता है, पता है कॉम्पिटिशन होता है, 5 किलोमीटर नॉर्मली फन रेस होता है, पर हमने ऐसा नहीं किया, हम चाहते हैं तीनों कैटेगरी में कॉम्पिटिशन हो, तो हमारे 21K, 10K और 5K तीनों कॉम्पिटिटिव हैं, और तीनों में जो भी ओपन कैटेगरी एंड डिफेंस कैटेगरी में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे सबको प्राइज़ मिलेगा, एंड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वहीं पर होगी JLN में, एंड एक अच्छा अमाउंट है, 25 लाख के आसपास हमने ईयरमार्क किया है फॉर द इवेंट, तो ऑल द बेस्ट फॉर द पार्टिसिपेंट।
0: डिफेंस पर्सनल और सिविलियंस के लिए अलग अलग अवार्ड कैटेगरीज हैं,
1: हर रेस में डिफेंस के लिए अलग है और सिविलियंस के लिए अलग है, जो जिन्होंने जैसे डिफेंस ने रजिस्टर किया तो वो उसमें कॉम्पीट करेंगे, और सिविलियंस का जो हुआ है उसमें कॉम्पीट करके दोनों को अलग अलग प्राइज मिलेंगे, कैटेगरीज दोनों के लिए अलग अलग है
0: जी, क्योंकि हमारे भारतीय वायुसेना के डिफेंस पर्सन्स जो हैं वो तो सक्षम हैं और किसी भी कहते हैं जंग पर लड़ना उनके लिए नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जहां हमने ये सोच लिया कि बस ये जीत हमारी है, वहाँ आधा काम खत्म, हमें हमेशा तैयार रहना है, हमेशा अपने आप को गियर अप करना है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं जानना चाहती हूँ, जब भी कोई पार्टिसिपेंट रजिस्टर करता है तो उस वक्त उसकी शारीरिक सक्षमता कितने मायने रखती है, क्या उसे कोई मेडिकल फिटनेस फॉर्म सबमिट करना होता है?
1: ये अगर आप फॉर्म देखें तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे मैराथन्स की, कि उसको ही और शी हैज़ टू टेल के ही इज़ मेडिकली फिट टू अंडरगो, उसको अपने सेल्फ डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, और हम उसको कंसिडर करते हैं अगर कोई इंसान सेल्फ डिक्लेयर कर रहा है तो वो फिजिकली फिट है
0: जी। सबसे पहले अपने शरीर को हम स्वयं जानते हैं, और जब हम ये मानते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं, तो हम यही कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं। अब यही सवाल मैं डिफेंस पर्सनल्स के संबंध में पूछना चाहूँगी, वो डिफेंस पर्सनल जो इस इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं उनका भी वेरिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस पर्सनल्स ऐसे भी होंगे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब भले ही सेवा में नहीं है, फोर्सेस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सेवाओं का हिस्सा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन किस माध्यम से होता है?
1: ये इसको स्मूथली हम ईज करने के लिए हमने एक्सपो में एक काउंटर्स बनाए हैं, वेरिफिकेशन काउंटर्स, जहाँ पे हमारे सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस वो आ सकते हैं, वो अपना आईडी कार्ड दिखा के वो अपने बिप कलेक्ट कर सकते हैं, तो प्रोसेस बहुत स्मूथ है, इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप जाएंगे वहाँ पे बहुत ईज है, डिफरेंट काउंटर्स हैं, आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं।
0: वाह क्या बात है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो

तबीयत से उछालो यारो, लेकिन हम यही कहेंगे कि यहाँ आपको आसमान छूने का मौका दिया जा रहा है, आप बिल्कुल बिना किसी भय के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि भारतीय वायुसेना आपके साथ है, आपके लिए कार्यरत है और आपको ये सुनहरा मौका दे रही है कि आप हिस्सा बन सके सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026।

0: व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो आज मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी एयरफोर्स स्टेशन में बैठी हुई हूँ, और भले ही हमारे साथ यहाँ पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी यूनिफॉर्म में है, पर ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इस नीली पोशाक ने ना अपनी रंगत स्टूडियो के अंदर बिखेरी हुई है और मैं इस रंग में बहती चली जा रही हूँ और आसमान के किसी छोर को ना पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। आपको दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और भारतीय वायुसेना जो हर साल यूँ कहूँगी मैं कि हर वक्त यही कोशिश करती है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से सभी भारतवासियों को जोड़े, और इसकी पहल इसकी मुहिम सुब्रतो कप और अब सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन के माध्यम से की जा रही है। ये सेकेंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन का आप खुद साक्षी रहे हैं, किस तरीके का माहौल होता है?
1: अगर मैं कहूँ मतलब वो कहते हैं गूज़बम्प्स, तो ये एक पहला वर्ड होगा। अब मैं अपने श्रोतागण को बोलना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ के माध्यम से इमेजिन करें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की हरी घास, ओपन एरिना, वाइट फ्लड लाइट वहाँ पे है, हमारी जो टी शर्ट की थीम है वो वाइट कलर है विथ ट्राई कलर थीम, तो जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में तारे होते हैं ना, एक तारों की पूरी चादर बिछी हुई है, तो अगर कोई हाइट पे खड़ा होकर देखे तो उसे ऊपर भी तारे दिखेंगे और ज़मीन पे भी तारे दिखेंगे, तो ऐसा माहौल होता है कि मन करता है बस ये देखता ही जाए।
0: वाह क्या बात है, आपने कहीं ना कहीं कहते हैं रेडियो के माध्यम से वैसे भी हमारे जो श्रोता है ना उनके आंखों के आगे चित्र घूमने लगते हैं, मेरी आंखों के आगे साक्षात आपके शब्दों से चित्र बनने लगे हैं और मैं महसूस करने लगी हूँ कि कितना भव्य माहौल वहाँ होने वाला है। आप खुद को महसूस करने वाले हैं उन हवाओं में, फिजाओं में, जिनकी कल्पना आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने भर मात्र से कर ली होगी। भले ही आपके मन में द्वंद्व भी होगा, परेशानी भी होगी कि हम क्यों इसका हिस्सा ना बन पाए, क्योंकि हम हैं कि जिंदगी आपको दूसरा मौका जरूर देती है, तो तीसरे एडिशन का आप हिस्सा जरूर बन पाएंगे। अब बात करें, और जानकारी हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम अर्जित कर सकें, हमें भारतीय वायुसेना पर पूरा पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़्यादा हमारे जो भारतीय हैं वो जुड़ेंगे और अगली मरतबा फिर आएंगे। अगर हम बात करें वहाँ जिस तरीके की फैसिलिटीज़ आपने जैसे बताया कि यहाँ पर की गई हैं, रूट्स और मैप्स, उसके लिए क्या हमारे पास वहाँ पर प्रावधान है? कितना आसान, कितना सरल है जब हमारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ दौड़ेंगे, चलेंगे, भागेंगे, उनके लिए आप बताएं।
1: जो रेगुलर रनर्स है, अगर जे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देखा जाए तो 21, 10 और 5 के का स्टैंडर्ड रूट रहता है। इसकी पूरी जानकारी हमने एक्सपो में दे रखी है, बट ये सारी जानकारी थ्रू मेल भी लोगों के पास गई हुई है। फिर मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन दोबारा बताना चाहूँगा कि 21 किलोमीटर जो है वो पूरा ल्यूटेंस दिल्ली में घूमते हुए कर्तव्य पथ पे जाती है, और जब वापस हम आते हैं तो जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है, उसके राउंडल के थ्रू आती है। तो एक यूनिक चीज़ है, नॉर्मली रेसेस वहाँ से नहीं होती हैं, पर हमने परमिशन ली है वहाँ की, तो आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देंगे। और जो 21 किलोमीटर के रनर्स होते हैं नॉर्मली 7:15 के आसपास वहाँ से निकल रहे होते हैं, और उस टाइम सनराइज़ हो रहा होता है, तो वो एक ऐसा पिक्चरिस्टिक माहौल होता है कि आपको थकावट भी आपकी दूर हो जाती है और आनंदित हो जाते हैं। एज़ फार एज 10K गोज, तो 10 किलोमीटर भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से निकल के लोधी रोड के एरिया के आसपास सर्कुलर रूट है, वहाँ पे करते हुए वापस आएगी, और 5 किलोमीटर भी उसका जस्ट हाफ है, उसी रूट पे रहेगी।
0: बहुत खूब, तो आपके लिए पूरे प्रावधान, पूरी फैसिलिटी भारतीय वायुसेना ने कर रखी है, बस आप उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। अब एक ना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ लूं।
1: अरे बिल्कुल।
0: वो जो गुडी बैग आप देने वाले हैं, हाँ। उसमें पार्टिसिपेंट्स को क्या क्या मिलने वाला है? कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले मन में उत्सुकता होने लगी कि क्या क्या मिलने वाला है।
1: काफी कुछ मिलने वाला है, अगर आप गुडी बैग को ही देखें तो उसमें सेखो साहब की फोटो है, सबसे बड़ी, तो आप मनमोहक हो जाएंगे उस गुडी बैग को देख के। गुडी बैग के अंदर हमारा एक एयरक्राफ्ट का मॉडल है, एक जो हम अपने ओवरऑल्स पे

0: सेखों का पैच, जो नॉर्मली जैकेट से है, उस पर एक पैच लगाते हैं, पैच है उसके अंदर अवेलेबल, एनर्जी बार है उसके अंदर, एक रिस्ट बैंड है जब भी आप भागेंगे और आपको पसीना आएंगे उसको सुखाने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी टी शर्ट। इस बार हमने रिबॉक के साथ कोलेब्रेशन किया है और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है जो आपको रनिंग का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगी।
1: बहुत खूब। एक बात कहूँ, आप गुडी बैग नहीं दे रहे हैं, आप सपने दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ मैं उसी दौर में फिर पहुँच जाऊँ जब मैं फिर एफओस का एग्जामिनेशन देने के लिए खुद को तैयार करूँ। तो सपने दे रहे हैं यहाँ पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, आप ज़रूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कह रही हूँ, सेकेंड एडिशन ऑफ सेखों इंडियन एफओस मैराथन सिम 2026, और उम्मीद की लौ कायम रखिए, थर्ड एडिशन आपके लिए और भी शानदार होगा। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए
0: तो किसी का ये आप सर ने सही बोला, सपने देखेंगे जब भी तो पूरे होंगे।
1: बिल्कुल, लेकिन अगर कोई सपने दे दे अपने हाथों से तो उससे बड़ी बात दुनिया में शायद कुछ और हो नहीं सकती। एक सवाल हमारे पास और है। अक्सर हम जब कहीं जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा बैगेज होता है। अब हम सोचते हैं खासतौर पर जब मैराथन में जब हम दौड़ेंगे भागेंगे तो उस वक्त हमारे सामान का क्या होगा, तो इसके लिए क्या फैसिलिटी है?
0: इसके लिए फैसिलिटी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है। जैसे आप एंट्री करेंगे, हमने बहुत बड़े बैगेज काउंटर्स बनाए हुए हैं जहां आप अपना बैगेज सुरक्षित डिपॉजिट कर सकते हैं और जब आप रिकी रेस खत्म होती है वहां से वापस ले सकते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल निश्चिंत तो होकर जाइए, आपकी सुरक्षा, आपके सामान की सुरक्षा भारतीय वायुसेना करने वाला है इस मैराथन में। अब अक्सर ना हमारे साथ क्या होते हैं, टिकट मिला है, टिकट दिया है, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, दोस्त तुम चले जाओ। अक्सर हमारे साथ ये होता है। तो क्या इस मैराथन में कोई पार्टिसिपेंट ऐसा कर सकता है कि मैं नहीं जा पा रहा हूं तो अब मेरा घर का परिजन, मेरा दोस्त चला जाए?
0: काश ऐसा हो पाता, बड़े नॉन ट्रांसफरेबल है।
1: जी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आपका पूरा वेरिफिकेशन देगा, पूरा आपका ब्यौरा देगा कि आप वही हैं जो अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इस बात को आप जहन में बिठा लीजिए जनाब कि आपको पूरी एहतियात के साथ यहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पर मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी और उसके बाद आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछना चाहेंगे। आज मैंने इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप नंबर का जिक्र नहीं किया, उसके बावजूद बहुत से संदेश यहाँ तक हमें मिले हैं। और वंदे मातरम लिखा है हमारे पास, सरवाड़ से संदेश आया है, अरकेड़ी पंडित चन्नप्पा का संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें द्वारका सेक्टर 15 से शंकर का संदेश है। वंदे मातरम में यश चिंदे मुंबई से इन्होंने लिख भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। आपके संदेश तफसील से मैं कमांडर साहब को, विंग कमांडर साहब को सुनाऊंगी, लेकिन यहाँ समय की नजाकत है, सिर्फ नाम पढ़ पाऊंगी। पंकज अमरावती संदेश भेजा है, यशवंत आडमुटे इन्होंने संदेश भेजा है महाराष्ट्र से, बीकानेर से हमारे पास संदेश आया है, मंसूर अली का दमदार संदेश टू सोल्जर्स इन्होंने लिख भेजा है वंदे मातरम, तमिलनाडु से हमारे पास आया है ये संदेश, नाम नहीं लिखा, विजय कुमार भी इन्होंने संदेश नाम भेजा है, और चंपावत टनकपुर उत्तराखंड से संदेश आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अनिल कुमार का हमारे पास संदेश है, आज समय कम है लेकिन संदेशों की फहरिस्त बहुत लंबी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अब यहाँ पर आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी, स्पिरिट ऑफ सिखों क्या है ये हमें बताएं।
0: ये एक हमने पहल करी है, इस एडिशन से हमने देखा है कि मैराथन्स में काफ़ी लोग होते हैं जो किसी इश्यूज के वजह डिप्राइड होते हैं, किसी अंग में कोई डिफेक्ट होता है या अदरवाइज कोई एक्सीडेंटल इश्यूज हो जाते हैं, या कुछ लेडीज़ होती हैं जो ओल्ड एज होती हैं वो साड़ी वगैरह पहन के भागती हैं, कुछ कॉस्ट्यूम्स इस तरह की होती हैं, तो ये शो करता है कि हाँ ये दीज आर डेडिकेटेड। जैसे सेखों साहब का स्पिरिट था इतना हाई इंडिया के लिए, ऐसा ही इन लोगों के लिए यूनिकनेस है कि इनका स्पिरिट इतना हाई है कि इतने चैलेंजेस के बाद भी उनको वो एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और वो इस रेस में भाग रहे हैं। तो हमारी वहाँ टीम रहेगी जो असेस करेगी ऐसे हमारे धावकों का और उनको हम फेलिसिटेट करेंगे रेस के बाद।
1: बहुत खूब। एक बात और, महिलाएं और पुरुष दोनों की तादाद आप अगर कंपैरिजन, तो खैर सवाल नहीं उठता, लेकिन अगर बात की जाए जितना बढ़ चढ़ कर पुरुष हिस्सा लेते हैं, महिलाएं भी आपने फर्स्ट एडिशन में देखा होगा, तो महिलाओं का भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया रहती है,
0: काफी योगदान रहता है। मैं कहूंगा बराबर तो नहीं, मैं 60-40 की रेशो तो 100% रहती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो अगली बार मैं भी हूँ, इसीलिए यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवा रही हूँ, खासतौर पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी को। अब एक बार दोबारा से उन सभी स्टेशन का नाम ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की ना अपने राज्य से अपने जहाँ पे भी एयरफोर्स स्टेशन है एक आत्मीयता जुड़ी होती है और लगता है अच्छा हमारे शहर में हमारे जो शहर का जो एयरफोर्स स्टेशन है राज्य का यहाँ पर भी है, उनका नाम ले लीजिए।
0: तो जैसा मैंने पिछली बार नॉर्थ टू साउथ गया था, अब मैं सोचता हूँ रिवर्स एक्शन करते हैं, अब साउथ टू नॉर्थ चलते हैं। तो अगर साउथ इंडिया में जाए तो तिरुवनंतपुरम पहला स्टेशन है, बेंगलुरु दूसरा स्टेशन है, उसके बाद और ऊपर सेंटर में आए तो ग्वालियर है, ईस्ट में जाए तो गुवाहाटी है, वेस्ट में मुंबई और जोधपुर है, और नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़।
1: तो आप कहीं से भी हैं आपके लिए सुनहरा मौका है, आप इसका हिस्सा बनिएगा। हम जानते हैं आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, 15 सितंबर को रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गए थे, लेकिन जैसे कि हम बहुत उम्मीदवार हैं, ऊर्जावान हैं, और हमारी ऊर्जा हमें अगले साल की ओर भी रुख कर रही है, लेकिन अगले साल के लिए आपको जानकारी तो फिर भी चाहिए होगी। तो हम धनकर साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि साइट का नाम दोबारा बता दें, जिससे कि हमारे वो श्रोता जो इस बार न सही अगली बार हिस्सा बन पाए इस मैराथन का।
0: अगर आप गूगल पे डालेंगे secho-marathon.in, ये साइट का नाम है, आप एक बार इसको देख लें। मैं अर्ज करूंगा जो नहीं भी पार्टिसिपेट कर पाए फिर भी इस साइट को एक बार विजिट कर लें, फ्यूचर में भी यही साइट रहने वाली है, हम इसी पे अपने नेक्स्ट एडिशन कंटिन्यू करेंगे।
1: बहुत खूब, हम दिल से एक बार फिर धन्यवाद देना चाहते हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी का, और हम यही चाहते हैं कि हर मरतबा हम आपके साथ यूँ ही हर शो में शामिल हों, आपसे बात करें, और सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026 सफल हो, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने हमेशा जीतना सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
0: धन्यवाद आपने हमें समय दिया, एंड ऑल द बेस्ट।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: दोस्तों नमस्कार, शाम के ठीक 5:02 का वक्त और वक्त है कि आप अपने अपने FM रेनबो मुंबई से जुड़ जाएं, थोड़ा पास आ जाएं रेनबो के, क्योंकि बहुत सारी बातें होने वाली हैं और होने वाले हैं बहुत सारे गीत भी। और आज की इस शाम करते हैं मिलकर अक्टूबर महीने का स्वागत। दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता, लेकर अपने साथ अपना वही सुनहरा पिटारा जिसमें है बहुत सारे गाने, बहुत सारी बातें, बहुत सारे गीत, बस सिर्फ आपके लिए। और आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मस्त फिल्म के इस मस्त गीत के साथ।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

दोस्तों आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी कार्यक्रम अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ. और आज पहली अक्टूबर का दिन और अक्टूबर महीना मुझे ना बहुत पसंद है, इसलिए भी क्योंकि ये अपने साथ दशहरा, कभी कभी दिवाली की खुशियां, वो रंग लेकर के आ जाता है. मतलब अक्टूबर के आते ही वो जो एक फेस्टिव वाइब हम कहते हैं ना, वो एकदम पता चलने लगती है. तो अक्टूबर, उफ, कितना इंतज़ार रहा इस महीने का, और पूरे 9 महीने के इंतज़ार के बाद आखिर ये महीना शुरू हो गया है. वेल, आज कार्यक्रम की शुरुआत में मैं ये बिल्कुल आपको नहीं बताने वाली कि भई आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे ये पूछने वाली हूँ कि कैसे हैं आप, सब कुछ ठीक चल रहा है, या ऐसी भी कोई बातें हैं जो शायद आपका दिल कह रहा है किसी से कहने की पर समझ नहीं आ रहा किससे शेयर करें, किससे बताएं. बहुत सारी चीज़ें हैं, शायद बहुत सारी जिम्मेदारियां एक साथ आ गई, या फिर बहुत कुछ करने का मन है लेकिन ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर शुरुआत कहां से करें. अगर बहुत कुछ मन में चल रहा है तो घबराइए नहीं, बस आपके पास नंबर है 8657661071 8657661071. इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं. इस बात की फिक्र मत करिए कि भाई अगर मैंने अपनी बात कही, अमिता को लिख दी, तो कहीं ये रेडियो पर अनाउंस ना कर दे कि भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं. बिल्कुल भी नहीं, ये वाली जो बातें होंगी ये रेडियो पर जाएंगी ही नहीं. लेकिन कई बार हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए होता है, एक ऐसे सोर्स चाहिए होता है कि जहाँ पर बस हम कह दें. अब चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, अगर आप मुझे नहीं भी भेजना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर मन में वो बोझ मत रखिए. किसी से कह दीजिए, मुझसे, किसी और से, किसी दोस्त से, या फिर अपने उस ईश्वर से. 5:11 का वक्त, कार्यक्रम लव यू जिंदगी सुन रहे हैं आप ओनली ऑन FM रेनबो मुंबई, जो है म्यूजिकली योर्स.

भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है तो चुप मत रहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक जरिया है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या CVC के दायरे में आने वाली संस्था से जुड़ी शिकायत है तो आप CVC की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जानकारी और कंप्लेंट के लिए विजिट करें CVC।

0: www.gov.in। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी आवाज से होती है।
1: अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना।

शाम के ठीक 5:21 का वक्त सुन रहे हैं आप लव यू जिंदगी कार्यक्रम अपनी आरजे दोस्त अमिता के साथ। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमसे बहुत कुछ मांगती है। एक साथ न जाने कितने सारे रोल्स निभाने पड़ते हैं, हमें कई सारे किरदार निभाने पड़ते हैं। सब्र, संयम, इंतजार और सबसे ज्यादा धैर्य। हम मुश्किलों से लड़ते रहते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, पर कई बार ऐसा भी मन में ख्याल आ जाता है कि बस अब बहुत हुआ। लेकिन जब भी ऐसा ख्याल आपके मन में आए ना, तभी

अगर आप सुन पाए तो सुनिएगा, क्योंकि जिंदगी धीरे से कहती है कि बस थोड़ा और रुक जाओ, बस थोड़ा और संभल जाओ, बस एक आखिरी कदम, बस एक आखिरी बार, एक बार और कोशिश कर लो। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी पूरी मंजिल से ज़्यादा मुश्किल होता है मंजिल के ठीक पहले खुद को संभाल पाना। और आज इसी बात पर सुनाऊंगी आपको एक कहानी भी, पर उससे पहले एक गीत।

0: श्रेया घोषाल, अभिजीत और साथियों की आवाज़ों में ओम शांति ओम फिल्म का ये गीत। और फिलहाल बता दूं आपको कि ठीक 5:30 पर आप सुनेंगे एशियन गेम्स 2026 डे अपडेट्स।
1: सबके अलग है अंदाज, कोई मजाकिया
2: तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज़,
3: कोई लुभाए शेरो शायरी से
2: तो सुकून से भरी किसी की आवाज़,
4: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
5: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
6: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द लाइव अपडेट दैट वी ब्रिंग टू यू एट दिस आवर। घड़ी में बज रहे हैं 2:30, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026। मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ हैं यहां पर धर्मेंद्र। सबसे पहले खुशखबरी के साथ इस अपडेट की शुरुआत करते हैं कि स्क्वॉश में इंडिया हैज क्लेम्ड द ब्रॉन्ज मेडल। येस, यू हर्ड मी राइट ओवर देयर, द इंडियन टीम हैज क्लेम्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन द स्क्वॉश इवेंट। हमने देखा कि वी सेंथिल कुमार लॉस्ट 1-4 टू अमीशन राज चंद्रन इन द डिसाइडिंग match of the men's team semi-final between India and Malaysia. V. Senthil Kumar won the opening game 12-10, but Malaysia's Amishan Raj hit back to take the next three games 11-6, 11-8, 11-9. Earlier in the day, in the same event, we saw in the earlier matches that Malaysia took the early lead, jahan India lost the opening match of the men's team semi-final with Abhay Singh going down 0-3 to Ian Yo Ng. The Malaysian won all three games 11-8, 11-8, 11-8 in just 27 minutes, giving Malaysian early 1-0 lead. Then we saw Veer Chautrani helping India make a recovery back into the second match, thereby leveling the scores 1-1, because Veer Chautrani beat Sanjay Jiwa 3-0. And finally, we saw that V. Senthil Kumar went down to lose the game, and as a result, India had to settle in with the bronze.
2: उधर कुश्ती से भी अच्छी खबर है। भारत के नितेश सिवाच ने पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको-रोमन वर्ग में सिल्वर मेडल जीत लिया है। उन्हें फाइनल में जापान के यूरी नाकाजातो ने फाइनल में 4-0 से हराया और गोल्ड अपने नाम किया। नाकाजातो ने मुकाबले में 4-0 की बढ़त बनाई। नितेश ने पिन से बचाव किया, लेकिन जापानी पहलवान ने उन्हें वापसी का मौका नहीं दिया। नाकाजातो ने मैच की रफ्तार अपने नियंत्रण में रखी और गोल्ड जीता, और इस सिल्वर के साथ भारतीय कुश्ती दल ने अपने अभियान की शुरुआत पदकों के साथ कर दी है। लेकिन ग्रीको-रोमन रेसलिंग

0: में एशियन गेम्स गोल्ड के लिए भारत का इंतजार जारी रहा। हम आपको बताएं कि 64 साल बाद कोई भारतीय पहलवान फाइनल में पहुंचा था और 1962 में मालवा सिंह और गणपत अंदालकर ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। लेकिन उधर अहलावत की बात करें तो वो महिलाओं की 62 किलोग्राम भार वर्ग में पदक से चूक गए। रेपेचाज में मानसी अहलावत का मुकाबला मंगोलिया के पहलवान से था। आते ही जब मैट पर वो आई 2-0 से पिछड़ गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी की, 2-2 की बराबरी भी की, लेकिन अंतिम कुछ सेकेंड्स में अपने नियंत्रण में इस मुकाबले को नहीं रख सकी और 2 अंक गवाए, जिसकी वजह से उनको ये मुकाबला मानसी अहलावत को 2-4 से गवाना पड़ा।
1: Right, in the world of golf, India's Pranavi Urs was in the second place in the women's individual stroke play after 2 rounds, carding 11 under 129 to set 2 strokes behind leader Shannon Juan Yin Tan of Singapore. Vahi Deeksha Dagar was tied 21st at 4 over 144, while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are presently third in the team standings behind China and Singapore.
0: और उधर हॉकी में भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियन गेम्स मेंस हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। अभिषेक ने मैच के आखिरी मिनट में गोल कर भारत को जीत दिलाई। गोल्ड मेडल के लिए 3 अक्टूबर को भारत का सामना कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल मैच के विजेता से होगा। भारत ने मैच के 23वें मिनट तक 3-0 की बढ़त बना ली थी। इसके बाद पाकिस्तान ने अगले 26 मिनट में 3 गोल कर मैच 3-3 से बराबर कर दिया। 59 मिनट तक मैच बराबरी पर था। फाइनल हुटर बजने से करीब 50 सेकंड पहले अभिषेक ने फील्ड गोल कर भारत को जीत दिला दी और भारत के लिए गोल किया हरमनप्रीत सिंह ने 5वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर। फिर उन्होंने ही 13वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर दूसरा गोल किया। सुखजीत सिंह ने 23वें मिनट में गोल किया। अभिषेक ने 60वें मिनट में गोल किया। पाकिस्तान के लिए अबू महमूद ने 30वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया। हन्नान शाहिद ने 45वें मिनट में गोल किया। वहीद राणा ने 49वें मिनट में गोल किया और इस तरह से यह मुकाबला भारत ने अपने नाम 4-3 से कर लिया।
1: जी, एंड अ क्विक अपडेट फ्रॉम रग्बी सेवन्स, वेयर इंडियन वुमेन्स रग्बी सेवन्स टीम कंप्राइजिंग शिखा यादव, दुमुनी मर्दनी, संध्या राय, मामा नायक, वैष्णवी पाटिल, कल्याणी पाटिल, अमनदीप कौर, आरती कुमारी, भूमिका शुक्ला, गुरिया कुमारी, निर्मल्या राउत, संध्या रानी टुडू एंड उज्ज्वला घुगी टीम हैड अ टफ स्टार्ट ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द 2026 एशियन गेम्स, सफरिंग 2 हैवी डिपीट्स इन पूल बी, पूल ई इन सम क्लासिफिकेशंस एट द पलोमा मिजूर रग्बी स्टेडियम। मैच 1 इंडिया एंड हांगकांग दैट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड हांगकांग, इंडिया फिनिश्ड एट 7 points while Hong Kong at 33 points, and then the match 2, India lost to China 5-43. A tough day for the Indian women's rugby sevens team.
0: और मेडल टैली पर भी एक निगाह अगर डालें तो भारत अभी भी 8वें स्थान पर है। 10 स्वर्ण पदक जीते हैं अभी तक, 22 रजत पदक और 32 कांस्य पदकों के साथ कुल 64 पदक जीतकर भारत इस समय मेडल टैली में 8वें स्थान पर है।
1: That is all that we had. इस अपडेट में आप सबके लिए फिलहाल के लिए साक्षी मांडवाल और धर्मेंद्र को दीजिए इजाजत। हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे दोस्तों शाम के 6:30 बजे विद द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. गुड बाय फॉर नाउ.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

लव यू जिंदगी कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और इस अपडेट के पहले, जैसा कि मैंने कहा कि भाई आज आपको सुनाने वाली हूँ एक कहानी, कहानी जो हमें सिखाएगी कि भाई जब भी हमारे दिल में ये ख्याल आए कि बस अब बहुत हो गया तो बस रुक जाइएगा, एक छोटा सा पॉज ले लीजिएगा। दोस्तों एक बार की बात है, एक राजा था और उसे राज करते करते हुए बहुत समय बीत गया था। उसे लग रहा था कि भाई मेरे राज्य में तो सभी खुश हैं, प्रजा भी खुश हैं, दरबारी भी खुश हैं, हर कोई खुश है और उसे बस अपने ही राजा होने पर अभिमान भी था। एक बार उसने अपने दरबार में उत्सव रखा, अपने मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया और साथ ही साथ

अपने गुरुदेव को भी बुलाया। उत्सव को और ज्यादा रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया और राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दे दी ताकि नर्तकी के अच्छे गीत और नृत्य पर वो भी उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा और जब ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई तो नर्तकी ने देखा कि जो तबला वादक है उसकी आंख लगने वाली है, वो बस अब पलक झपकने ही वाली है और वो उसके जो तबले पर जो उसकी थाप है वो कहीं बिगड़ न जाए। तबले वाले को सावधान करना जरूरी था, वरना राजा का क्या भरोसा वो उसे मृत्युदंड भी सुना दे। उस नर्तकी ने तबला वादक को जगाने के लिए एक ऐसी बात बोली जिसने उस रात कई सारी जिंदगियां बदल दी। वो बात क्या थी बताती हूँ।

दोस्तों, उस नर्तकी ने उस तबला वादक को जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा और दोहा कुछ यूं था, घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। घड़ी गई थोड़ी रही, बहुत रात बीत चुकी है, बस अब थोड़ा सा समय बाकी है और सुबह होने को है, बस अब एक पलक के कारण यूं अपने जो इतना अच्छे से पूरी रात आपने वादन किया है उस पर कलंक ना लगाए। इस दोहे का अर्थ ये था। दोस्तों, नर्तकी ने जब ये दोहा कहा तो उसे खुद भी इस बात का पता नहीं था कि ये चार पंक्तियां पूरे दरबार की आंखें खोलने वाली हैं। उसने इस दोहे को सुनकर तबले वाला तो बात समझ गया और आखिरी समय में जरा भी लापरवाही नहीं बरती, वो पूरी सजगता से तबला बजाने लगा। अब इस दोहे को अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। जब ये दोहा गुरुजी ने सुना तो उन्होंने सारी मोहरे उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहे को सुनकर राजकुमारी ने भी अपना नौलखा हार उस नर्तकी को भेंट कर दिया और वहीं राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। अब राजा अचंभित हो गया। उसने सोचने लगा कि रात भर से ये नृत्य चल रहा है, पर इस वक्त ये क्या हो गया। अचानक एक दोहे को सुनकर सब अपनी अपनी मूल्यवान वस्तु नर्तकी को समर्पित क्यों कर रहे हैं। राजा सिंहासन से उठा और उसने उस नर्तकी को जोरदार डांट लगा दी। जब राजा के उस गुरु ने इस बात को देखा तो वो राजा के सामने गए और कहने लगे कि राजन, इसे कुछ मत कहो, क्योंकि अब ये मेरी भी गुरु बन गई है, क्योंकि आज इस दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने पूरी जिंदगी साधना में लगा दी थी और आखिरी समय में बस मोह के कारण यहां आ बैठा। अगर अब भी नहीं संभला तो मेरी इतने वर्षों की साधना

यूं ही व्यर्थ हो जाएगी। ये कहकर गुरुजी अपना कमंडल उठाकर उसी क्षण जंगल की ओर अपनी साधना पूरी करने चल पड़े। राजा हैरान था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। राजकुमारी ने भी उस दोहे को सुना और उसकी आंखों से आंसू छलक गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। दरअसल हुआ यूं था कि राजकुमारी के विवाह योग्य होने के बावजूद राजा अपने ही मद में चूर था और उसे अपनी बेटी के विवाह के बारे में वो सोच ही नहीं रहा था। इसीलिए राजकुमारी उसी रात राजमहल के एक दरबारी के साथ भागने वाली थी, लेकिन नर्तकी के उस दोहे ने उसे ये याद दिलाया कि क्यों एक जल्दबाजी में मैं अपने पिता और अपने परिवार पर कलंक लगाऊं। हो सकता है कल सब कुछ ठीक हो जाए। और जब राजा ने युवराज की ओर देखा तो युवराज ने कहा कि महाराज, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज सौंप ही नहीं रहे थे, और इसीलिए मैं आज रात आपके ही सिपाहियों के साथ मिलकर आपको बंदी बनाने वाला था। लेकिन इस दोहे ने समझाया कि आज नहीं तो कल आखिर ये राज तो मुझे ही मिलना है, तो फिर क्यों मैं अपने पिता को बंदी बनाने का कलंक अपने सिर पर लूं? थोड़ा धैर्य रख लूं। जब राजा ने ये सारी बातें सुनी तो राजा को बहुत आत्मग्लानी हुई। राजा के मन में वैराग्य सा भाव आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया कि वो युवराज का राज तिलक अभी इसी क्षण करेंगे, और फिर अपनी पुत्री को कहा कि दरबार में एक से एक राजकुमार आए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार को वर के रूप में स्वीकार कर लो और मैं तुम्हारी शादी उसी राजकुमार के साथ कर दूंगा। और ये सब करके राजा भी अपने गुरु की शरण में चले गए। और सबसे बड़ी बात जानते हैं दोस्तों, वो नर्तकी ये सोचने लगी कि मेरे एक दोहे ने इतने सारे लोगों की जिंदगी बदल दी, लेकिन मैं खुद क्यों नहीं बदली। उसने भी नृत्य छोड़कर प्रभु स्मरण का रास्ता चुन लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी शायद यही सीख देती है कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, इंतजार करना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। कभी कभी बहुत लंबा रास्ता भी हो सकता है कि तय करना पड़े, लेकिन जब मंजिल बस सामने हो ना, तो ये याद रखिएगा, घड़ी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए।

एक छोटी सी रिश्वत क्या सच में इतनी छोटी होती है? नहीं, रिश्वत सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि ईमानदारी और व्यवस्था पर चोट है। याद रखिए, न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो चुप मत रहिए। संबंधित सतर्कता या भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी को इसकी सूचना दीजिए। सतर्क रहें, ईमानदार रहें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में अगर आपको याद हो तो मैंने आप सभी से पूछा था कि भाई आप कैसे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बात दिल में हो, बहुत दिनों से परेशान कर रही हो। और बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं उन्होंने उस बात का रिप्लाई भी भेजा है। कोई कह रहा है कि भाई घर के बांधकाम का जो काम है वो पेंडिंग है, और ये भी है कि बहुत सारे काम जो हैं वो शुरू करने हैं पर शुरुआत कहाँ से हो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। वहीं किसी ने ये भी कहा कि भाई हम तो एकदम अच्छे हैं, आप अपनी खैरियत बताइए। और कोई ये भी कह रहा है कि असल

सच में कोई सुनने वाला ही नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो कहनी है, पर किससे कहूँ समझ ही नहीं आ रहा है। दोस्तों, कई बार बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो शायद हम दिल से लगा बैठते हैं या मन पर हमारे वो एक बोझ सी बन जाती है, पर उस बोझ को बोझ मत रहने दीजिए। अपने किसी नज़दीकी से, अपने किसी दोस्त से या घर परिवार

मदद भी ले सकते हैं, पर बस उन बातों को और उन चीज़ों को मन पर बोझ मत बनने दीजिए, क्योंकि उसे कितने देर तक अपने मन पर एक बोझ के रूप में रखना है ये भी हम ही तय करेंगे। फिलहाल बस इतना ही कहूँगी चलते चलते कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, तो लव यू ज़िंदगी कहते रहिए। मैं हूँ आपकी आरजे दोस्त अमिता, और लव यू ज़िंदगी के अगले अंक में मिलेंगे फिर नई बातों के साथ और कुछ और नए गीतों के साथ।

0: Lani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर जो है म्यूजिकली योर्स। और आज की इस शाम मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता लेकर अपना सुनहरा पिटारा। और शाम के ठीक 6:16 हो रहे हैं और वक्त है उस महफिल को सजाने का जिसे हम कहते हैं अंदाजे बयां। कोई उजाला देखेगा, कोई दाग गिनेगा, कोई उजाला देखेगा तो कोई दाग गिनेगा, तुम दोनों को सुनना और फिर खुद को चुनना। न रोशनी पर इतराना न अंधेरे से डरना, न रोशनी पर इतराना न अंधेरे से डरना, चांद कब एक सा रहता है, अमावस भी उसकी पूनम भी उसकी। फिर तुम क्यों अपने किसी रूप से भागो, फिर तुम क्यों अपने किसी रूप से भागो, जो दाग है उन्हें भी रखो, जो उजाले हैं उन्हें भी सजोना। पूरा वही है जो अपने हर हिस्से का होकर जीता है, पूरा वही है जो अपना अपने हर हिस्से का होकर जीता है।

0: भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है तो चुप मत रहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक जरिया है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या CVC के दायरे में आने वाली संस्था से जुड़ी शिकायत है तो आप CVC की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जानकारी और कंप्लेंट के लिए विजिट करें cvc.gov.in। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी आवाज से होती है।
1: अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना।

0: कैपोन की आवाज़ में दम लगा के हईशा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना ओनली ऑन एफएम रेनबो मुंबई, जो है म्यूजिकली योर्स।
1: सबके अलग है

0: अंदाज कोई मजाकिया तो किसी की मदहोश कर देने वाली आवाज,
1: कोई लुभाए शेरो शायरी से
0: तो सुकून से भरी किसी की आवाज,
2: जो मेरी मंजिलों को जाती है तेरे नाम की कोई सड़क है।
3: अलग अलग अदाएं हैं सबकी खास, यही तो है FM रेनबो का राज।
4: 107.1 म्यूजिकली योर्स, दिल से दिल तक।

0: एक छोटी सी रिश्वत क्या सच में इतनी छोटी होती है? नहीं, रिश्वत सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि ईमानदारी और व्यवस्था पर चोट है। याद रखिए, न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो चुप मत रहिए। संबंधित सतर्कता या भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी को इसकी सूचना दीजिए। सतर्क रहें, ईमानदार रहें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अंदाजे बयां, और अंदाजे बयां की ये महफिल यूं ही जारी रहेगी, पर आपको बताते हैं कि ठीक 6:30 पर आप सुनेंगे एशियन गेम्स 2026 के अपडेट्स।
0: गजल से पॉप तक, सूफी से रॉक तक,
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल, और दोस्तों मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है धर्मेंद्र। हम लेकर आ गए शाम के 6:30 द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। लेट्स स्टार्ट ऑफ फ्रॉम जूडो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेयर देयर इज मिक्स्ड न्यूज फॉर इंडिया इन जूडो, विद यामिनी मौर्या लूजिंग हर वुमेन्स 57 किलोग्राम्स क्वार्टर फाइनल टू मंगोलियाज अर्युन ज़िया थर्बिश बाय यूको। यामिनी नाउ मूव्स इनटू द रिपेचार्ज वेयर शी विल फेस जापान्स मियो शिराकने फॉर अ place in the bronze medal match. Meanwhile, Inan Ganbi Takalambam advanced to the women's 70 kg quarterfinals after beating Nepal's Poonam Shresth by Ippo. She will next take on North Korea's Moon Song Hui.
4: और हॉकी में भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियन गेम्स मेंस हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। अभिषेक ने मैच के आखिरी मिनट में गोल कर भारत को जीत दिलाई। गोल्ड मेडल के लिए 3 अक्टूबर को भारत का सामना कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। और हम आपको बताएं कि भारत ने मैच के 23वें मिनट तक 3-0 की बढ़त बना ली थी। इसके बाद पाकिस्तान ने अगले 26 मिनट में 3 गोल कर मैच 3-3 से बराबर कर दिया। 59 मिनट तक मैच बराबरी पर था। फाइनल हूटर बजने से करीब 50 सेकंड पहले अभिषेक ने फील्ड गोल कर भारत को जीत दिला दी। और अगर इस मुकाबले में गोल की बात करें तो भारत की तरफ से जो 4 गोल हुए उसमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से 2 गोल किए 5वें और 13वें मिनट में, सुखजीत सिंह ने 23वें मिनट में गोल किया, और अभिषेक ने 60वें मिनट में गोल किया। पाकिस्तान के लिए अबू महमूद ने 30वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल किया, हन्नान शाहिद ने 45वें मिनट में गोल किया, और वहीद राणा ने 49वें मिनट में गोल किया।
3: Right, now let's move on to sailing, where India got a very good news at the start of the day today, where they secured their first sailing medal at the Asian Games with Manu Francis and Prince Kursinkal Noble winning the silver in the men's skiff event. The Indian pair finished second with 23 net points and 29 total points after 9 races behind gold medalist China, who finished on 16 net points. India recorded 2 race wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China claimed the gold while Hong Kong took the bronze medal.
4: और क्रिकेट में मेंस कैटेगरी के फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में आज श्रीलंका को आसानी से 124 रन के बड़े अंतर से हराकर गोल्ड मेडल मैच में जगह बनाई। इस सेमीफाइनल मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए थे। भारत के लिए ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर ऑल आउट हो गई। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट लिए, जबकि श्रीलंका के 6 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके। पाकिस्तान ने उधर पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश

0: देश को 6 विकेट से हराया और फाइनल के लिए टिकट कटाया।
1: जी, और अब गोल्फ की दुनिया से भी कुछ खबरें आपको लेकर देते हैं अपडेट्स के तौर पर। इंडियाज प्रणव यूर्स वाज इन द सेकंड प्लेस इन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले आफ्टर टू राउंड्स, कार्डिंग 11 अंडर 129 टू सेट टू स्ट्रोक्स बिहाइंड लीडर शैनन जुआन जिन टैन ऑफ सिंगापुर। दीक्षा डागर वॉज टाइड 21st एट 4 ओवर 144, वाइल आदिति अशोक वॉज टाइड 25th एट 5 ओवर 145। इंडिया वर थर्ड इन द टीम स्टैंडिंग्स बिहाइंड चाइना एंड सिंगापुर।
0: और अगर हम बात करें आगे कुछ और खेलों की, तो तीरंदाजी से भी भारत के लिए आज बेहद अच्छी खबर आई और भारत ने चौथा मेडल जीता। कल के 3 गोल्ड के बाद आज गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के कंपाउंड इंडिविजुअल के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में उन्होंने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 के स्कोर से हराया। यह एशियन गेम्स में 20 वर्षीय मणि का दूसरा मेडल है। उधर सेपेक्टेक्रा के मेन्स क्वाड्रेंट इवेंट में मेडल पक्का हो गया है। भारत ने आखिरी ग्रुप मैच में म्यांमार को 2-1 से हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम इंडिया ने ग्रुप के 3 मैच जीते और अजय रहते हुए ग्रुप में टॉप किया।
1: राइट, मूविंग ऑन टू टैक्वांडो, इंडियाज कैंपेन इन द वुमेन्स इंडिविजुअल पोम्से इवेंट इन टैक्वांडो एंडेड एज रूपा बेयर बोर्ड आउट ऑफ द सेमीफाइनल। शी फिनिश्ड विद 7.6100 पॉइंट्स। दिस वाज नॉट इनफ टू फिनिश अमंग द 8 स्टार्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। And finally, to sum up this latest update, we shall be also giving you the medal table and also telling all our listeners as to where is India presently standing on the medals table. So presently, the Indian team stands on the 8th spot with a total of 64 medals, which includes 10 gold, 22 silver and 32 bronze. On that note, फिलहाल के लिए वक्त हो गया है मुझे यानी साक्षी मांडवाल और धर्मेंद्र को इजाजत देने का। हम आपसे एक बार फिर से आज के दिन की आखिरी अपडेट लेकर मिलेंगे शाम के 7:30 बजे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।
2: एशियन गेम्स 2000

दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंदाज़े बयां की इस महफिल में। मैं हूं आपकी आरजे दोस्त अमिता, और आज सजी है अंदाज़े बयां की इस महफिल। ये महफिल सजी है कुछ और अनोखे अंदाज़ों के साथ। दोस्तों, एक बार कबीरदास जी हरि भजन करते हुए एक गली से निकल रहे थे। उनके आगे कुछ स्त्रियां जा रही थी। उनमें से एक स्त्री की शादी कहीं तय हुई होगी, तो उसके ससुराल वालों ने शगुन में उसे एक नथनी भेजी थी। वो लड़की अपनी सहेलियों को बार बार नथनी के बारे में बता रही थी कि नथनी कितनी सुंदर है, कहाँ से लाई गई है, कैसे उसके होने वाले पति ने उसके लिए वो चुन करके नथनी भिजवाई है। ये खास मेरे लिए उन्होंने भेजी है, बार बार बस नथनी की ही बातें। उनके पीछे चल रहे कबीरदास जी के कानों में जब ये सारी बातें पड़ रही थी, तो तेज कदमों से बढ़ते हुए उनके पास से निकले और कहा, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, नाक दिनी करतार ने उनको दिया बिसार। सोचो, यदि नाक ही ना होती तो नथनी कहाँ पहनती। ये एक नथनी जिसने दी है, उसके बारे में बार बार बोले जा रही हो, उसी का गुणगान कर रही हो, लेकिन जिस परमात्मा ने उस नथनी को पहनने वाली नाक दी है, उसे तो कब का भूल चुकी हो। शायद कई बार हमारे साथ भी यही होता है ना, कि भौतिक वस्तुओं का तो हमें ज्ञान रहता है, पर जिस परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है, वो हम उसी को याद करना और उसी को धन्यवाद कहना भूल जाते हैं।

दोस्तों, जब मोहब्बत नई नई होती है तो महबूब के सामने आते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब अगर इसे मैं आम शब्दों में कहूँगी तो बस यही कहूँगी ना कि भाई, साइंस के मुताबिक दिल एक मिनट में 72 बार धड़कता है और तुम्हारा करीब आना साइंस जी धज्जियाँ उड़ा देता है। लेकिन अगर हमें यही बात एक शायराना अंदाज में कहनी हो अपने महबूब से तो शायद कुछ यूं कही जाएगी। अक्ल माफ कीजिएगा, तो अर्ज किया जाएगा, अक्ल वालों ने गिने थे चंद सांसों के हिसाब, अक्ल वालों ने गिने थे चंद सांसों के हिसाब, तुम जो आए तो किताबों के वरक उड़ने लगे। हसरतों की इस जमी पर इल्म क्या है गालिब, देखकर उस आईने को सब सबक उड़ने लगे।

तनु वेट्स बनु फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम अंदाजे बयां होता है समाप्त। दोस्तों बता दें आपको कि ठीक 7 बजे आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से प्रादेशिक समाचार और मैं लौटूंगी अपने पिटारे के साथ लेकर कार्यक्रम हम तुम ठीक 7:10 पर। और आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं 8657661071 इस नंबर पर।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: दोस्तों नमस्कार, शाम के ठीक 7:11 का वक्त और आइए शुरू करते हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम हम तुम, जहां आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाते हैं और हम आपके पसंदीदा गीत पहुंचाते हैं आप तक। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त अमिता, लेकर अपना सुनहरा पिटारा। और फिलहाल इस वक्त पिटारे में है आपके पसंद के गीत, और ये पहला गीत वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म से। और गीत के बाद बताऊंगी कि आखिर किसकी पसंद पर सुना हमने ये गाना। तुलसी कुमार, राहत फतेह अली खां और साथियों की आवाजों में ये गीत।

Once Upon a Time in Mumbai, इस फिल्म का ये गीत अभी हमने सुना Only on FM Rainbow Mumbai, जो है म्यूजिकली yours और पसंद थी चेतन कुमार की. साथ ही साथ अमरावती से पंकज मोहड़ ने भी इस गीत को सुनना चाहा और इस गीत में ही एक और भी पसंद जुड़ रही है और वो है प्रणव शिंदे की. दोस्तों 7:17 का वक्त सुन रहे हैं आप कार्यक्रम हम तुम अपनी आरजी दोस्त अमिता के साथ और अब दो गाने आ रहे हैं बैक टू बैक आपकी ओर और इन दो गीतों के साथ पूरी होगी पसंद. पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से महर अरोड़ा ममता कीर्ति भूमिका अरोड़ा की और साथ ही साथ जो दूसरा गीत सुनेंगे हम खेल फिल्म से वो उस गीत की फरमाइश भेजी है हमें प्रकाश शिंदे ने. तो दोस्तों इंजॉय कीजिए ये दो गाने बैक टू बैक और फिर दो गीतों के उस पार जानेंगे अगली पसंद है किसकी.

एक छोटी सी रिश्वत क्या सच में इतनी छोटी होती है? नहीं, रिश्वत सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि ईमानदारी और व्यवस्था पर चोट है। याद रखिए, न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो चुप मत रहिए। संबंधित सतर्कता या भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी को इसकी सूचना दीजिए। सतर्क रहें, ईमानदार रहें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, 20वें एशियन गेम्स के 12वें दिन के खेल की अंतिम अपडेट के साथ मैं हूं धर्मेंद्र और मेरे साथ हैं साक्षी मंडवाल। आईची नागोया में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। कोई गोल्ड आज टीम के हाथ नहीं लगा, हालांकि 5 मेडल जीतने में सफलता जरूर मिली। दिन का सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन कुश्ती की ग्रीको रोमन शैली में रहा, जहां नितेश सिवाच ने फाइनल में जगह बनाई। भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद ग्रीको रोमन कुश्ती के फाइनल में पहुंचा। हालांकि फाइनल में नितेश को जापान के यूरी नागा जातो ने 0-4 से हरा दिया और भारत का गोल्ड जीतने का इंतजार जारी रहा।
2: जी, और सेलिंग की दुनिया में अगर बात करें तो वहां से भी आज सुबह हमें खुशखबरी मिली, बिकॉज इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरिसिनिकल नोबल विनिंग सिल्वर इन द मेंस स्किफ इवेंट। द इंडियन पेयर फिनिश सेकंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 नेट पॉइंट्स। हांगकांग टुक द थर्ड स्पॉट, थेरबाय रैपिंग अप विद द ब्रॉन्ज मेडल फॉर देमसेल्व्स।
1: और तीरंदाजी में जहां कल हमारी टीम ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, वहीं आज एक ब्रॉन्ज मेडल मिला। कंपाउंड मेंस इवेंट में गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक मुकाबले में वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 के अंतर से हराया। ये एशियन गेम्स में गणेश का दूसरा पदक है।
2: जी, स्क्वाश की दुनिया में भी आज भारतीय मेन को डेफिनेटली ब्रॉन्ज मेडल मिला। और अगर हम बात करें महिलाओं की तरफ भी, तो वहां पर भी द इंडियन वुमेन्स टीम वेंट ऑन 1-2 टू हांगकांग इन द वुमेन्स टीम सेमीफाइनल एंड हैड टू सेटल इन फॉर द ब्रॉन्ज। अगर मेन्स की बात करें तो वहां पर हमने देखा कि इन द फर्स्ट मैच इंडिया लॉस द ओपनिंग मैच ऑफ द मेन्स टीम सेमीफाइनल विद अभय सिंह गोइंग डाउन 0-3 टू इयान यो एनजी। उसके बाद सेकंड गेम में वीर चौटरानी बीट संजय जीवा 3-0 टू ब्रिंग इंडिया लेवल 1-1। एंड फाइनली बी सेंथिल कुमार लॉस्ट 1-4 टू अमीशन राज चंदरन इन द डिसाइडिंग मैच ऑफ द मेन्स टीम सेमीफाइनल। एंड देयरबाय इंडियन मेन्स टीम इन स्क्वाश हैड टू ऑल्सो सेटल विद ब्रॉन्ज एंड द वुमेन्स स्क्वाश टीम ऑफ कोर्स सेटल्ड इन विद द ब्रॉन्ज एट द अर्ली पार्ट ऑफ द डे।
1: उधर हॉकी में भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियन गेम्स मेंस हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। अभिषेक ने मैच के आखिरी मिनट में गोल कर भारत को जीत दिलाई। गोल्ड मेडल के लिए 3 अक्टूबर को भारत का सामना मलेशिया से होगा। और हम आपको बताएं कि भारत ने मैच के 23वें मिनट तक 3-0 की बढ़त बना ली थी। उसके बाद पाकिस्तान ने जोरदार वापसी की और अगले 26 मिनट में 3 गोल कर मैच 3-3 से बराबर कर दिया। 59 मिनट तक मैच बराबरी पर था। फाइनल हुटर बजने से करीब 50 सेकंड पहले अभिषेक ने फील्ड गोल कर भारत को जीत दिला दी। और पुरुष हॉकी में अगर हम बात करते हैं तो भारत ने एशियन गेम्स में 4 गोल्ड 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल अब तक जीते हैं।
2: Right, and in cricket also we have some good news to give you, where Indian men's cricket team defeated Sri Lanka today in the semi-final by a huge margin of 124 runs. India, having been put into bat first, posted a total of 169 for the loss of 7 wickets and 20 overs, whereas Sri Lanka in that chase of making 170 got bundled out for a paltry 45 runs. Now the Indian men's team will be up for the final clash against Pakistan, who defeated Bangladesh also in the semi-finals today and then moved on towards the finals. ये फाइनल का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को आपको देखने को मिलेगा।
1: और सेपक ठकरा के मेंस क्वाड्रेंट इवेंट में मेडल भारत के लिए पक्का हो गया। भारत ने आखिरी ग्रुप मैच में म्यांमार को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और टीम इंडिया ने ग्रुप के 3 मैच जीते और अजेय रहते हुए ग्रुप में टॉप किया।
2: जी, वहीं ताइक्वांडो की दुनिया से अगर आपको कुछ खबर दे तो वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी खबर हम आपको नहीं दे पाएंगे, बिकॉज भारत का सफर इन द वुमेन्स इंडिविजुअल पॉम्जे इवेंट इन ताइक्वांडो एंडेड टुडे एज रूपा बेओर बोड आउट ऑफ द सेमीफाइनल। शी फिनिश्ड विद 7.6100 पॉइंट्स। दिस वाज नॉट इनफ टू फिनिश अमंग द 8 स्टार्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल।
1: और शूटिंग से भी अच्छी खबर नहीं है। मेन्स 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल में भारत के अनीश भानवाला 7वें स्थान पर रहे। इसके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान खत्म हो गया है। अनीश ने एक और सीरीज में 5 में से 4 हिट किए। उनके कुल 15 शॉट में से 11 हिट रहे। इस स्कोर के साथ वे तीसरे स्थान के लिए बराबरी पर थे। हालांकि टाई होने पर क्वालिफिकेशन का स्कोर देखा गया, क्वालिफिकेशन में अनीश का स्कोर कम होने के कारण वे टाई ब्रेकर में पीछे रह गया और सातवें स्थान पर रहे। इसके साथ 3 गोल्ड 8 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 15 पदक जीतकर भारत का शूटिंग अभियान खत्म हो गया। भारत ने पिछले एशियन गेम्स के मुकाबले 4 स्वर्ण समेत 7 कम पदक जीते।
2: Right, in rugby sevens, the Indian women's rugby sevens team had a tough start on the opening day of the Aichi Nagoya 2026 Asian Games, suffering 2 heavy defeats in Pool B, Pool E in some classifications at the Paloma Mizua Rugby Stadium. The first match, India lost to Hong Kong, China 7-33, and the second match, India lost to People's Republic of China 5-43.
1: जी, और वॉलीबॉल में भी अच्छी खबर नहीं रही। पाकिस्तान के हाथों भारत को 3-0 से शिकस्त मिली और भारत का अभियान वॉलीबॉल में भी समाप्त हो गया है।
2: राइट, विद दिस टू क्विकली सम अप हाउ इंडिया स्टैंड्स इन द मेडल टेबल टुडे बाय द एंड ऑफ द डे। वेल, इंडिया इज स्टैंडिंग प्रेजेंटली ऑन द 8th स्पॉट विद अ टोटल ऑफ 64 मेडल्स व्हिच इंक्लूड्स 10 गोल्ड 22 सिल्वर एंड 32 ब्रॉन्ज। लेट्स ऑल्सो टेल यू दैट ऑन द नंबर 1 स्पॉट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विद अ टोटल ऑफ 288 मेडल्स व्हिच इंक्लूड्स 154 गोल्ड medals. Japan is a number 2 with a total of 217 medals with a total of 59 gold medals in that. And on the 3rd spot we have Republic of Korea with a total of 113 medals jisme se 30 gold medal hain. Aur Bharat ka sthan abhi medal table par hai 8वें स्थान पर। इसके साथ ही दोस्तों, फिलहाल के लिए धर्मेंद्र और मुझे साक्षी मांडवाल को आज के लिए दीजिए इजाजत। हम आपसे कल सुबह एक बार फिर 9:30 बजे जुड़ेंगे विद ऑल द अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स 2026। फॉर द मोमेंट इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।
1: नमस्कार।
0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

ये दिल आशिकाना इस फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आपने सुना कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ों में, और इस गीत की फरमाइश भेजी उमरी से प्रमोद चिंचोलकर ने, और साथ ही साथ वर्ली कोलीवाड़ा से अशोक पाटिल राजेश मोरे भी, उनके भी पसंद इस गीत में शामिल है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं हमारे और भी कुछ जो लिसनर हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं, जैसे शुभदा ने भी मैसेज किया, साथ ही साथ मैसेज किया कोल्हापुर से रघुनाथ खनुकर ने, अंबरनाथ से अनिल घुले ने, और नलेश्वर नगर महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला और विशाल नावकर ने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका साथ हमें यूं ही मिलता रहे और हम तुम साथ आगे बढ़ते रहें। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा की पसंद पर कहूँ ना प्यार है फिल्म का ये गीत, और इसी गीत में शामिल हो रही है एक और भी पसंद, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी प्रहलाद, बंटी बबली वर्मा की।

कहो ना प्यार है, इस फिल्म का ये गीत दोस्तों, और इसी गीत में पसंद हो रही है शामिल जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह की।

एक छोटी सी रिश्वत क्या सच में इतनी छोटी होती है? नहीं, रिश्वत सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं बल्कि ईमानदारी और व्यवस्था पर चोट है। याद रखिए, न रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे। अपने अधिकारों के लिए जागरूक बनिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर कोई आपसे रिश्वत की मांग करता है तो चुप मत रहिए।

0: संबंधित सतर्कता या भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी को इसकी सूचना दीजिए। सतर्क रहें, ईमानदार रहें, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान दें।
1: और दोस्तों, अब मैं सुनाने वाली हूँ आपको दो गाने बैक टू बैक। पहला गीत है फिल्म क्यों हो गया ना, इस फिल्म का गीत जिसकी रिक्वेस्ट भेजी सोलापुर से राजशेखर बंडगर ने। और साथ ही साथ उसके बाद जो गीत आप सुनेंगे वो है गुरु फिल्म का गीत, और इसकी मिली जुली फरमाइश है मुंबई से दीपा पालकर और साथ ही साथ फिरोज सिगनपुरिया के। और कुछ नाम जो हमारे दोस्तों के नाम है जो हमारे साथ बने रहे, ये है असम से हितेंद्र दास, इंदौर से अजय साखरे, अहमदाबाद से आकांक्षा मनोज सिन्हा, और उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, और इनके नाम ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ। और साथ ही साथ मेरठ कैंट राजस्थान से दर्शन कविता भी हमारे साथ जुड़े रहे, और सुनील पांचाल ने भी हमें मैसेज किया, और वहीं मैसेज आया अकोला से विजेंद्र घटोल का। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अब दीजिए इजाज़त अपनी आरजे दोस्त अमिता को इस वादे के साथ कि बहुत ही जल्द होगी हमारी और आपकी अगली मुलाकात। और हमारी अगली मुलाकात तक रखिए अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जनसेवा के लिए युवाओं को सरकारी नौकरियों में लाने पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान सैन्य खरीद मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को आवश्यकता है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल, प्रोएक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीएससी पर लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महानदी जल विवाद सुलझाने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो बल दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा।
2: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जीवन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पहुंच और बेहतर परिणामों में बदलने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को एक क्षेत्र के साथ मानवीय गरिमा का एक अनिवार्य स्तंभ माना है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाखों परिवारों को 5 लाख रुपए की वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण

0: के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। एक रिपोर्ट।
1: दिशा निर्देशों के अंतर्गत शारीरिक दिव्यांगता वाले लोगों के उपयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित वाहनों तथा दिव्यांगजन स्वामित्व श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी किए जाएंगे। यह सुविधा वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र या अन्य लागू दस्तावेजों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर प्रदान की जाएगी। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन वाहनों के लिए छूट वाले फास्टैग जारी करना और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
2: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि भारतीय पायलट ने अपने कौशल, अनुशासन और सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए सम्मान अर्जित किया है।
3: We are very, very proud of the bravery and the courage.
4: कैप्टन स्मिथ की बहादुरी और साहस पर पूरे देश को गर्व है। कठिन परिस्थिति में जान के खतरे के बावजूद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान बचाने के लिए साहस दिखाया। उनका यह अदम्य साहस हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री ने भी उनके परिवार से बात की है। पूरा देश कैप्टन स्मिथ और उनके परिवार के साथ खड़ा है।
3: We are very, very grateful and we are really, really extremely proud of
0: it. गुजरात के प्रमुख तीर्थस्थलों पर फ्लाई दुबई के कैप्टन स्मिथ मच्छार के शीघ्र स्वास्थ्य होने और दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जा रही हैं। एक रिपोर्ट।
5: अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए 174 यात्रियों की जान बचाने वाले फ्लाई दुबई के जांबाज कैप्टन और मूल रूप से गुजरात के रहने वाले स्मिथ मच्छर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों सोमनाथ और अंबाजी में विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया है। अंबाजी मंदिर के पवित्र चांचर चौक में आज विशेष प्रार्थना की गई, तो वही प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ में उनके लंबे जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के लिए अखंड महामृत्युंजय मंत्र जाप अनुष्ठान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैप्टन स्मिथ के शौर्य और अदम्य साहस को नमन करते हुए उन्हें गुजरात सरकार के प्रतिष्ठित विशिष्ट गुजरात गरिमा अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कैप्टन स्मिथ को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और भारतीय दूतावास यूएई के अधिकारियों के लगातार संपर्क में है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी @AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। आज कई केंद्रीय मंत्री इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। विशेष श्रृंखला में आज बात करेंगे कि कैसे राष्ट्रीय समर स्मारक और राष्ट्रीय पुलिस स्मारक जैसे स्मारकों के निर्माण के द्वारा इस दृष्टिकोण को साकार किया गया है।
7: राष्ट्रीय समर स्मारक की स्थापना जनवरी 2019 में इंडिया गेट के पास की गई थी। यह स्मारक उन भारतीय सैनिकों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्धों और संघर्षों में देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मुख्य स्मारक के अलावा यहां 21 वीर सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए एक विशेष समर्पित क्षेत्र भी है जिन्हें देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। 2019 में आकाशवाणी पर प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह स्मारक देश के बहादुर सैनिकों की वीरता और साहस की भावना को दर्शाता है।
8: दिल्ली के दिल यानी वो जगह जहां पर इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति मौजूद है, बस उसके ठीक नजदीक में यह एक नया स्मारक बनाया गया है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक की पहचान एक ऐसे स्थान के रूप में बनेगी जहाँ लोग देश के महान शहीदों के बारे में जानकारी लेने, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने, उन पर शोध करने के उद्देश्य से आएंगे। यह उन बलिदानियों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए ताकि हम जीवित रह सके, ताकि देश सुरक्षित रहे और विकास कर सके।
7: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के एक छात्र आदित्य ने कहा कि यह स्मारक हमें याद दिलाता है कि हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते और देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं।
9: यह विचार बहुत ही महान है। यह हमें उन निरंतर बलिदानों की याद दिलाता है जो हमें अपने देश को अनगिनत दुश्मनों से बचाने के लिए देने पड़ते हैं। इसके साथ यह केवल शहादत और मृत्यु को नमन करने की जगह नहीं है, बल्कि यह चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता, पेड़ पौधों और हरियाली से घिरा हुआ है।
7: वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक देश को समर्पित किया था। इस स्मारक की दीवार पर उन पुलिस कर्मियों के नाम लिखे हैं जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान गंवाई। ये स्मारक सिर्फ इमारतें नहीं है बल्कि ये उन सैनिकों और पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हैं जो देश की रक्षा करते हुए आतंकवाद और अपराध से लड़ते हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं और मुसीबत के समय लोगों की मदद करते हैं। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। आइजोल में आज सियालसुख के पास एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों में इम्फाल के पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, आइजोल दूरदर्शन के समाचार निदेशक नामपीबाऊ मारिनमई और सीबीसी आइजोल के MTSH लियानवाला शामिल हैं। अमेरिका ने ईरान रक्षा मंत्रालय के लिए हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के मदद के आरोप में कई देशों के 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधित व्यक्तियों में एक पाकिस्तानी व्यवसायी और उससे जुड़ी 3 कंपनियां भी शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 21वीं सदी का भारत जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन के सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष की। बिहार में बाढ़ का कहर जारी, कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में पाकिस्तानी व्यवसायी सहित 10 व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में ऐतिहासिक रजत पदक सहित कुल 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9.

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: बीसवें एशियाई खेलों में आज के कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, नमस्कार। सबसे पहले आज की सुर्खियां। नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन कुश्ती में इतिहास रचा, पाया रजत पदक। सेलिंग में फ्रांसिस मनु और प्रिंस नोबेल ने रजत पदक हासिल किया। कंपाउंड आर्चरी में गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक पर निशाना साधा। स्क्वैश में महिला और पुरुष टीम दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक। और हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर

0: फाइनल में प्रवेश किया। पहलवानी के मैट पर आज भारतीय लिहाज से एक अनोखी उपलब्धि आई। सोनीपत हरियाणा के लाल ने कमाल कर दिया। 1962 के बाद पहली बार कोई भारतीय ग्रीको रोमन स्पर्धा के इवेंट में फाइनल में पहुंचा। खुलासा शाहिद आजमी से।
1: भारतीय पहलवान नितेश कुमार ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीतकर 64 साल का इंतजार खत्म कर दिया। शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक पहुंचे नितेश भले ही स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन उनका रजत पदक भारत की कुश्ती के इतिहास में एक नया अध्याय गया। पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में नितेश ने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमान बर्दी अगामेदेव को 7-1 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में मंगोलिया के गंगखुयाग गनबातार को 9-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उन्हें जापान के यूरी नकाजातो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रजत पदक जीतकर नितेश ने इतिहास रच दिया। वह 1962 के बाद ग्रीको रोमन वर्ग में एशियन गेम्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। हालांकि इससे पूर्व 2 और ग्रीको रोमन मैच खेले गए, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। 60 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित को ईरान के अब्बासपुर रागानी के खिलाफ मुकाबला गंवाना पड़ा। वहीं 77 किलोग्राम में अमन ने शानदार शुरुआत करते हुए मंगोलिया के बोरगिल तोशिन बातार को 8-6 से हराया। हालांकि अगले मुकाबले में कतर के शाहीन बदाघी मुफराद ने अमन को 9-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही भारत का ग्रीको रोमन कुश्ती अभियान 2 पदकों के साथ समाप्त हो गया। वहीं महिला वर्ग में आज एकमात्र वजन वर्ग में भारतीय पहलवान मानसी अहलावत 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। मानसी का कांस्य पदक मुकाबले में मंगोलिया के अल्तजिन तोकतोक से सामना हुआ। रोमांच से भरपूर इस मैच में मानसी ने आखिरी दम तक जोर लगाया, लेकिन 4-2 से हार कर कांस्य पदक से चूक गई। इससे पहले मानसी ने प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की इरीना कुज़निसोवा को 6-1 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की जो सुबिन को विक्ट्री बाई फॉल से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हालांकि सेमीफाइनल में जापान की नोनोका ओजाकी के खिलाफ मानसी को 0-6 से हार सामना करना पड़ा। अब कल 2 अक्टूबर को पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल और 125 किलोग्राम में रूहाल चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम में दीपांशी और 76 किलोग्राम में प्रिया मलिक मैट पर उतरेंगी।
0: नौकायन के नाविक कई दिनों से समंदर की लहरें गिन रहे थे। आज कई स्पर्धाओं में उनकी नाव किनारे पर जा लगी। स्किफ में प्रिंस नोबेल और फ्रांसिस मनु की नाव तो चांदी से भर गई, और इस चांदी की पूरी कहानी साक्षी मंडवाल से।
2: इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल विनिंग सिल्वर इन द मेंस स्किफ इवेंट। द इंडियन पेयर फिनिश्ड सेकंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 net points. India recorded 2 race wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China claimed the gold while Hong Kong took the bronze medal.
0: कंपाउंड आर्चरी में युवा होनहार गणेश रत्नम और चिकिता तानीपार्थी थे आर्चरी रेंज में, पदक एक ही आया। रिपोर्ट शाहिद आजमी से।
1: एशियन गेम्स के 12वें दिन तीरंदाजी में भारत के लिए एक पदक आया, तो एक मुकाबले में करीबी हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में गणेश ने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149 के मुकाबले 144 अंकों से हराया। गणेश ने मुकाबले में गजब की सटीकता दिखाई और 15 में से 14 तीरों पर परफेक्ट 10 का स्कोर किया। यह एशियन गेम्स में गणेश का दूसरा पदक है। इससे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम का हिस्सा रहे थे। उनके कांस्य पदक के साथ कंपाउंड तीरंदाजी में भारत ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य समेत 4 पदक जीते। वहीं महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चिकिता तानीपार्थी को इंडोनेशिया की नूरिसा दियान अशफरिहान ने बेहद करीबी मुकाबले में 144 से 143 से हराया। इसके साथ ही चिकिता का व्यक्तिगत कंपाउंड अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया।
0: स्क्वाश में टीम स्पर्धाओं में भारतीय टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई सेमीफाइनल तक पहुंच गईं, और आज सेमीफाइनल में दोनों टीमों के रैकेट विपक्षी कौशल और दमखम को पार नहीं कर सके, लेकिन उनके हौसले और अभियान की दाद दीजिए जिसने दोनों को दिलाए कांस्य पदक। रिपोर्ट धर्मेंद्र से।
3: स्क्वाश में भारत को आज 2 कांस्य पदक मिले। पुरुष टीम को मलेशिया के हाथों सेमीफाइनल में 1-2 की हार से ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। पहले मैच में अभय सिंह को एनजी इयान ने 0-3 से शिकस्त दी। स्कोर 8-11, 8-11, 8-11 रहा, लेकिन दूसरे मैच में वीर चोटरानी ने भारत को वापसी कराई। इस मैच को चोटरानी ने 3-0 से अपने नाम किया। उन्होंने मलेशिया के खिलाड़ी संजय जीवा को 11-4, 11-8, 11-5 के स्कोर से शिकस्त दी, लेकिन वी सेंथिल कुमार निर्णायक मैच में पराजित हो गए। उन्हें ए चंद्रन ने 4 सेट में 12-10, 6-11, 8-11, 9-11

चेहराया और भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। भारतीय महिला स्क्वाश टीम को भी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत भारतीय महिला स्क्वाश टीम के लिए अच्छी नहीं रही। ये अलग बात है कि अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ अच्छी शुरुआत की और पहले 2 गेम जीते। अनाहत ने पहला गेम 11-9 और दूसरा गेम 11-8 से अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद चान

0: ने दूसरा गेम 13-11, तीसरा गेम 11-9 और फिर 13-11 से जीता। निर्णायक मुकाबले में जोशना चिनप्पा ने निराश किया और वह होजे लोक के खिलाफ हार गई। होजे ने पहला गेम 11-4 से अपना नाम किया। इसके बाद दूसरे गेम में भी हांगकांग की खिलाड़ी का दबदबा रहा और उन्होंने गेम को 11-7 से जीता। होजे तीसरे गेम में भी हावी नजर आई और उन्होंने 11-9 से जीत कर हांगकांग को फाइनल का टिकट दिलाया।
1: हॉकी में परंपरागत विपक्षी भारत और पाकिस्तान थे आमने सामने और क्या मैच हुआ, लोमहर्षक, सांसें थाम देने वाला। भारत ने करीब एक दशक से पाकिस्तान पर चली आ रही अपनी बादशाहत बनाए रखी, मैच 4-3 से जीत लिया। किसी बेहतरीन थ्रिलर की तरह था ये मैच। 3-3 की बराबरी, खेल समाप्त होने वाला था, सीटी बजने वाली थी, लग रहा था मामला शूटआउट में जा रहा है। तो हूटर बजने के ठीक 40 सेकंड पहले भारतीय हमला होता है, गेंद डी में पहुंचती है, पाकिस्तानी डिफेंडर के स्टिक से टकराकर फ्लेक्ट होती है और अभिषेक ने फुर्ती के साथ गेंद को गोल मुहाने के भीतर कर दिया। भारत फाइनल में पहुंच गया, लेकिन इस मैच के रंग कई बार बदले थे। पहले दोनों क्वार्टर्स भारत के नाम और अगले दोनों में भारतीय रक्षण की चूक और पाकिस्तान के पलटवार। पहले क्वार्टर में ही 5वें मिनट और फिर 13वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर हिट्स का जादू चलाया, भारत 2-0 से आगे। हाफ टाइम के बाद सुखबीर ने एक बेहतरीन फील्ड गोल कर भारत को 3-0 से आगे कर दिया। भला किसने सोचा था कि पाकिस्तान अभी भी मैच में वापस आ सकता है, लेकिन लगा भारतीय रक्षण की धार अचानक कुंद सी हो गई है। पहले पेनल्टी कॉर्नर में अल महमूद और फिर हनान शाहिद का फील्ड गोल और उसके बाद चौथे क्वार्टर में राणा वहीद का भी लेफ्ट फ्लैंक से मारा गया करारा शॉट, जिससे गोलकीपर कोसों दूर थे। बहरहाल अभिषेक के गोल ने भारत की जीत पक्की कर दी। अब स्वर्ण पदक के लिए भारत मलेशिया से भिड़ेगा 3 तारीख को और कहने की जरूरत नहीं, हॉकी का स्वर्ण पदक और सभी पदकों से ज्यादा प्यारा होता है हमें। क्रिकेट में आखिरकार भारतीय टीम सचमुच मैदान में उतरी और शानदार मैच खेला। इस शानदार जीत की शानदार कहानी धर्मेंद्र से।
0: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने जापान के निशिन में खेले गए सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के 6 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट भारत के लिए लिए। भारत ने श्रीलंका पर 2020 क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। पिछली सबसे बड़ी जीत 93 रन की थी, जो 2017 में कटक में मिली थी। अब शनिवार को गोल्ड के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये पहला मौका है जब ये दोनों टीमें एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले में आमने सामने होंगी। ईशान ने बताया कि भारतीय टीम फाइनल मैच के लिए तैयार है। ईशान किशन ने इस मैच के बारे में कहा,
2: I think just keeping it simple, you know, you don't think so much. We played today, we know the conditions are not going to be so easy, especially they are also spinner friendly team. At the same time, you know, you just don't think like what's going to happen after 2 days. You just keep calm, you play your shots, you be in the moment and just enjoy those crunch moments.
1: सिपक टॉकरा में पुरुष क्वाड्रेंट में अरुण और बॉबी कुमार के खेल ने उम्मीदें जगाई रखी। जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
3: India secured a medal in men's quadrant sepak takraw after beating Myanmar 2-1 in their final group match. The victory sent India into the semi-finals and keeps their unbeaten run intact across 3 group matches. India finished top of their group and are assured of a place on the podium. Earlier in the day, we saw India defeat Vietnam in the men's quadrant group A match of the sepak takraw event. They won in straight sets by a margin of 15-12, 15-7, thereby defeating Vietnam 2-0.
1: शूटिंग की स्पर्धाएं आज समाप्त हो गई। अंतिम स्पर्धा भी कल से जारी पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश भानवाला फाइनल तक तो पहुंचे, लेकिन पदक पे निशाना नहीं साध पाए। आज की स्पर्धा पर शाहिद आजमी का विवरण।
4: एशियन गेम 2026 में शूटिंग स्पर्धा में आज भारत की आखिरी उम्मीद अनीश भानवाला का सफर 25 मीटर रैपिड पिस्टल के फाइनल में 7वें स्थान पर रहते हुए खत्म हुआ। क्वालिफिकेशन में अनीश ने 576 का स्कोर कर 9वां स्थान हासिल किया। हालांकि एक देश से अधिकतम 2 निशानेबाजों फाइनल में पहुंचने के नियम के तहत उन्हें फाइनल में जगह मिली। आपको बता दें दक्षिण कोरिया के 3 निशानेबाज क्वालिफाई हुए थे, लेकिन नियम के तहत उनके 2 निशानेबाज ही फाइनल में पहुंच सके। फाइनल में अनीश ने एक अहम दौर में 15 में से 11 सटीक निशाने लगाए, लेकिन टाई ब्रेकर में पीछे रह गए। इस तरह अनीश 7वें स्थान पर रहे और उनके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान समाप्त हो गया। अब एक नजर डालते हैं एशियन गेम्स 2026 में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन

0: पर भारतीय शूटरों ने एक बार फिर अपनी सटीक निशानेबाजी का दम दिखाया। हालांकि कुछ नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। ओवरऑल भारत ने कुल 15 पदक अपने नाम किए, जिनमें 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही नीरू ढांडा का प्रदर्शन। उन्होंने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने के साथ ही कायनन चेनाई के साथ मिक्स ट्रैप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। और अगर पिछले एशियन गेम्स की तुलना करें तो हांगझाऊ 2022 एशियन गेम्स जो 2023 चीन में आयोजित हुए थे, वहां भारतीय निशानेबाजों ने 22 पदक जीते थे, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।
1: वॉलीबॉल में टीम दमखम तो पूरा लगाती है, लेकिन 1986 के बाद से पदक नहीं आ पा रहा। लेकिन आज क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को वो ब्लॉक नहीं कर पाए। विवरण धर्मेंद्र से।
2: वॉलीबॉल में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से 0-3 से हार गई। पाकिस्तान ने मुकाबला 25-19, 25-23, 25-18 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ये मैच 1 घंटे 20 मिनट तक चला। भारत को सबसे ज्यादा 10 अंक अंशवाल राय ने दिलाए। पाकिस्तान के मुराद खान ने 22 अंक बनाए। इस हार के साथ भारत का एशियन गेम्स में वॉलीबॉल अभियान खत्म हो गया।
1: जूडो में उम्मीदें यामिनी मौर्य से थीं, लेकिन मन मोह लिया मणिपुर की एक लड़की ने। कांस्य पदक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। जूडो का विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: In judo, Yamini Maurya's campaign ended with a defeat in the women's 57-kilogram repechage at the Asian Games. While India's Inanganbi Taklambam first beat Nepal's Poonam Shrestha by IPO to qualify for the quarterfinals. However, she lost by IPO to North Korea's Song Hui Moon in the quarterfinals. Song's reaching the final opened up the repechage route for Taklambam. The Indian was scheduled to face China's Jing Tang in the repechage round. However, the Chinese judoka was disqualified before the bout. Consequently, Taklambam was awarded a walkover victory by a Fusen Gachi. India's Inanganbi Taklambam lost the bronze medal bout in the women's 70-kilogram event, getting defeated by Anujin Ulzi, who won the bout by Waza Ari.
1: इन एशियाई खेलों में टेनिस ने जरूर कई दिल तोड़ दिए, मायूस किया। 40 साल बाद टेनिस में भारतीय दल बिना पदक के रह गया। सुमित नांगल भी अपना मैच आज हार बैठे क्वार्टर फाइनल का। लेकिन गोल्फ की बात करें तो उसमें उम्मीदें जगी हुई हैं। कल आरंभ हुआ था, भारतीय टीम चुनौती देने की स्थिति में लग रही थी, और आज क्या हुआ इसका विवरण दे रही हैं साक्षी मंडवाल।
3: इंडियाज प्रणवी उर्स वाज इन द सेकंड प्लेस इन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले आफ्टर 2 राउंड्स कार्डिंग 11 अंडर 129 टू सेट 2 strokes behind leader Shannon Juan Jin Tan of Singapore. Diksha Dagar was tied 21st at 4 over 144, while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are third in the team standings behind China and Singapore.
1: साइकिलिंग ट्रैक में आज पुरुष ओमनियम, महिला स्प्रिंट और मेडिसिन की प्रतियोगिताएं थीं। ओमनियम में हर्षवीर सिंह सैखों 9वें स्थान पर पहुंचे। महिलाएं मेडिसिन स्पर्धा समाप्त ही नहीं कर सकी और स्प्रिंट में साइकिलों के चक्के रिपेचेस तक पहुंचकर ही थम गए। तो ताइक्वांडो में क्या हुआ आइए जानते हैं साक्षी मंडवाल से एक बार फिर।
3: इंडियाज कैंपेन इन द वुमेन्स इंडिविजुअल पॉम्से इवेंट इन ताइक्वांडो एंडेड एज रूपा बेयर बाउड आउट ऑफ द सेमीफाइनल। शी फिनिश्ड विद 7.6100 पॉइंट्स। दिस वाज नॉट इनफ टू फिनिश अमंग द 8 स्टार्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल।
1: रग्बी सेवन के मुकाबलों में भारत पूल ई में है। हांगकांग से पहला मैच ही बहुत मुश्किल साबित हुआ भारत के लिए। इस स्पर्धा का पूरा विवरण साक्षी मंडवाल से।
3: इंडियाज वुमेन्स रग्बी सेवन टीम कंप्राइजिंग शिखा यादव, दुमुनी मारंदी, संध्या राय, मामा नाय, वैष्णवी पाटिल, कल्याणी पाटिल, अमनदीप कौर, आरती कुमारी, भूमिका शुक्ला, गुरिया कुमारी, निर्मल्या राउत, संध्या रानी टुडू एंड उज्ज्वला घुगे हैड अ टफ स्टार्ट ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द आईची नगोया 26 Asian Games, suffering 2 heavy defeats in Pool B, Pool E in some classifications at the Paloma Mizuho Rugby Stadium. In match number 1, India was handed a defeat by Hong Kong China 33-7, while in match number 2, India was handed a defeat by People's Republic of China 43-5.
1: और अब पदक तालिका की ताजा स्थिति शाहिद आजमी से।
0: एशियन गेम्स 2026 में भारत के खाते में अब तक 10 स्वर्ण, 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदक हैं और भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं

0: पर चीन 154 स्वर्ण समेत 288 पदकों के साथ पहले, जापान 59 स्वर्ण समेत 217 पदकों के साथ दूसरे और दक्षिण कोरिया 30 स्वर्ण समेत 113 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
1: ये एशियाई खेल अब अपने समापन की ओर बढ़ चले हैं। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अभी भी पदकों के लिए पूरी रस्साकशी जारी है। वो सवाल जो प्रतियोगिताएं उठाती हैं, जिनके जवाब होते हैं स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक पाना, उसके लिए जद्दोजहद जारी है और भारतीय खिलाड़ी भी इसमें लगे हुए हैं। कल का दिन बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि महिला हॉकी का फाइनल है। सारी निगाहें वहीं रहेंगी। भारत की लड़कियां चीन के विरुद्ध उतरेंगी हॉकी के मैदान पर। बहुत शानदार मैच रहेगा ये। इसके बारे में जानना हो तो हमारी अपडेट्स आकाशवाणी पे हमारे साथ रखिएगा। भारतीय लड़कियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार खेला है। सबसे पहले उज्बेकिस्तान को 19-0 से परास्त किया, उसके बाद इंडोनेशिया को 17-1 से, थाईलैंड को 20-1 से, जापान को 3-1 से, सिंगापुर को 7-0 से और सेमीफाइनल में कोरिया की मजबूत टीम को 2-0 से परास्त किया था। यानी पूरे जोश में होंगी लड़कियां और स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में आना चाहिए। कल और 3 स्वर्ण पदक हैं जिन पर भारतीय निगाहें रहेंगी। बॉक्सिंग के रिंग में उतरेंगे अंकुश पंघाल, परवीन हुड्डा और लवलीना बोरगोहेन। देखते हैं बॉक्सर्स भारत के लिए क्या करके दिखाते हैं। वैसे बॉक्सर्स ने अब तक के इन एशियाई खेलों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, पहले से कहीं बेहतर। अगर प्रदर्शन ऊंचा हुआ है तो बॉक्सिंग वो स्पर्धा है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा करके दिखाया है। कुश्ती में भी कल भारतीय पहलवान बहुत कुछ कर गुजरने की चाह लेकर मैट पर उतरेंगे। फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल होंगे 65 किलोग्राम भार वर्ग में, रजत होंगे 125 किलोग्राम भार वर्ग में, दीपांशी 50 किलोग्राम भार वर्ग में और प्रिया 76 किलोग्राम भार वर्ग में अपने पेंच दिखाएंगे। तो आर्चरी में रिकर्व टीम की सेमीफाइनल स्पर्धाएं हैं। अंकिता भगत, कीर्ति और कुमकुम खेलेंगी चीन के विरुद्ध। इसके अलावा केनो स्लालोम में महिला और पुरुष के क्रॉस इंडिविजुअल हैं। साइकिलिंग में महिला ओमनियम, पुरुष काइरिन और पुरुष मेडिसन की प्रतियोगिता होगी। गोल्फ में पुरुष टीम राउंड 3 में खेलेगी और इसके अलावा इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले महिला और पुरुष का जारी रहेगा। रग्बी 7 में मलेशिया के विरुद्ध मैच होगा। सेपक टोकरा में महिला क्वाड्रेंट के मुकाबले होंगे। ताइक्वांडो में कशिश मलिक उतरेंगी। और अब समय आ पहुंचा है विदा लेने का। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, कल सुबह 9:30 से FM रेनबो पर नियमित अपडेट्स सुनना मत भूलिएगा और रात 10:00 हमारा ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो फिलहाल मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई शिकायत है तो चुप मत रहिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी CVC भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का एक जरिया है। अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या CVC के दायरे में आने वाली संस्था से जुड़ी शिकायत है तो आप CVC की वेबसाइट पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जानकारी और कंप्लेंट के लिए विजिट करें cvc.gov.in। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमारी आवाज से होती है।
1: अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो।
2: And just like that, Mumbai, we have come to the end of another cinematic journey on Cinema on Radio. What a wonderful time we've had revisiting the music, the memories and the magic of movies. From unforgettable melodies to fascinating film trivia, it's been a reminder that some stories never really end. They live on in the songs we hum, the scenes

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति

की सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में भी बदलाव किया है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। पुदुचेरी जिला प्रशासन ने 6 अक्टूबर को होने वाले थट्टन चावड़ी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए 4 फ्लाइंग स्क्वाड और 1 विशेष निगरानी टीम 24 घंटे तैनात की गई है। इसके अलावा 5 बाइक स्क्वाड और आबकारी विभाग की 3 टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार रविवार 4 अक्टूबर को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदाता चुनाव संबंधी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1950 या निर्वाचन आयोग के सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज करा सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की ये उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ टोटल 66 पदक जीत लिए। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा महिला स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। उधर पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

11:08, 18 सेकेंड प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल। महफिल सजी हुई है लफ्ज़ मौसिकी की और उम्मीद करते हैं कि आज की गज़लें हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएंगी। दोस्तों, शायरी का जिक्र आते ही जहन में ख्याल आता है कि शायरी की दुनिया में अगर मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास की मानंद है तो महबूब उस एहसास की सबसे हसीन तस्वीर है। मानते हैं ना आप भी? शायर के दिल में उठने वाली कैफियत, उसकी तन्हाई, उसकी खुशी, उसका इंतज़ार और उसका दर्द अक्सर किसी महबूब से जुड़कर ही अल्फाज में तब्दील होते हैं। और उर्दू शायरी की रिवायात भी ऐसी हैं कि महबूब का मकाम उसमें बहुत अहम रहा है हमेशा से ही। वो कहते हैं ना कि गज़ल तो है ही महबूब से गुफ्तगू करने का नाम। कभी महबूब सामने होता है तो दिल में बहार उतर आती है और कभी उसकी जुदाई में वही दिल वीरानियों का शहर बन जाया करता है। शायर के लिए दोस्तों महबूब सिर्फ एक शख्स नहीं है बल्कि वो एक ख्याल है, एक एहसास है और कभी कभी पूरी कायनात बन जाता है। वो कहते हैं ना कि लुत्फ जो उसके इंतज़ार में है वो कहाँ मौसम बहार में है। हुस्न जितना है गाहे गाहे में कब मुलाकात बार बार में है। जानो दिल से मैं हारता ही रहूं गर तेरी जीत मेरी हार में है। जिंदगी भर की चाहतों का सिला दिल में पैवस्तनों के खार में है। और आखिरी शेर यह है कि क्या हुआ गर खुशी नहीं बस में, क्या हुआ गर खुशी नहीं बस में, मरना तो इख्तियार में है। ये ऐसी कैफियत हैं जिनको एक के बाद एक जब लफ्ज़ों का जामा पहनाकर शेरों में तब्दील करके एक शायर खूबसूरत तरीके से पेश करता है तो हर शेर में ऐसा लगता है कि हमारे गोशे उभर के सामने खड़े हो गए हों।

अब मोहब्बत के एक और पहलू पर नज़र डालते हैं और वो है इंतज़ार। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि बजाय सीने के आँखों में दिल धड़कता है, बजाय सीने के आँखों में दिल धड़कता है, ये इंतज़ार के लम्हे अजीब होते हैं। जी हाँ, मोहब्बत में इंतज़ार हो तो महबूब की याद और भी गहरी हो जाती है, दूरी हो तो हर रास्ता उसी की तरफ जाता महसूस होता है, और जब मुलाकात हो जाए तो जैसे लफ्ज भी खामोश होकर सिर्फ उस पल को महसूस करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना कि तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुम मुखातिब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें।

0: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

11:28 और 48 सेकेंड हिना मौज के साथ हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगी महफिल आकाशवाणी FM रेनबो पर। दोस्तों, जब बात होती है महबूब की और ख़ास तौर पे गज़ल का जिक्र छिड़ा हो तो ये कहना गलत ना होगा कि महबूब से गुफ्तगू करना हर इंसान को गज़ल की तरफ मायल करता है, क्योंकि गज़ल का मफहूम यही है और इस मफहूम से जब हम हमकिनार होते हैं तो ये एहसास होता है कि ये रिश्ता कितना पाक, कितना नाजुक और कितना अहम है। एक नज़्म याद आती है मुझे इस बात पर कि वो एक लम्हा करके उसका उन्वान है और कहते हैं कि वो एक लम्हा जवानी जिस पे कुर्बान, मोहब्बत जिस पे सदक़े, मुकद्दर जिस पे नाजा। वो एक लम्हा जवानी जिस पे कुर्बान, मोहब्बत जिस पे सदक़े, मुकद्दर जिस पे नाजा। अदाओ नाज से घूंघट निकाले किसी आंगन में उतरा चांद बनकर, कली ने गुल से कुछ सरगोशियाँ की, हिनाई खुशबुओं ने बाल खोले। मुअत्तर हो गया माहौल सारा, बस अब ए वक्त की रफ्तार थम जा, बस अब ए वक्त की रफ्तार थम जा, के इस लम्हे की सदियां मुंतजर थीं।

दोस्तों, शायरी में महबूब कभी हकीकी होता है तो कभी महज एक तसव्वुर, कभी वो सामने मौजूद होता है और कभी सिर्फ यादों में रहता है। लेकिन दोनों ही सूरतों में वो शायर की ख्याली दुनिया को एक नया रंग देता है। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि महबूब शायरी का सिर्फ किरदार नहीं बल्कि शायर के एहसास की आवाज़ है। जब दिल में मोहब्बत होती है तो आम लफ्ज़ भी ख़ास हो जाते हैं, एक मुलाकात अफसाना बन जाती है, एक नज़र शेर बन जाती है और जुदाई पूरी गज़ल का निचोड़। वो कहते हैं ना कि लफ्ज़ों की तरह मुझसे किताबों में मिलाकर, लफ्ज़ों की तरह मुझसे किताबों में मिलाकर, दुनिया का तुझे डर है तो ख्वाबों में मिलाकर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: 11:50 2 सेकेंड हिना मौज है आपके साथ। प्रोग्राम रंगे महफिल में बात हो रही है मोहब्बत की, और मोहब्बत में तसव्वुरात जो महबूब के होते हैं उन पर एक शायर कैसे रिएक्ट करता है, किस तरीके से गज़ल में उसे पेवस्त करने की कोशिश करता है, लफ्ज़ों में बांधने की कोशिश करता है, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, मोहब्बत में जब शायर लिखता आया है तो ये कहना गलत ना होगा कि सदियों से शायर अपने महबूब को अल्फाज में तलाश करता आया है। कभी उसकी तारीफ में, कभी उसकी शिकायत में, कभी उसके इंतज़ार में और कभी उसकी याद में। ये खूबसूरत एहसासात गज़ल का मफहूम हमेशा से बनते आए हैं और हमेशा बनते रहेंगे, क्योंकि एक शायर कभी भी अपने दिल की फजील पर चढ़कर ये बात नहीं कहता, बल्कि हर इंसान की एहसास और जज्बात की गलियों से गुजरता हुआ इन लफ्ज़ों तक पहुंचता है और शेर में इन्हें तब्दील करके कई शेरों के मजमुए से गज़ल बनती है। और ये एहसास और जज्बात, ये हसीन गोशे, ये लम्हात और ये खूबसूरत यादें जब एक गज़ल का मफहूम बनती हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे दिलो ज़हन पर राज ज़रूर करेंगी, करती आई हैं, हमेशा करती रहेंगी। यही वजह है कि उर्दू अदब की खूबसूरत सिन्फ़ सुखन जिसे हम गज़ल कहते हैं वो आज भी आम फहम होने के साथ साथ सर फहरिस्त है, यानी फहरिस्त में सबसे ऊपर।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

11:55। आखिर में जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि महबूब से मोहब्बत हो तो दिल शायर हो जाता है और महबूब दूर हो तो वही दिल गज़ल बन जाता है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आज के प्रोग्राम में हिना मौज को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बस यही कहूँगी कि मोहब्बत को महसूस कीजिए, रिश्तों की कदर कीजिए और अपने दिल में बसे खूबसूरत एहसास को अल्फाज देना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।

रात्रि के 12 बजे हैं। ये समय है एफएम रेनबो मुख्य समाचार का। तो आइए सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में कहा है कि भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितेशी, सक्रिय और सुशासन की है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए फास्ट टैग छूट की वैधता 5 साल तक बढ़ा दी है ताकि यह अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो सके। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1,000 क्विंटल तय की गई है। फ्लाई दुबई विमान घटना में घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद उन्हें आगे के उपचार के लिए अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने हवाई अड्डे बुनियादी अवसंरचना सुरक्षा जांच के लिए अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध व्यवस्था आरंभ की है। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में एक पाकिस्तानी व्यवसायी समेत 10 व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र सूचना कार्यालय इम्फाल के ऊपर अपर महानिदेशक डॉक्टर एंगम पामे, दूरदर्शन केंद्र आइजोल के निदेशक समाचार नामबिपो मारिनमाई और केंद्रीय संचार ब्यूरो आइजोल के बहुकार्य कर्मचारी एच विलायनवेला के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक सहित 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। ये थे एफएम रेनबो मुख्य

0: आकाशवाणी
1: 12:03 हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आर शो। मैं हूं एस एम शरीफ, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सपना पूरा होगा।
1: क्या तुम्हारा सपना पूरा हो गया?
0: पूरा ना सही, लेकिन शुरुआत तो हो चुकी है।
1: मुझे भी कुछ कुछ

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

रात्रि का एक बजा है। सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में कहा है कि भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितेशी, सक्रिय और सुशासन की है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास पर बल देकर उपलब्धता, वहनीयता और संधारणीयता के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए। श्री पुरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए फास्ट टैग छूट की वैधता 5 साल तक बढ़ा दी है ताकि यह अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो सके। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। फ्लाई दुबई विमान घटना में घायल कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद उन्हें आगे उपचार के लिए अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने हवाई अड्डे बुनियादी अवसंरचना सुरक्षा जांच के लिए अधिक व्यवस्थित और समयबद्ध व्यवस्था आरंभ की है। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। अमेरिका ने ईरान से सैन्य खरीद के मामले में एक पाकिस्तानी व्यवसायी समेत 10 व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक सहित 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। हॉकी टीम शनिवार को स्वर्ण पदक के मुकाबले में मलेशिया से खेलेगी। 2027 ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत का अभियान 7 अक्टूबर को केप टाउन में ग्रुप ए में पिछले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले से शुरू होगा। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आकाशवाणी 1:03 और 57 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30।

0: के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: खरोश, हमले की तैयारी करो,
2: जल्दी करो।

0: शहर की दीवारें टूट रही
1: है। शाहजमान
2: वजीर बहार, दुश्मनों के हमले का मुंह तोड़ जवाब दो।

0: सगरे गाँव की गोरिया
1: जिया जिया
0: कुछ कुछ मैं छोड़।

रात्रि के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है FM रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में कहा है कि भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितेशी, सक्रिय और सुशासन की है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के पानीपत जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना बड़ी संख्या में ब्लीचिंग यूनिट संचालित होने संबंधी मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए फास्ट टैग छूट की वैधता 5 साल तक बढ़ा दी है ताकि यह अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो सके। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। फ्लाई दुबई विमान घटना में घायल कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद उन्हें आगे के उपचार के लिए अबुधाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत ने नेकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक सहित 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। हॉकी टीम शनिवार को स्वर्ण पदक के मुकाबले में मलेशिया से खेलेगी। 2027 ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत का अभियान 7 अक्टूबर को केप टाउन में ग्रुप ए में पिछले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले से शुरू होगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: रात्रि के 2:03 और 20 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने।

0: पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा, जा।

0: जी मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में कहा कि भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। गृह मंत्री अमित शाह ने महानदी जल विवाद के समाधान के लिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के पानीपत जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना बड़ी संख्या में ब्लीचिंग यूनिट संचालित होने संबंधी मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए फास्टैग छूट की वैधता 5 साल तक बढ़ा दी है ताकि यह अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो सके। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। फ्लाई दुबई विमान घटना में घायल कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद उन्हें आगे के उपचार के लिए अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने जल आपूर्ति और सीवर व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन और ग्रीक और रोमन कुश्ती में रजत पदक सहित 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। हॉकी टीम शनिवार को स्वर्ण पदक के मुकाबले में मलेशिया से खेलेगी और 2027 आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत का अभियान 7 अक्टूबर को केप टाउन में ग्रुप ए में पिछले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले से शुरू होगा। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। टाइम हुआ है रात के 3:03 और अब सुनेंगे आप नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज में। तो शुरुआत करते हैं ब्रदर्स मूवी के इस गाने से और नॉनस्टॉप गानों की लड़ी शुरू होती है अब।

किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों

ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये बारिश गुनगुनाती थी, इसी छत की मुंडेरों पर ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे।

दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, ना कोई खेलने वाला है बाजी और ना कोई चाल चलता है।

न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

सुबह के 4 बज चुके हैं। एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में कहा है कि भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों के तेजी से विस्तार पर बल दिया। उन्होंने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में स्थित मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से इतर दोनों देशों के मंत्रियों के साथ अलग अलग बैठकें की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देश मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज और बुल्गारिया के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोपोले डांकोव ने नई दिल्ली में भारत बुल्गारिया विदेश कार्यालय परामर्श के 7वें दौर की सह अध्यक्षता की। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए फास्टैग छूट की वैधता 5 साल तक बढ़ा दी है ताकि यह अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल हो सके। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण अवधि घटाकर 15 दिन कर दी है और भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस ने इस अवसर पर यातायात परामर्श जारी किया है। राजघाट, रिंग रोड और आसपास की सड़कों पर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। फ्लाई दुबई विमान घटना में घायल कैप्टन स्मिथ मच्छार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सऊदी अरब के तबुक स्थित एक अस्पताल में आरंभिक इलाज के बाद उन्हें आगे के उपचार के लिए अबू धाबी स्थानांतरित कर दिया गया है। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है और कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक सहित 6 पदक जीते। भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम आज स्वर्ण पदक के मुकाबले में चीन से खेलेगी। और 2027 आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत का अभियान 7 अक्टूबर को केपटाउन में ग्रुप ए में पिछले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले से शुरू होगा। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

के 4:03 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल और अब आप सुनेंगे नॉनस्टॉप गाने कार्यक्रम सारेगामा में, जिसमें कुछ सॉफ्ट गाने होंगे और उन गानों का आप मजा लीजिए इस हल्की ठंडी सुनहरी और बहुत मनमोहक सुबह में। तो शुरुआत करते हैं अमाल मलिक की आवाज में इस गाने के साथ फ्रॉम द मूवी सरबजीत।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो।

0: या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन महत्व

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: 爸陪娘娘跟弟弟跟弟弟，阿弟妈呀阿弟妈呀，你就爸爸陪娘娘跟弟弟跟弟弟。
1: आउरा आटा पापा अंदा खर्ची लागे आउरा आटा पापा अंदा

ಡೌಳಿ ಪವಳಿ ಬಲ್ಲಗಾಡಿ ನಾಗ ಡೌಳಿ ಪವಳಿ.